FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 31 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की

वंदना के आरंभ में आइए स्वयं को समर्पित करते हैं उस मुरारी को जिसकी मुरलिया बजने पर प्रेम स्वयं सुर बनकर बहने लगता है। मुरली की मधुर तान मन के सारे क्लेश हर लेती है और भक्त को अपनी कान्हा की ओर भी निकट ले आती है।

आइए इसी प्रेम और भक्ति के भाव के साथ सुनते हैं मन को मोह लेने वाला ये मधुर भजन।

संसार के सुख क्षण भर के होते हैं, लेकिन हरि भजन से मिलने वाला आनंद मन को सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। धन, वैभव और मान सम्मान समय के साथ बदल जाते हैं, पर प्रभु का नाम जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। आज की इस वंदना के माध्यम से स्वयं को समर्पित करते हैं हरि के चरणों में।

ये तन ईश्वर का अनमोल उपहार है और इसका सबसे सुंदर उपयोग प्रभु की सेवा, भक्ति और सत्कर्म में है। जब ये तन प्रभु सेवा में, मन प्रभु के स्मरण में और वाणी प्रभु के नाम में लग जाती है, तभी ये जीवन सार्थक बनता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज की वंदना के गायक कलाकार थे पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, संध्या मुखर्जी, सुरेश वाडेकर और साथी। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद्रशेखर आजाद के विचार। आलेख डॉक्टर शैलेंद्र नाथ पांडे का है, वाचन देवराज कृष्ण दीक्षित का।
1: इतिहास अतीत का एक ऐसा अध्याय है जो हमें आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों एवं बलिदानियों की पावन स्मृति से विभोर कर देता है। त्याग बलिदान की गौरवशाली परंपरा

0: महिमा मंडित करने वाले कतिपय प्रातः स्मरणीय नामों में चंद्रशेखर आजाद का नाम जिह्वा पर आ जाता है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला खां जैसे अनेक ज्ञात अज्ञात युवकों की गौरव गाथा का स्मरण चंद्रशेखर आजाद के नाम के बिना संभव ही नहीं है। मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भावरा नामक गांव में पंडित सीताराम तिवारी एवं मां जगरानी देवी के घर जिस चंद्रशेखर तिवारी नामक बालक का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को हुआ, वही बाद में आजाद के नाम से अमर हो गया। आजाद का बचपन जिस ग्रामीण अंचल में आदिवासी भील बाल मंडली के बीच बीता, उसने इन्हें धनुष बाण चलाने तथा निशानेबाजी के वीरोचित संस्कार दिए। उसी समय बालक चंद्रशेखर के मन में देश की स्वाधीनता हेतु सशस्त्र क्रांति के सपने देखने का भाव जागा। कथित अहिंसा का मार्ग उनके मन मस्तिष्क में स्थान नहीं बना सका। आगे जो घटनाक्रम हुआ उसमें गांधी जी ने सन 1922 में यकायक असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था और चंद्रशेखर मन्मथनाथ गुप्त तथा प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए। रामप्रसाद बिस्मिल से भेंट होने के बाद आजाद क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन परिषद के सक्रिय सदस्य हो गए। उनका नाम 1925 के काकोरी केस और तत्पश्चात लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने में सन 1928 में लाहौर में जेपी सैंडर्स को गोली मारने में संलिप्त किया गया। सरकारी खजाने की लूट हो या अन्य विधियों से क्रांतिकारी गतिविधियों के संसाधन एकत्रित करना, आजाद जान को हथेली पर लेके ऐसे साहसिक कार्यों में अग्रणी रहते थे। वे समाजवादी ढांचे पर नए भारत के पुनर्निर्माण के पक्षधर थे। बंदूक तथा अन्य शस्त्रों को चलाने के अभ्यास हेतु उन्होंने एक समय झांसी के निकट ओरछा को अपना केंद्र बनाया। क्रांतिकारी संगठन जब अपनी गतिविधियों के चरम पर था तो 1927 में चार क्रांतिकारियों राजेंद्र लाहड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी तथा अन्य 16 सदस्यों को कठोर कारावास की सजा दी गई। अब नए संदर्भ में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को नया नाम रूप प्रदान करते हुए उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की संज्ञा से संबोधित किया जाने लगा। इस अभियान के कमांडर इन चीफ स्वयं चंद्रशेखर आजाद थे और उनकी वाहिनी का नारा था जीत अथवा मौत। लाला लाजपत राय के बदले के पश्चात चंद्रशेखर आजाद के ही नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल सन 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था। ये कांड अंग्रेज हुकूमत को अंतिम चेतावनी थी। पंडित मोतीलाल नेहरू तथा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन आजाद के प्रशंसकों में थे। आजाद का क्रांतिकारी जीवन कभी छद्म वेश में, कभी छिपकर तो कभी प्रकट रूप में उत्तर भारत के विभिन्न नगरों, स्थानों, जंगलों, स्टेशनों एवं गांवों में बीता। इलाहाबाद में वीर गति प्राप्त होने से पूर्व भारत माता के इस सपूत ने देशवासियों में क्रांति की जो ज्वाला धधकाई, वो चिरकाल तक चमकने वाली पुण्य लकीर बन गई।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद के विचार। आलेख डॉक्टर शैलेंद्रनाथ पांडे का था, वाचन देवराज कृष्ण दीक्षित का।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। स्वर है श्रीकांत पारगांवकर का, संगीतकार सतीश भाटिया।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटि तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। स्वर थे श्रीकांत पारगांवकर के, संगीतकार थे सतीश भाटिया। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 6:45 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में। अब से थोड़ी देर में यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा धान की रोपाई। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे पुरानी

0: मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:31 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज की माटी तोहे प्रणाम के अंतर्गत गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन। आलेख एवं प्रस्तुति सहयोग होगा रश्मि शर्मा का। प्रस्तुत करता होंगे ओपी सिंह। सवेरे 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। कार्यक्रम में सोशल मीडिया गैजेट्स का बचपन पर प्रभाव, वार्ताकार होंगे स्वप्निल सारस्वत। 9:15 का समय रहेगा जिले की हलचल का, जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबोहवा, विषय होगा मृदा अपरदन। आलेख एवं वाचन होंगे अशोक गुप्ता के। 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज दर्पण का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रिपोर्ट, प्राथमिक शिक्षा में दिव्यांग बच्चों के शिक्षक प्रशिक्षण की सुविधा विषय पर विशेषज्ञ होंगी रतन कीर्ति, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा। संयोजन होगा ओपी सिंह का। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति होगी देवराज कृष्ण दीक्षित की। 11:30 का समय रहेगा स्टाफ द्वारा मेरी पसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत का। दिन में 12 बजे आप सुनेंगी गीत बात और SMS पर आधारित कार्यक्रम। दिन में 12:30 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज लोक गीत का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कलाकार गिरीश कुमार के गाए कुछ ब्रज लोक गीत। दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा एनीमिया कारण बचाव और उपाय, साथ ही महिलाओं के कानूनी अधिकार और सहायता सेवाएं विषय पर भी चर्चा की जाएगी। कानूनी वार्ता में आप सुनेंगी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से बचाव के कानून, इस विषय पर जानकारी देंगे खड़क सिंह छोंकर। साथ ही घरेलू टिप्स आप सुन सकेंगी। दिन में 2:30 का समय रहेगा NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी को। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा पुस्तकों से मित्रता करें, प्राणी हिंसा से दूर रहें। किसान भाई अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण सुन सकेंगे शाम 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा बागवानी फसलों की बरसात में देखभाल, साथ ही आप सुन सकेंगे खरीफ फसलों में कीट और रोग प्रबंधन विषय पर चर्चा। वार्ता प्रसारित होगी दुधारू पशु से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर रुचि तिवारी। भक्ति परक फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे संध्या वंदन कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। 7:05 का समय रहेगा ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज काव्य सुधा, ब्रज भाषा काव्य पाठ। काव्य पाठ होगा दुर्गा प्रसाद ओद्दार का। शाम सुहानी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 7:31 पर। रात्रि 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। रिजब सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें, विषय है धान की रोपाई। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, इस समय आप सभी किसान भाई धान की रोपाई को संपादित करने में लगे हुए होंगे। जिस खेत में रोपाई करनी है उस खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तभी आपको धान की खेती से वांछित लाभ मिल पाएगा। मुख्य क्षेत्र की तैयारी के

0: लिए सबसे पहले खेत की मेड़ मजबूत कर लें, उसके पश्चात उसे समतल बना लें। अगर पानी उपलब्ध है तो अच्छी तरह उसको कदवा करें, यानी कि उसमें लेप बनाएं, जो रोपाई के लिए बहुत ज़रूरी है। कदवा में मुख्यतया खेत की दो बार जुताई की जाती है। पहली जुताई के बाद खाद का प्रयोग करते हैं, जबकि दूसरी जुताई के पश्चात उसमें पाटा लगा देते हैं। हाँ, एक बात का और ध्यान देना होगा कि पाटा लगाने के बाद खाद का प्रयोग कभी नहीं करें, क्योंकि ऐसी अवस्था में खाद मिट्टी में मिल नहीं पाता है। खाद की जो मात्रा आपको प्रयोग करनी है वो इस प्रकार है। नत्रजन युक्त खाद की कुल मात्रा का आधा भाग ही आप पडलिंग के समय यानी कि कदवा करते समय दें, जबकि फास्फोरस और पोटाश की संपूर्ण मात्रा को कदवा के समय ही प्रयोग कर दें। बोनी प्रजातियों के लिए 60 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग किया जाता है। शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के लिए 50 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लाते हैं। इसके अतिरिक्त जमीन में जस्ता तत्व की अगर हम आपकी जमीन में कमी है तो आप इसके लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग खेत में कर सकते हैं। वैसे जिंक सल्फेट का प्रयोग खेत में प्रत्येक 3 वर्ष पर व्यवहार करना चाहिए, और जिससे कि उपज में जो कमी आ रही है उसको दूर किया जा सके। बेहतर तो यही रहता है कि मुख्य पोषक तत्व तो जैसे कि एनपीके को खेत में डालते समय ही आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में दे दें। ये तो रही खेत की तैयारी संबंधी कुछ बातें। अब हम बात करते हैं पौध के बारे में। तो पौध रोपने के लिए उसकी सही उम्र होती है 25 से 30 दिन की। 30 दिन से अधिक पुरानी पौध की रोपाई करने पर समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए आजकल पौध पर कीट के आक्रमण की समस्या भी बहुत से लोगों से सुनने को मिल रही है। इसका सबसे अच्छा उपचार है कि पौध उखाड़ने के 8 से 10 दिन पूर्व बीज स्थली में थीमेट 10G का व्यवहार 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप कर सकते हैं, या इंडोसल्फान मोनोक्रोटोफास में से किसी एक दवा का छिड़काव करें। अगर पौध पर कीट का आक्रमण नहीं है तो फिर भी आप सुरक्षा की दृष्टि से इनका छिड़काव कर सकते हैं। पौध रोपने के पूर्व एक दिन पौध उखाड़ करके देख लें कि पौध उखाड़ने के क्रम में जड़ कम टूटती है या अधिक टूटती है। यदि जड़ अधिक टूटती है तो बीज स्थली में एक हल्की सी सिंचाई कर दें ताकि जड़ कम टूटे तथा मुख्य क्षेत्र में रोपाई करने पर पौधे के मरने की संभावनाएं कम हो सकें। जिस दिन रोपाई करनी हो उसी दिन पौध उखाड़ें। एक स्थान पर 2-3 पौधे आप रोपें। अधिक उम्र के पौध होने पर 4-5 पौधे एक स्थान पर रोपे जा सकते हैं। रोपाई छिछली करें, अर्थात पौधे की जड़ ही जमीन में डालें, उसे अधिक गहरा न लगाएं। खरपतवारों पर नियंत्रण पाने के लिए या खरपतवार पनपे ही नहीं, इसके लिए तृणनाशक दवा का व्यवहार करना भी जरूरी है। रोपाई के 48 घंटे बाद तृणनाशक दवा में ब्यूटाक्लोर का व्यवहार आप कर सक्ते हैं, जिसकी 3 लीटर ब्यूटाक्लोर की मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोल बना करके या 30 से 40 किलोग्राम सूखी बालू में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से क्षेत्र में व्यवहार किया जाता है। ध्यान रखें कि खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर जल जमाव हो तथा यह जल जमाव 1 सप्ताह तक रहे। रोपाई
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, विषय था धान की रोपाई। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: प्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्ष नेतारं राहुल गांधीनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट

0: चर्चाया स्वपूर्वामाग्रह निवृत्त।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: पूर्वाह्णे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अन्ये दल सदस्या नीट विषयक चर्चा आधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन लोक कल्याण मार्ग स्थिते प्रदर्शन स्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ। तत्रैव संसदी विपक्ष सदस्य

केएल सहगल की आवाज़ में अभी आपने सुना परवाना फिल्म का ये गीत। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरी गीत में रतन फिल्म का ये अगला गीत, जिसे गाया है जोहरा भाई अम्बाला वाली ने। स्वर है डीएन मधोक के और संगीत है नौशाद का।

जोहराबाई अंबाला वाली की आवाज में अभी आपने सुना रतन फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस संदेश के बाद।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम की आवाज में गाया आर पार फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है मजरूह ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

शमशाद बेगम को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आर पार में। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत आशा भोसले की आवाज में। तलाक फिल्म से इस गीत को लिखा है प्रदीप ने और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने।

आशा भोसले और मन्ना डे को अभी आपने सुना फिल्म तलाक में। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भूली बिसरी गीत का ये अगला गीत, तलाक महमूद और आशा भोसले के स्वरों में। फिल्म है बूट पॉलिश, गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

तलत महमूद और आशा भोसले के स्वरों में गाए बूट पॉलिश फिल्म के इसी गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत यहीं पर संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। एफ एम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:18 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जल स्तर बढ़ा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक रिपोर्ट।
1: कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन

0: देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत लगभग 50,000 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य निजी और संबद्ध विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5% छात्राओं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने वाराणसी में 500 क्षमता वाले महिला छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से प्रारंभ होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेस वे को लेकर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। ये 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि प्रयागराज से शुरू होकर भदोही से मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने के बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की आय सीमा 12 लाख रुपए वार्षिक से कम होगी।
2: इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को।
1: उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि योजना की लाभार्थी छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव, अग्निशमन और आपात सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 25 करोड़ 78 लाख रुपए के प्रस्ताव और यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
3: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था। पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की।
1: मुख्यमंत्री ने कल ही बहराइच में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के आने से विकास कार्यों और प्रगति के जरिए पिछले 9 सालों में प्रदेश को नई पहचान मिली है।
4: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं।
5: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। कल संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री

0: किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
2: भगवान श्री रामलला मंदिर के चढ़ावा विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के 3 खाली पदों पर विचार विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। बैठक के मद्देनजर एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी और एडीएम सिटी योगानंद पांडे ने बैठक स्थल के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी।
3: डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी देने का उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। यह भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: राजधानी लखनऊ सहित कई प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण पीलीभीत में भी शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। नौशिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भैया बहनों, ब्रज की भोर अपने आप में एक साधना है। कहीं मंदिरों की घंटियां गूंज रही हैं, कहीं ठाकुर जी के मंगल आरती के स्वर वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं, तो कहीं यमुना तट की मंद मंद बहती हवा मन को शांति का संदेश दे रही है। ऐसे दिव्य वातावरण में ब्रज की पावन धरा को प्रणाम करते हुए देवों के देव महादेव का स्मरण करना अपने आप में हमारी भक्ति को पूर्णता प्रदान करता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहां श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, वहां शिव स्वयं गोपेश्वर महादेव बनकर ब्रज की रक्षा करते हैं। वृंदावन की इस पावन भूमि पर महादेव केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि ब्रज रज के साक्षी भी हैं। इसलिए ब्रज में हर प्रभात श्री राधे के नाम के साथ हर हर महादेव का स्वर भी उतना ही मंगलकारी माना जाता है। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस ब्रज माधुरी कार्यक्रम के माध्यम से गोपेश्वर महादेव के पावन दर्शन की ओर, और आपको सुनवाते हैं ब्रज की माटी तोहे प्रणाम में गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन पर रश्मि शर्मा का ये आलेख एवं प्रस्तुति। प्रस्तुत करता है ओपी सिंह।

0: ब्रज की माटी तोहे प्रणाम कार्यक्रम सुनवे वारे सबई श्रोतान को जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। श्रोताओ आज के अपने कार्यक्रम में हम आपको लिए चल रहे हैं श्री वृंदावन धाम और आज हम बात करेंगे श्री गोपेश्वर महादेव के मंदिर के संदर्भ में।
1: महाराज हुआ था, बाबा के साथ में भूत प्रेत भी आए हैं। मंदिर से आगे एक गली है, इसका नाम है भूत गली, वहाँ पर भूत प्रेतों को छोड़ा।

जो गोपियाँ थीं डर जाएंगी। पार्वती जी के साथ गए हैं, पार्वती जी को, पार्वती जी तो अंदर चली गई, बाबा को गोपियों ने रोक दिया, ललिता विशाखा सखियाँ थीं गेट पर रोक दिया। बोले बाबा तुमको राज देखना तो गोपी बनना पड़ेगा। तो बोले हम तो भस्म लगाना जानते हैं, हम तो सोलह श्रृंगार नहीं जानते हैं। बोले जमुना मैया हैं भगवान कृष्ण का, राधा रानी का श्रृंगार करती हैं। तो जमुना मैया के पास गए हैं, जमुना मैया बड़ा खुश हुई, देवों के देव महादेव मेरे द्वारा है, जमुना मैया ने इनका सोलह श्रृंगार किया है। अब रास में गए हैं, जितना संगीत निकला है बाबा के डमरू से निकला है। आराध्य को देख के भगवान से ताल में ताल मिला रहे थे, पैर थिरक रहे थे उनके। और भोले भंडारी जो भूल गए कि हम लहंगा चुन्नी पहने हुए हैं, आराध्य नाच रहे थे, जो ताल में ताल मिलाई। भगवान कृष्ण बोले मुझसे मेरी ताल में ताल भगवान शिव के अलावा कोई नहीं मिला सकता। और सबके केस हैं, ये जटा वाली गोपी कौन है ये? ध्यान से देखा भगवान शिव आकर आप गोपियों को, राधा रानी को छोड़ा है, आलिंगन किया है, आइए गोपीश्वरम स्वागतम, वहाँ से इनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। राधा रानी है, उनको बड़ा बुरा लगा गोपियों की मेन में, और नई गोपी आई मोटी सी सुंदर सी, इसको मेन बना दिया, आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। जमुना पल्ली पार है मानसरोवर, वहाँ मान करके बैठ गई है। भगवान मनाने गए, मैं तो नटवर हूँ, वो तो नटराज है, नाचना सिखाया है उनने मुझे, तो मना के लाए हैं। तो राधा रानी आई हैं, बोले तुम वरदान मांगो, न काशी जाऊँ न कैलाश, नित्य लीला देखता रहूँ। राधा रानी बोली मैं अपनी तरफ से वरदान देती हूँ, जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा तब तक हमारा बांके बिहारी का और रास का दर्शन नहीं होगा। आपका शरीर कितनी चीज़ों से बना है? पांच चीज़ों से। बाबा का अभिषेक होता है पांच चीज़ों से। आप अभिषेक करके जाएंगे, एनर्जी लेके जाएंगे, बाबा का दर्शन होगा। ये 6,500 वर्ष प्राचीन है, भागवत में कथा आती है इनकी। ये प्रेम की वजह से पुरुष से स्त्री बन गए, ये प्रेम का संदेश दे रहे हैं सबको। यहाँ पर आकर आदमी प्रेम से इनकी पूजा करेगा तो उसकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है, ये यहाँ का वो है। राधा रानी ने, गोपियों ने वो उंगलियों के निशान हैं, वो पूजा की है, उनके उंगलियों के निशान है ये। और दूसरा यहाँ पर एक खजाना प्रसाद दिया जाता है, जैसे धन की वृद्धि, शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए खजाना प्रसाद दिया जाता है। एक सिक्का होता है, एक रुद्राक्ष होता है।

देवन के देव महादेव समस्त भारत में पूजनीय हैं। भगवान शिव की आराधना विविध रूपन में करी जाए है। भगवान शिव को शिवलिंग स्वरूप सबसे अधिक पूजा जाए है। अर्ध नारीश्वर भी भगवान शिव को ही स्वरूप है, लेकिन ब्रजमंडल में ये एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को स्त्री रूप में पूजा जाए है। भारत में यह अकेलो ऐसा मंदिर है जहां महादेव महिला के रूप में विराजित हैं। इनको गोपेश्वर महादेव के रूप में जाना जाए है। आखिर क्यों भगवान शिव को नारी का स्वरूप धारण करना पड़ो, या के पीछे भी एक अद्भुत कथा है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पे भगवान शिव गहन समाधि में लीन हते और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में वंशीवट पे अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे। भगवान शिव को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बांसुरी की मधुर धुन सुनाई गई। वह मधुर धुन को सुन के भगवान शिव की

0: जहां भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपिन के संग महारास कर रहे। लेकिन महारास के द्वार पे ब्रज की अति सुंदर गोपिन ने भगवान शिव को रास में प्रवेश नहीं करन दियो। ललिता देवी और विशाखा देवी इत्यादि सभी सखी बोली, महाराज या महारास मंडल में तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के और कौ पुरुष को प्रवेश की अनुमति नहीं है। महारास करवे को मुख्य कारण रासेश्वरी श्री राधा रानी द्वारा अपनी सखी को रस प्रदान करना है। यही काजे बिना श्री राधा रानी की कृपा के यह संभव नहीं है। या प्रकार को ललिता देवी ने भगवान शिव को उपदेश दियो। दूसरो विकल्प तो हतनाओ तो भगवान शिव महाराज के प्रवेश द्वार के बाहर ही बैठ गए और रासेश्वरी श्री राधा रानी को नित्य रूप ध्यान और चिंतन करो। तब श्री राधा रानी को यह विषय में पता चली तो वे दयालु जगत की माता श्री राधा रानी ने गुप्त रूप से ललिता देवी सखी को शिव जी के पास भेजो। ललिता देवी ने भगवान शिव से कही, यदि आप महाराज को आनंद लेना चाहो हो तो श्री यमुना जी को आश्रय लेना पड़ेगा। और तब भोलेनाथ श्री यमुना जी के समीप गए और यमुना जी से प्रार्थना करी कि वे उन्हें गोपी रूप प्रदान करें। या प्रकार से श्री यमुना जी ने उन्हें गोपी रूप प्रदान करो और बाकी बात भोलेनाथ को या रास में प्रवेश मिलाओ।
1: गोपी स्वरम जगत बंदे करुणामयम रति प्रदम। यहाँ भगवान शिव ने रति के जीवन में आनंद दिया है। लाभ हानि जीवन मरण यश विधिहात और जीवन में आनंद चाहिए तो आना पड़ेगा गोपीश्वर के पास। जब भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया

0: कुंती पत्नी ने कहा कि प्रभु आपने मुझे जला दिया, विजय प्राप्त करके दिखाते तो मैं आपको जानती। तो भगवान ने कहा जब महारास होगा तब 16,000 गोपियाँ होंगी, उनमें पुरुष भगवान कृष्ण होगा, तब मैं गोपी बनकर आऊँगा। तब भगवान शिव कैलाश से यहाँ पर आए, पार्वती को भी लाए, नंदी को भी लाए, भैरव को भी लाए, पूरे परिवार को लाए। एक यही ऐसा देवता है जिसका पूरा परिवार है, ब्रह्मा का नहीं, विष्णु का नहीं, करेक्टर के एक यही सही है। जब ये यहाँ पर आए तो द्वारपाल थी ललिता विशाखा सखियाँ, उन्होंने इनको रोक दिया कि आप महारास में नहीं जा सकते हैं। बोले क्यों? बोले यहाँ गोपी जा सकती है। बोले गोपी मतलब, बोले गो माने इंद्रिय और पी माने पीना, जिसने दसों इंद्रियों को वश में किया होगा वही उस महारास में प्रवेश कर सकता है, और कोई नहीं जा सकता। बाबा बाबा बोले हम तो आए आए तो जाएंगे। उनने कहा आप एक काम करिए, क्योंकि आप आए किसी संत का या पुरुष का प्रवेश नहीं है, तो आपको जो है गोपी बनना पड़ेगा और आप यमुना जी के पास जाइए। भगवान शिव यमुना जी के पास गए, गोपी भाव से इन्होंने स्नान किया। तब यमुना जी बोली, हिल गई, बोली साक्षात भगवान शिव सृष्टि के रचयिता आज गोपी भाव से वृंदावन में कैसे आए? तब यमुना जी का प्रभु आप कैसे? तो बोले आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले प्रभु आप सबको देने वाले, आज आप हमसे मांग रहे हैं? बोले हाँ, आप भगवान राधा रानी के और भगवान कृष्ण का श्रृंगार करती हैं, आप हमें अपने वस्त्र दे दीजिए और 16 श्रृंगार कर दिए और महाराज से प्रवेश दिला दीजिए। उनने कहा प्रभु असंभव, क्योंकि आपको देख के तो महाराज रुक जाएगा, आपने तो काम को जला दिया। बोले देखिए इस बात की गवाह आप हैं कि हमने आपको परीक्षा दी गोपी बात है, अब आप हमें ले चलिए। 16,108 गोपियाँ होंगी तो उनमें मैं कैसे आऊँगा? तो बोले आप कह देना मेरी सहेली आई है। तो भगवान का मेकअप करा के यमुना जी इनको महारास में ले गई। सर्प बोले भगवान हम वैसे ही बुरे हैं, हमें देखकर सर्प लोग डर जाते हैं, हम आपका लहंगा और चुन्नी पकड़ लेंगे, हमें भी आप दर्शन करा दो महाराज के तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो सर्पों ने इनकी चुन्नी पकड़ी और ये महाराज में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण जो है जब महाराज कर रहे थे तो संगीत जो है उनके डमरू से निकला। जब संगीत चल रहा था भगवान बोले ऐसा कौन सा आया जो मुझे तान से तान मिला रहा है, सिवाय शिव के मुझसे कोई तान से तान नहीं मिला सकता है। तब भगवान शिव ने ऐसी बंसी बजाई तो सुदबुद भूल गए भगवान और उनकी जटाएं खुल गई और सर्प भी मदमस्त हो गए। तो भगवान ने देखा तो उन्होंने कहा गोपी स्वरम जगत बंदे करुणा में मृत्यु। राधा रानी गुस्सा हो गई, बोली ऐसी कौन सी गोपी आई जिसे देखकर भगवान ने मुझसे कह दिया कि नहीं सकी आई। तो राधा रानी बोली अगर आज मेरे पुत्र हुआ होता और ये गुनाह नहीं किया होता तो आज मेरे सामने ही मेरे इष्ट ने किसी पराई स्त्री का आलिंगन नहीं किया होता। वो रूठकर मानसरोवर चली गई, जमुना पल्ली पार रोई है, मान माने रूठना और सरोवर माने इतना रोई कि सरोवर बन गया, और ये मानसिकता थी कि मेरे बेटा नहीं हुआ, तो वहाँ पे जो भी स्नान करते हैं तो उनके बेटा होता है। तब भगवान कृष्ण आए, बोले महारानी जी आप चलो, मेरा तो महाराज रुक गया। उनने कहा उसी के साथ श्रृंगार रहा महाराज करना, वही आपका श्रृंगार करेंगे। बोले नहीं, वो साक्षात भगवान शिव है, मेरे गुरु है जो गोपी बनकर आए हैं। बोले मैं नहीं मानती। तब भगवान शिव ने कहा आप चलिए तो सही। तब भगवान राधा रानी को मना के लाए, राधा रानी आई है, यो आप चिन्हों के दर्शन आपका जो कर रहे हैं ये राधा रानी के 5,500 वर्ष प्राचीन है, जो राधा रानी ने अपने हाथ से स्वयं इनका श्रृंगार किया है।
1: वृंदावन के गोपेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान शिव गोपी रूप में विराजमान हैं। यहाँ पे भगवान शिव को श्रृंगार महिलाओं की भांति करो जाए है।
0: एक दिन वो

पार्वती जी बोली, मैं भी आपकी पत्नी हूँ, मुझे भी अपने साथ बैठा लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, पत्नी का धर्म नहीं है कि पति को छोड़ कर चले जाए। महाराज हो रहा था, आप हमें छोड़ के चली गई, इसलिए आप बाहर बैठिए। आप जितने भी शिवालय में जाएंगे, वहाँ पार्वती जी शिव जी के साथ बैठिए। यहाँ पार्वती जी बाहर बैठी है। नंदी शिवाय शिव के किसी को देखता नहीं, तो इसलिए अपनी माँ से पूछ रहा है कि बाबा कहाँ गए, और बाबा यहाँ गोपी बनकर बैठे हुए। प्रातःकाल जब आप आएंगे तो दूध दही से अभिषेक होता है। शाम को इनके नित्य नई ड्रेस पहनकर महाराष्ट्र में जाते हैं और 16 श्रृंगार करके जाते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे जो भी आते हैं वो सौभाग्य को पाते।

0: आनंद की प्राप्ति को प्राप्त है। ये 5,500 वर्ष प्राचीन शिवालय है। भगवान कृष्ण के नाती हुए बज्रनाभ उन्होंने ही इसका जीर्णोद्धार कराया। अब मंदिर का जीर्णोद्धार अंग्रेज बच्ची जो है आकर जगह से पैसा कलेक्ट करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार करा रही है। सुबह 5 बजे से लेके 11:30 बजे तक जल चढ़ता है। उस समय 12 बजे तक आपको दर्शन हो सकती है। 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। शाम को 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक गोपी रूप के दर्शन होते हैं और 9:45 बजे इनकी शयन आरती होती है। देखिए रावरे की रूप की रीत यानी जो देखो नित लागत है। ये ब्रजभूमि है, यहाँ तो हर रोज रास होता है और महारास होता है। हर रोज यहाँ पे त्यौहार होता है। हर रोज दिवाली होती है, हर रोज होली होती है, हर रोज सावन होता है, हर रोज यहाँ पे हरा भरा होता है। इसलिए वृंदावन इसका नाम है। तो नवसा वृंदावन रहता है, हमेशा यहाँ पे त्यौहार और उत्सव मनते ही रहते हैं 12 साल। देखिए मैंने कहा ना पार्वती जी बाहर बैठी हुई है, नंदी पार्वती पूछ रहा है। उसके बगल में भैरव, भैरव जब आया है तो बाम बटुकाए नमा। यहाँ भैरव जो है बामन और बटुक के रूप में बैठा हुआ है, ताले में बंद है क्योंकि उधम मचाएगा। भगवान जब महाराष्ट्र में चले गए तो बोले प्रभु नंदी है गजानन सड़ानन उसका बांच हुआ, इनका पेट कैसे भरेगा? खाली प्यार से तो पेट भरता नहीं है। तब भगवान ने शिवरात्रि वाले के दूसरे दिन खप्पर पूजा जिसे बोलते हैं, भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी है। भिक्षाम देई माँ, हर जीव जंतु का आप जीव को पार्जन कीजिए और हमें महाराज का आनंद लेने दीजिए।
1: जय जी महाराज की जय, जय श्री राधे।
2: भगवान शिव गोपी रूप को धारण करके जब महाराज में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने बिनकू पहचान लियो और महाराज के संपन्न हेवे के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के संग मिल के महादेव की गोपी रूप में पूजा करी और उनसे या रूप में ब्रज में ठहरने को आग्रह करो। महादेव ने आप अपने आराध्य के आग्रह को स्वीकार करो। तब राधा रानी ने उनके या रूप को गोपेश्वर महादेव नाम दियो। तब से आज तक महादेव को यह रूप वृंदावन में विराजमान है। ऐसो मानो जाए है यह मंदिर को निर्माण श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवायो हो।

0: ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज की माटी तोहे प्रणाम में अभी आप सुन रहे थे गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन पर आलेख एवं प्रस्तुति रश्मि शर्मा की।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

ब्रज की माटी, दोहे प्रणाम के बाद आइए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी में इस ब्रज लोकगीत की ओर।

विनोद चतुर्वेदी के स्वर में गाए इसी ब्रज लोक गीत के साथ ही कार्यक्रम ब्रज माधुरी से अब हमें दीजिए आज्ञा। सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च

0: शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
1: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ।
2: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज

0: AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीयों को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.

अलका याग्निक और कुमार सानू को अभी आपने सुना फिल्म दिल का रिश्ता में। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए साजन फिल्म का ये अगला गीत। गायक कलाकार हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

एसपी बाला सुब्रमण्यम को अभी आप सुन रहे थे साजन फिल्म में। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म है दिल है तुम्हारा। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: दिल है तुम्हारा फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे संतराल के बाद।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में ताल फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

ताल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। और लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को दाग द फायर फिल्म में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गाए दाग दी फायर फिल्म के गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हिंदी वार्ता में मुद्दे की बात के अंतर्गत सोशल मीडिया गैजेट्स का बचपन पर प्रभाव। वार्ताकार हैं स्वप्निल सारस्वत।
1: आज सुबह जब घर से निकले हों तो जरा याद कीजिए, नाश्ते की टेबल पर कितने चेहरे फोन में झुके हुए थे, बच्चा भी, शायद माँ बाप भी और शायद दादा दादी भी। ये तस्वीर अब अपवाद नहीं, आदत बन चुकी है। और ये आदत अब सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के बचपन की कहानी बनती जा रही है। देश की संसद में पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में सरकार ने खुद ये चेतावनी दी है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी हर दिन औसतन 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं, जो विशेषज्ञों की तय की गई सुरक्षित सीमा से दोगुना है। 5 साल का बच्चा जिसकी उंगलियों को अभी पेंसिल पकड़ना सीखना था, वो स्क्रीन स्क्रॉल करना सीख चुका है। आंकड़े और डराते हैं। NHRC और इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 40 करोड़ बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें से 76% स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले बच्चे किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। सोचिए, हर 4 में से 3 बच्चा जिसके हाथ में फोन है वो सोशल मीडिया पर भी है। ये सिर्फ स्क्रीन टाइम की समस्या नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो गेमिंग डिसऑर्डर को अपनी अंतर्राष्ट्रीय रोग सूची यानी ICD-11 में एक मानसिक स्वास्थ्य बीमारी के तौर पर दर्ज कर दिया है। यानी जिसे हम बच्चा फोन में बिजी है, चलो ठीक है कहकर टाल देते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था की नजर में एक बीमारी की श्रेणी में आ चुका है। अब सवाल ये है कि क्या माँ बाप को ये पता नहीं? पता है, पूरा पता है। हर दूसरे माँ बाप से बात कीजिए, वो खुद कहेंगे, हाँ भाई फोन बुरा है हम जानते हैं, फिर भी बच्चे के हाथ से फोन नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि खुद माँ बाप का स्क्रीन टाइम भी कम नहीं है। विशेषज्ञ बार बार ये बताते हैं कि माता पिता के स्क्रीन टाइम और बच्चे के स्क्रीन टाइम के बीच सीधा रिश्ता है। जो बच्चा हर शाम माँ बाप को फोन में डूबा हुआ देखता है वो यही सीखता है और उसे लगता है यही सामान्य है। दूसरी वजह, सुविधा। बच्चा रोता है, फोन थमा दो, बच्चा खाना नहीं।

नहीं खा रहा, फोन थमा दो। बच्चा शोर मचा रहा है, फोन थमा दो। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं स्क्रीन को इनाम या सजा बना देना। होमवर्क कर लोगे तो आईपैड मिलेगा। ये सुनने में कितना मासूम लगता है, पर इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे के मन में स्क्रीन की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है और सब्जी खाना, पढ़ाई करना, ये सब उसे सजा जैसा लगने लगता है। अब बात करते हैं आगे चलकर क्या असर होगा इन बच्चों की जिंदगी पर। नींद सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। देर रात तक स्क्रीन देखने से बच्चों की नींद का पैटर्न बिगड़ता है और नींद की कमी सीधा असर डालती है एकाग्रता और व्यवहार पर। फिर आंखों की समस्या, लगातार स्क्रीन पर आंख गड़ाए रहने से बच्चों में मायोपिया यानी नजदीक की चीजें साफ देखना, दूर की धुंधली जैसी समस्या तेजी से बढ़ रही है और डॉक्टर अब कम उम्र के बच्चों में भी चश्मे के मामले ज्यादा देख रहे हैं। इसके अलावा मोटापा, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में ध्यान न लगना, ये सब लक्षण अब क्लासरूम में आम होते जा रहे हैं। टीचर खुद बताते हैं कि जो बच्चा कभी 15 मिनट किताब पर टिक जाता था अब 5 मिनट में भी बेचैन हो जाता है। और सबसे चिंताजनक पहलू सुरक्षा का। मई 2006 में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों में भारी वृद्धि दर्ज हुई है। जिस फोन को हम बच्चे को बिजी रखने के लिए कहकर थमा देते हैं, वही फोन उसे उन खतरों के सामने भी खड़ा कर देता है जिनके लिए अभी वो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो क्या सोशल मीडिया अकेला विलेन है इस कहानी में? पूरी तरह तो नहीं। सोशल मीडिया एक बड़ा किरदार जरूर है, पर विलेन अकेला नहीं है। असली तस्वीर इससे थोड़ी बड़ी है। पहला किरदार है न्यूक्लियर फैमिली का बढ़ता चलन। शहरों में अब दादा दादी, चाचा चाची वाला संयुक्त परिवार कम होता जा रहा है। जिस बच्चे के पास पहले खेलने के लिए भाई बहन, कजिन, पड़ोस के बच्चे होते थे, अब उसके पास सिर्फ स्क्रीन है दोस्ती निभाने के लिए। यहाँ एक हल भी छुपा है। जब बच्चों को घर में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची का साथ ज्यादा मिलता है तो उसका फोन अपने आप पीछे छूट जाता है, क्योंकि तब कोई कहानी सुनाने वाला होता है उसके पास, कोई साथ खेलने वाला होता है, कोई सवालों के जवाब देने वाला होता है। बच्चे को स्क्रीन तभी ज्यादा चाहिए होती है जब असली इंसान पास नहीं होता। पर यहाँ एक नई मुश्किल भी खड़ी हो गई है। आजकल दादा दादी हो, नाना नानी हो, वो भी फोन में उतना ही वक्त बिता रहे हैं जितना बच्चे, बल्कि उनसे ज्यादा। वीडियो देखना, व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ना, रील्स स्क्रॉल करना, बुजुर्गों की शामें भी अब स्क्रीन की भेंट चढ़ रही हैं। सोचिए, जिस पीढ़ी से उम्मीद थी कि वो बच्चों को किससे कहानियां सुनाएगी, बाहर बगीचे में घुमाएगी, असली दुनिया से जोड़ेगी, वही पीढ़ी अब खुद फोन में उलझी बैठी है। तो हल सिर्फ बच्चे का फोन छीनना नहीं है, हल ये है पूरा परिवार, बड़े बूढ़े से लेकर बच्चे तक मिलकर तय करें कि साथ बैठने का, बात करने का, बिना स्क्रीन के वक्त बिताने का एक कोना हो, एक दिन हर घर में जरूर बनाया जाए। सोचकर देखिए वो दौर जब शाम को दादी कहानी सुनाती थी, नाना बगीचे में साइकिल चलाना सिखाते थे, मामा मामी के घर गर्मियों की छुट्टियों में मजे किए जाते थे। आज उसी शाम में सब अपने अपने कोने में अपनी अपनी स्क्रीन के साथ बैठे मिलते हैं। बच्चा अपने कमरे में YouTube देख रहा है, माँ बाप अपने कमरे में Instagram में, और दादा दादी अपने कमरे में Facebook या वीडियो कॉल में व्यस्त हैं। एक ही घर, चार स्क्रीन, चार अकेलेपन। ये सिर्फ बच्चों की समस्या नहीं रह गई है, ये पूरे परिवार की आदत बन चुकी है। अब जब तक बड़े खुद स्क्रीन से दूरी नहीं बनाएंगे, बच्चे से ये उम्मीद रखना बेमानी है। हफ्ते में एक शाम तय कीजिए जब घर का हर सदस्य, चाहे किसी भी उम्र का हो, अपना फोन एक साइड में रख देगा। सिर्फ बातें हो, हंसी हो, कोई पुराना खेल हो, यही शाम धीरे धीरे पूरे घर की आदत बदल सकती है। दूसरा किरदार है स्कूलों की भूमिका। ऑनलाइन क्लासेस ने खासकर कोविड के बाद बच्चों को कम उम्र में ही स्क्रीन से जोड़ दिया है। पढ़ाई के नाम पर मिला हुआ स्क्रीन टाइम भी असल में उतना ही असर डालता है जितना गेमिंग वाला। तीसरा किरदार है शहरों में जगह की कमी। पार्क कम हो रहे हैं, खुली जगह कम हो रही है, बाहर खेलने का माहौल ही सिकुड़ता जा रहा है। बच्चा बाहर जाए भी तो कहाँ? और चौथा सबसे बड़ा किरदार, खुद टेक कंपनियों का डिजाइन। एप्स जानबूझकर इस तरह बनाए जाते हैं कि स्क्रॉलिंग कभी खत्म ही ना हो। नोटिफिकेशंस, रील्स, ऑटो प्ले, ये सब बच्चों के दिमाग को बार बार वापस बुलाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कोई हादसा नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। तो अब सवाल ये है कि रास्ता क्या है? दुनिया के कई देश इस पर सख्त कदम उठा चुके हैं। ब्राजील में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट अब उनके माँ बाप के अकाउंट से जुड़े होना अनिवार्य है, और वहाँ अनंत स्क्रॉल जैसी लत लगाने वाली सुविधाओं पर भी रोक लगाई गई है।
चीन में उम्र के हिसाब से बच्चों के फोन पर समय और ऐप इस्तेमाल करने की सीमा पहले से तय है, और इंडोनेशिया में मार्च 2026 से टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे हाई रिस्क प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। भारत में भी कदम उठ रहे हैं। सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर CBSE के दिशा निर्देश, स्कूलों में स्क्रीन टाइम के लिए अलग फ्रेमवर्क और बच्चों की ऑनलाइन

0: से जुड़े नियम अब मौजूद हैं। साथ ही 2022 में शुरू हुए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेलीमानस को अब तक 32 लाख से ज्यादा कॉल मिल चुकी हैं। ये अपने आप में बताता है कि समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है, पर कानून और नीतियां तभी असर करेंगी जब घर से शुरुआत हो। विशेषज्ञ जो सुझाव देते हैं वो घर में कुछ जगह तय कर दीजिए जहां फोन नहीं चलेगा, जैसे खाने की टेबल या बेडरूम। सोने से कम एक घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दीजिए। आंखों के लिए 20-20-20 का नियम अपनाइए। हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी से किसी चीज को देखिए। और सबसे जरूरी, स्क्रीन को इनाम या सजा मत बनाइए, बल्कि बच्चे को साइकिल चलाना, मिट्टी से खेलना, पार्क में दौड़ना जैसे विकल्प दीजिए ताकि उसका शरीर थके और दिमाग खुद ब खुद स्क्रीन की मांग कम करे। और सबसे बड़ी बात, जो माँ बाप खुद फोन में डूबे रहते हैं वो बच्चों को फोन से दूर रहने की सलाह नहीं दे सकते। बदलाव घर की उस मेज से शुरू होगा जहां आज सुबह सब लोग फोन में झुके हुए थे। बचपन बैंक अकाउंट नहीं है जिसमें खोया हुआ समय बाद में जमा किया जा सके। जो घंटे आज स्क्रीन ले रही है वो घंटे कभी किताबों को नहीं मिलेंगे, दोस्तों को नहीं मिलेंगे, मैदान को नहीं मिलेंगे। सवाल फोन का नहीं है, सवाल ये है कि हमारे बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त कौन होगा, एक स्क्रीन या एक इंसान। फोन को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, पर उसे बच्चे की परवरिश की जगह लेने देना ये सबसे बड़ी भूल होगी जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ी चुकाएगी। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम आज बदलेंगे या इंतजार करेंगे कि आंकड़े और डरावने हों। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता में मुद्दे की बात के अंतर्गत सोशल मीडिया गैजेट्स का बचपन पर प्रभाव। वार्ताकार थी स्वप्निल सारस्वत। लीजिए अब सुनिए त्रिलोक कपूर के स्वर में ये देशकान।
0: आज सुबह जब

0: अभी आप सुन रहे थे त्रिलोक कपूर के स्वर में ये देश गीत।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम,
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम,
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेर के 9:15 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
2: वाराणसी में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रथम पंच सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लेकर ग्रामीण विकास सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता गांवों तक विकास की हर योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से जन भागीदारी बढ़ाने तथा सरकारी योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकासोन्मुखी बनाना है। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के 350, बिहार के 75, झारखंड के 50 तथा उत्तराखंड के 25 ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विकसित ग्राम पंचायतों की अवधारणा, ग्राम स्वराज, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सहभागिता आधारित विकास मॉडल की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर ग्राम प्रधानों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण सड़क, स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने गाँव के विकास को नई दिशा और गति दी है। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा करते हुए इन्हें गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। सम्मेलन में पंचायतों की संस्थागत तैयारी, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ग्राम प्रधान प्रियंका सिंह ने कहा, सभी ग्राम प्रधान ग्रामीण विकास को जन भागीदारी से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री

0: मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल के व्यापक विस्तार एवं आधुनिकीकरण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल को 9 मंजिला अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद पूर्वांचल के लाखों मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। नए अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, कैंसर उपचार, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 50 से अधिक आईसीयू बेड, 100 से अधिक एचडीयू बेड, अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट तथा मातृ एवं शिशु चिकित्सा सहित कई सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने वार्डों का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात कर उपचार की गुणवत्ता की जानकारी ली तथा चिकित्सकों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता, दवाओं की उपलब्धता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर हाल में सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता पूर्वक आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। कबीरचौरा अस्पताल का यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट न केवल वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा
1: मंडली चिकित्सालय की जो सुविधाएं हैं वो भी रहेंगी और अतिरिक्त भी सुविधाएं, आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाएंगे और बेहतर उच्चीकृत सेवाएं करेंगे, एमआरआई, सीटी, डायलिसिस, अन्य सुविधाओं को भी बेहतर से बेहतर कराएंगे। जो भी आवश्यकताएं हैं वाराणसी की मरीजों के हित में सब कुछ पूरे।
0: प्रदेश में 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक संचालित 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में वाराणसी मंडल ने अग्रणी उपलब्धि हासिल करते हुए विभिन्न प्रमुख सूचकांकों पर 100% प्रदर्शन दर्ज किया है। अभियान के अंतर्गत गांव-गांव एवं शहर-शहर व्यापक स्तर पर टीबी की स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार की सेवाएं प्रदान की गयी। अभियान के दौरान हाई रिस्क गाँवों का 100% आच्छादन सुनिश्चित किया गया। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर एनडी शर्मा ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर संभावित टीबी मरीजों की पहचान की गई तथा चिन्हित मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराया गया। अभियान में वाराणसी मंडल के चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, जौनपुर एवं गाजीपुर ने सक्रिय सहभागिता निभाई।
2: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नोमानी का।
3: मऊ में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी पहल है जो शिक्षकों तथा उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। शिक्षक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि
4: मऊ जिले के लगभग 9,000 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है और शिक्षक को ही नहीं बल्कि उसके परिवार जनों को भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और माध्यमिक शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, रसोइयों को भी इसका लाभ मिलने वाला है।
3: मऊ जिले में बाढ़ एवं तटकटान से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला अधिकारी आनंद वर्धन ने सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित ग्राम परसिया देवार एवं धर्मपुर विसुनपुर के मध्य प्रस्तावित तटकटान निरोधक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जिलाधिकारी को परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 566.16 लाख रुपए है। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ एवं कटान प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि परियोजना के प्रत्येक चरण का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी की धारा को सुचारू रूप से प्रवाहित करते हुए तट को सुरक्षित बनाना, नदी के दाएं तट को अस्थायित्व प्रदान करना तथा आसपास के गांवों, कृषि भूमि एवं पक्के मकानों को कटान से बचाना है। मऊ के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी

0: विवेक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पोषण अभियान के अंतर्गत जिला पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर जनपद में संचालित पोषण संबंधी कार्यक्रमों, संभव अभियान 6.0 तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी रंजीत कुमार ने संभव अभियान 6.0 के 5 प्रमुख घटकों, सामुदायिक जन जागरूकता एवं सहभागिता, कुपोषण की शीघ्र एवं समयबद्ध पहचान, आवश्यक सेवाओं से लाभार्थियों को जोड़ना, नियमित अनुवर्ती अनुश्रवण तथा आवश्यकता अनुसार संदर्भन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संभव अभियान 6.0 की थीम गर्भा अवस्था से बाल्या अवस्था तक पोषण सुरक्षा है, जिसके अंतर्गत जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। साथ ही गंभीर एवं मध्यम कुपोषण की रोकथाम और प्रभावी प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया कि कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चिन्हित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनका ई कवच पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। मऊ जिले में चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने अभियान को जन भागीदारी के माध्यम से सफल बनाने तथा प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छता एवं रोगों से बचाव का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए साफ सफाई, जल भराव की रोकथाम, फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव तथा व्यापक जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। मऊ जिले में जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पुलिस कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्रिय योगदान देने की शपथ दिलाई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
3: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:25 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आबोहवा में मृदा अपरदन पर यह जानकारी दे रहे हैं अशोक गुप्ता।
4: पर्यावरण के निर्माण में मृदा एक प्रमुख संगठक पदार्थ है। जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मानव सहित सभी जीव भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा से संबंधित होते हैं, क्योंकि पैतृक चट्टानों के विघटन से प्राप्त खनिज तत्व ही प्रकृति में उपलब्ध सूर्य की ऊर्जा, जल, वायु एवं विभिन्न सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से ह्यूमस नामक पदार्थ का निर्माण कर पौधों एवं जीवों में जीवन का संचार करते हैं। मृदा की संरचना, निर्माण, बनावट एवं गुण स्थान विशेष में भिन्नता लिए हुए होते हैं। यही कारण है कि सजीव भी भिन्न भिन्न पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी जगह एक जैसे ही जीव जंतु एवं एक जैसे ही पेड़ पौधे पाए जाते। यही प्रकृति का रहस्य भी है कि भिन्न भिन्न मृदा वाले क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। प्राकृतिक असंतुलन एवं पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कई कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण मृदा अपरदन भी है। विभिन्न प्राकृतिक एवं जैविक कारणों से मृदा का अपने स्थान से हटकर या बहकर अन्यत्र चले जाना और अपने पीछे बंजर भूमि छोड़ जाना मृदा अपरदन या सोयल इरोजन कहलाता है। सामान्य भाषा में इसे हम मिट्टी का कटाव के नाम से भी जानते हैं। मृदा अपरदन के कारण उपजाऊ मिट्टी के सूक्ष्म कण मय पोषक तत्वों के अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे उस स्थान की मृदा अनुपजाऊ होकर धीरे धीरे बंजर हो जाती है। इस कारण वहां वनस्पति आवरण भी कम होने लगता है, साथ ही उस पर आश्रित संपूर्ण खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल भी प्रभावित होता है। इस प्रकार मृदा अपरदन से संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है, इसीलिए

मृदा की सुरक्षा एवं संरक्षण आवश्यक है। मृदा अपरदन को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे जलीय अपरदन, वायु अपरदन एवं समुद्रीय अपरदन। जलीय अपरदन में बहती हुई नदी का जल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को एवं किनारे की मिट्टी को बहाकर ले जाता है, जिससे मृदा के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। बाढ़ का पानी जलीय अपरदन में अधिक भूमिका निभाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जल द्वारा अपरदन से अवनालिकाएं बन जाती है, जो शने शने गहरी होती जाती है। नदियों में तेज जल के प्रवाह से नदी तट का किनारा कटता जाता है और नदी चौड़ी होती जाती है। वायु द्वारा मृदा अपरदन खुले मैदानों, वनस्पति रहित क्षेत्रों एवं मरुस्थल में अधिक होता है। वायु के तीव्र वेग से मृदा के कण अपने स्थान से तेजी से बहकर अन्यत्र स्थानांतरित हो जाते हैं। समुद्री अपरदन में समुद्री लहरों एवं ज्वार भाटा के कारण तटवर्ती क्षेत्रों की मृदा का अपरदन होता है। साथ ही तटीय क्षेत्रों की मृदा अधिक लवणीय हो जाने से कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। प्रकृति जन्य कारणों के अलावा मानवीय हस्तक्षेप से भी मृदा का अपरदन होता है, जैसे वनों का निरंतर विनाश, अनियंत्रित पशु चराई, निरंतर कृषि, अनियंत्रित सिंचाई, झूम कृषि इत्यादि। वनों की निरंतर कटाई से वनस्पति का विनाश हो जाता है तथा धीरे धीरे जमीन की ऊपरी परत बिल्कुल अनावृत हो जाती है, जिससे तीव्र मृदा अपरदन होता है। पहाड़ी एवं ढाल वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसके अतिरिक्त ढाल कम करने के लिए बीच बीच में दीवारें भी बनाई जाती है। पानी के प्रवाह को रोकने के लिए छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं तथा नदियों एवं नहरों के किनारों पर पक्की दीवार बनाई जाती है। फसल चक्र अपनाकर अनियंत्रित पशु चराई व झूम कृषि रोककर, जंगलों को बचाकर, मिट्टी को बांधने वाले पौधे लगाकर तथा वायु के वेग को कम करने वाले पौधे जैसे विंड ब्रेक्स लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इन सब सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मृदा को अपरदन से बचाया जा सकता है। आइए आप और हम सब मिलकर सरकार के इन प्रयासों में भागीदार बने एवं मृदा अपरदन को रोकने में सहयोग कर इस बहुमूल्य मृदा को संरक्षित रखने का प्रयास करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, विषय था मृदा अपरदन, आलेख एवं वाचन थे अशोक गुप्ता के। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं सुरभि शर्मा। कार्यक्रम संयोजन है OP सिंह का।

सुप्रभात, करते हैं एक नई शुरुआत नए उमंग और नए उल्लास के साथ। श्रोताओं, आजकल मौसम बड़ा अच्छा हो चुका है, यानी कि हमारे आसपास जो गर्मी और उमस का एक माहौल बन गया था, जो मौसम हमें परेशान कर रहा था, गर्म हवाएं हमारे तन को परेशान कर रही थी, मन को भी परेशान कर रही थी, आज हल्की हल्की जो बूंदाबांदी हो रही है, बरसात का मौसम जो शुरू हो चुका है, वो कहीं ना कहीं हमें ये संदेश दे रहा है कि अब परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन जीवन का नियम है, यही है आज का विचार। अगर आप परिवर्तन को अपने जीवन में अपना लेंगे तो निसंदेह आप खुश रह पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक चीज से चिपक कर बैठ जाते हैं, उससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसा हुआ है कि उनके साथ कुछ गलत घटित हुआ है, कुछ परेशानियां हैं, तो उन्हीं परेशानियों का रोना लोकर बैठ जाते हैं। अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ने के बजाय उसी में अपना जीवन गुजार देते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हमने तो वैसा किया था। जो बीत गई सो बात गई, जो आज है वो आपका अपना है और आने वाले कल को आपको संवारना है। ये मौसम का जो परिवर्तन है वो हमें ये सीख

देता है, कोई भी चीज स्थाई नहीं है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो। अगर हम प्रकृति से सीखें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, परिवर्तन को अपनाएं, जैसा भी समय हो हम उसे हंसकर धैर्य से ईश्वर का नाम लेकर अपनाते रहेंगे तो निसंदेह हमें सफलता ही मिलेगी, हम परेशान नहीं होंगे। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। जब ज़्यादा दुख हो तो घबराएं नहीं, सुख में बहुत ज़्यादा प्रसन्न ना हो। अगर आप ये सोच लेंगे जिस तरीके से मौसम का परिवर्तन आता है उसी तरह जीवन में भी परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को अपने जीवन में अपनाएं तो सदा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुँचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुँचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
4: श्रोताओं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर मानव को प्रभु अपनी इच्छा से गढ़कर बनाकर भेजता है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें किसी न किसी रूप से कोई कमी पाई जाती है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। ऐसे बच्चों को कहा गया है दिव्यांग बच्चे, यानी उनके पास एक अंग ऐसा होता

0: है जो सबसे अलग होता है, जिन्हें स्पेशली एबल्ड चाइल्ड भी कहा जाता है, फिर भी उनको मुख्यधारा से अलग कर दिया जाता है क्योंकि ऐसा लगता है वो सामान्य नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन इस ओर से बहुत गंभीर है उन सभी बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए, उन्हें आम जीवन जीने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विषय पर हमने बातचीत करी, हमारे साथ हैं।
1: नमस्कार सभी को, मैं हूँ रतन कीर्ति, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा।
2: मैम, आज के समय में जब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जिन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सभी लोग कटते हैं, हमारे द्वारा, हमारी सरकारों के द्वारा क्या उनको मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो वो प्रयास किस स्तर पर किए जा रहे हैं?
1: देखिए, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा, हमारे समग्र शिक्षा के द्वारा लगातार कई योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य है हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिसमें दृष्टि बाधित भी हो सकते हैं, मूक बधिर भी हो सकते हैं, कोई मेंटली रिटायर्ड भी हो सकते हैं, तो उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सबसे पहले तो उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स की तैनाती हर ज़िले में की गई। स्पेशल एजुकेटर से मतलब है, स्पेशल एजुकेटर से मतलब है कि ऐसे बच्चों को देने के लिए, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए, ऐसे बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ कराने के लिए जिनका चयन किया जा रहा है वो स्पेशल एजुकेटर्स हैं। हर ज़िले में हैं, हमारे ज़िले में भी 33 स्पेशल एजुकेटर्स हैं।
0: क्या इनको जांच परख कर रखा जाता है, इनकी योग्यता, इनकी शैक्षिक योग्यता का पूरा सत्यापन गुणन किया जाता है?
1: जी बिल्कुल, इनको बकायदा इनकी जो शैक्षिक योग्यता है, उनके जो अभिलेख हैं, उनकी सत्यता की जांच होती है, इनका इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद ही इनको रखा जाता है।
0: किस प्रकार स्पेशली एबल्ड बच्चों को अलग ट्रीटमेंट देकर उनको मुख्यधारा में लाया जाता है? क्या कोई मापदंड है जिसके द्वारा आप ये नापते हैं कि इस बच्चे में ये कमी है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है?
1: जी, हमारे यहाँ सबसे पहले जो आरम्भ किया जाता है वो है मेडिकल असेसमेंट कैंप। हम लोग कई ब्लॉक्स में मेडिकल असेसमेंट कैंप्स लगाते हैं, जहां बच्चों को बुलाया जाता है, उनका मेजरमेंट किया जाता है, जिससे कि, और उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे कि भविष्य में अगर हमें कोई इक्विपमेंट्स उनको देना पड़े तो वो उनकी जो अक्षमता है उसके आधार पर उनको इक्विपमेंट्स दिए जा सके।
0: कई सारी प्रक्रिया निःशुल्क होती है?
1: ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, ये पूर्णतः निःशुल्क है। पूर्व में भी जब मैं आई थी तो मेडिकल असेसमेंट कैंप यहाँ लगाए गए थे। अभी जो है हमारे 16/9/2026 यानी कि 16 सितंबर 2026 को और 18 सितंबर 2026 को राया और चमुआ में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, एलिम्को कैंप लगाए जाएंगे, और उसकी जो तैयारी है वो हमने स्टार्ट कर दी है।
0: यानी कि उनको दिव्यजन प्रमाण पत्र दिए जाएंगे?
1: दिए जाएंगे, उसके बाद हम लोग उनको जो उनके इक्विपमेंट्स हैं उनका वितरण सुनिश्चित करेंगे।
0: किस प्रकार उन बच्चों को मुख्यधारा में लाया जाता है, कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?
1: एक तो मेडिकल एसेस, जैसे कि मैंने अभी बताया, उसके बाद उपकरण वितरण किया जाता है उनको। जैसे कोई बच्चा नहीं, दृष्टि बाधित है, देख नहीं पाता, तो उसको लो विज़न किट दी जाती है। पेरेंट्स काउंसलिंग भी कराई जाती हैं, यानी कि जो पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, उनको बुलाया जाता है, उनको हम अपनी योजनाओं के बारे में समझाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यालय में अपने बच्चों को एनरोल करें। हमारे यहाँ अलग से किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि अलग से उनको शिक्षण दिया जाएगा, वो हमारे विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ ही बैठेंगे।
0: ये बहुत अनोखी बात आपने बोली, क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चों के लिए अलग विद्यालयों का निर्माण किया जाता है। किसी भी एक स्कूल में कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहते कि ऐसे बच्चों को हमारे बच्चों के साथ पढ़ाया जाए। ये बहुत गलत भ्रांति लोगों के मन में जो बैठी हुई है, उसको लेकर किस प्रकार शासन प्रशासन कार्य कर रहा है?
1: देखिए, हमारे यहाँ इस प्रकार का किसी कोई भी भेदभाव नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे जो बच्चे हैं नॉर्मल हमारे स्कूल में ही एडमिशन लेंगे, लेकिन उनको पढ़ाया स्पेशल एजुकेटर्स के द्वारा जाएगा, क्योंकि उनको पढ़ाने की ट्रेनिंग उनके द्वारा ही ली गई है। कोई अलग से उनके लिए, और उनके लिए रैम्प की व्यवस्था, दिव्यांग शौचालय की व्यवस्था, ये सब भी हमारे विद्यालयों में है। और उसके बाद जो बहुत गंभीर स्थिति में हैं, जो बच्चे जो बहुत चल नहीं पाते, स्कूल नहीं पहुंच पाते, तो उसमें हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो घर जाकर भी उनको शिक्षा देते हैं। होम बेस्ड एजुकेशन जो है वो दी जाती है।
0: क्या जब बच्चे एजुकेशन लेने आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ धनराशि प्रदान की जाती है या कुछ पारितोषिक दिया जाता है ताकि वो अपनी शिक्षा निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कर सकें?
1: जब बच्चों को दिया जाता है, जी, हम लोग DBT के माध्यम से स्टाइपेंड्स देते हैं और स्पॉट अलाउंस भी देते हैं।

0: हैं, जैसे 200 रुपये प्रति माह 10 माह के लिए दिया जाता है, और एस्कॉर्ट अलाउंस में जो गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चे हैं उनको 600 रुपये प्रति माह दिया जाता है।
1: क्या इन बच्चों की देखभाल, इनकी दवाई वगैरह की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जाती है?
0: जी बिल्कुल जी। और इसके अलावा हम लोगों के जैसे एक्सपोजर विजिट है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे सिर्फ घर के अंदर रहने के लिए बने हैं या सिर्फ विद्यालय में आके एक कोने में बैठने के लिए बने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्टिविटीज़ हमारे नॉर्मल बच्चों के साथ में होती हैं वही एक्टिविटीज़ इन बच्चों के साथ में भी होती हैं। इनको भी बाकायदा हम आसपास के वातावरण को दिखाने के लिए एक्सपोजर विजिट के लिए लेकर जाते हैं, और पिछले अभी फरवरी में ही हम लोग हमारे बच्चों को एक्सपोजर विजिट के लिए लेके गए थे और टीग लेके गए थे।
1: ऐसे बच्चों को आगे जीवन में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या कुछ टेक्निकल कोर्सेज या कुछ इस तरह की शिक्षा दी जाती है ताकि वो किसी पर डिपेंड ना रहे, इंडिपेंडेंट होकर अपना जीवन यापन करें?
0: बिल्कुल, जो भी हम लोगों के द्वारा इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं या ब्रेल किट दी जा रही है तो वो कहीं ना कहीं इनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए दी जा रही है। अभी हाल ही में हमारा स्कूल चलो जब अभियान कार्यक्रम हुआ तो हमने इन बच्चों को भी उन बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में ना सिर्फ सम्मिलित किया बल्कि ये दिखाया कि वो कहीं से कम नहीं है। हमारा एक बच्चा जिसके दोनों हाथ नहीं है उसने पैरों से ना सिर्फ सब कुछ लिखकर दिखाया बल्कि सबको अचंभित भी किया। हमारे दृष्टिबाधित बच्चों ने, हमारे मूक मदल बच्चों ने राष्ट्रगान जो है और हमारा जो नेशनल एंथम है उसको अपने अभिव्यक्तियों के माध्यम से सबको बताया। सब जितने भी लोग थे सब भाव विभोर हुए, बहुत अचंभित भी हुए कि हमारे बच्चे जो हैं कहीं से किसी से भी कम नहीं हैं। और कुछ बच्चों ने जो ब्लाइंड हैं जो नहीं देख सकते उन्होंने टाइप करके भी दिखाया।
1: क्या कुछ स्पेशल कोर्सेज उनको सिखाए जाते हैं, कुछ टेक्निकल कोर्सेज उनको सिखाए जाते हैं जिसके द्वारा ये जीवन में आगे बढ़ सके?
0: देखिए ये तो बेसिक, क्योंकि हमारा बेसिक डिपार्टमेंट है तो हमारे बच्चे यहाँ सिर्फ 6 से 14 साल तक का हमारे यहाँ पर है, तो 14 साल के बाद जो है उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा हो सकती है
1: जी।
0: तो उसके बारे में माध्यमिक शिक्षा में क्या है इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निकल कोर्सेज ज़रूर होंगे जो इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो IAS PCS या अन्य सेवाओं में ना जाते।
1: हमारे जनपद में दिव्यांग बच्चों की स्थिति क्या है, कितने हैं और किस प्रकार उनकी देखभाल की जाती है, उनके खाने पीने के लिए क्या विशेष तरह का आहार प्रदान किया जाता है?
0: नहीं, इस तरीके का नहीं है, वो तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, क्योंकि हम उनके ऐसे स्पेशल नहीं मानते हैं।
1: जी बिल्कुल, ये बहुत उम्दा आपने बोली कि उनको हम मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आम बच्चे रखते
0: हैं। मतलब हमारे यहाँ पर क्योंकि बच्चे जो है हम उनको अलग मान ही नहीं रहे तो वही भोजन करते हैं जो हमारे यहाँ सामान्य बच्चे भोजन करते हैं। हम उनको शैक्षिक सपोर्ट देते हैं, होम बेस्ड एजुकेशन देते हैं, हम लोग उनको इक्विपमेंट्स देते हैं और जो सपोर्ट फाइनेंशियली कर सकते हैं वो हम करते हैं। 200 या 600 रुपये के अलावा भी जो 1200 रुपये सरकार के द्वारा दिए जा रहे वो भी उनके खाते में जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे द्वारा सपोर्ट उनको लगातार किया जाता है। और मैं सभी अपने जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं या कुदरत की किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, ऐसे हो गए हैं, तो उन पेरेंट्स को मैं यही समझाना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपके साथ में। आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग से अपने बच्चों को जोड़िए और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनका आप लाभ उठाइए।
1: किस प्रकार ये सारी योजनाओं की जानकारी आपके माध्यम से जनता को दी जाती है?
0: देखिए हमारा वैसे तो हम लोग न्यूज़पेपर्स में निकलवाते हैं, आज आपके साथ में वार्तालाप हो रही है तो इस तरीके से प्रचार प्रसार भी करते हैं, और जो हमारे टीचर्स हैं वो रैली निकालते हैं, जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है जब नॉर्मल बच्चों की होती है तो उसमें भी इनको बताया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग हमेशा प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं। और ये एक नया माध्यम जो कि आपने कल ये इनिशिएटिव लिया है तो ये कहीं ना कहीं प्रभावी रहेगा, ऐसे और माध्यम से हम लगातार जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे।
1: क्या कहना चाहेंगी सभी से?
0: मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप कहीं से भी परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है, बेसिक शिक्षा विभाग आपके साथ है। आप आइए, अपने बच्चों का एडमिशन्स कराइए, सरकार की द्वारा चल रही योजनाओं का लाभ।
1: श्रोतो, अभी आपने सुना BSA मैम को कि किस प्रकार दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब हमने बात करी किस प्रकार
2: शासन प्रशासन के द्वारा ऐसे योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे इन बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाए।

0: भी साथ है। मेरा नाम प्रगति मिश्रा है, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा मथुरा। हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चे कुल 3,000 के आसपास हैं, जिनको हमारे यहाँ शैक्षिक सपोर्ट से लेके जो भी शासन प्रशासन स्तर से निर्देश मिलते हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो सब व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चों का सर्वेक्षण किया जाता है। जिस भी तरीके का दिव्यांग है पहले उसका सर्वे करके उसका नामांकन कराया जाता है। RBSK की टीम जो स्वास्थ्य विभाग की है उनके माध्यम से और हम लोग स्वयं स्वास्थ्य विभाग से मिल के मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन कराते हैं डॉक्टर्स की टीम के अंडर में। जो बच्चा दिव्यांग होता है उसको दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद जब उनको मिल जाता है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, तब उसके बाद हमारी और सी सुविधाएँ आती हैं इन्हीं दिव्यांग बच्चों के लिए, जैसे उपकरण मापन वितरण है, इनको निःशुल्क इनकी डिसेबिलिटी के अनुसार उपकरण दिए जाते हैं। जो बच्चे ब्रेल किट मतलब जो पूर्ण दृष्टि बाधित हैं और अल्प दृष्टि दिव्यांग हैं उनको ब्रेल किट और लो विजन किट दी जाती है। बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग कराते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता कि पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते स्कूल, तो उनको पेरेंट्स की काउंसलिंग प्रति विकास खंड 3-3 होती हैं और उसमें हमारे स्पेशल एजुकेटर हो गए, खंड शिक्षा अधिकारी भी होते हैं, वो उनके माध्यम से उनको काउंसलिंग की जाती है जिससे वो बच्चों को भेजें और बच्चों को जो सरकार की तरफ से लाभ दिए जा रहे हैं वो उपलब्ध कराए जा सके। जो गंभीर रूप से हमारे यहाँ दिव्यांग होते हैं जो कि नामांकित तो हैं लेकिन आने जाने में असमर्थ हैं तो उनको उनके लिए होम बेस्ड किट की व्यवस्था की गई है। होम बेस्ड किट के माध्यम से हमारे स्पेशल एजुकेटर ही उन्होंने अपनी यूनिट में रख रखा है। बच्चों के घर जाके पहले वो सिखाते हैं कि बच्चे का पूरा बनाते हैं वो असेसमेंट करके कि ये चीज़ें उसको प्राइमा फेसी ज़रूरत हैं। जैसे हर बच्चा जो गंभीर रूप से दिव्यांग है वो पेंसिल लेके पढ़ने नहीं लगेगा, उसका जो पहला पार्ट है वो उसको एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में पारंगत करना होता है, या वो इतना तो कर ले कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, तो उसको लेके उसके अनुसार वो उसको ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जो हमारी दिव्यांग छात्र छात्राएँ हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए 200 रुपये प्रति महीना के अनुसार 10 महीने के लिए DBT के माध्यम से 2,000 स्टाइपेंड दिया जाता है। हमारे यहाँ एस्कॉर्ट अलाउंस भी दिया जाता है। यदि कोई बच्चा स्कूल आना चाहता है और इस कंडीशन में है कि किसी की मदद के थ्रू, किसी उपकरण के मदद के थ्रू या पेरेंट्स के मदद के थ्रू वो जा सके स्कूल में, तो उसके लिए 600 रुपये प्रति महीना 10 महीने के अनुसार 6,000 रुपये DBT के माध्यम से दिया जाता है। हमारे यहाँ बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों को एक्सपोजर विजिट कराई जाए, इसलिए जनपद स्तर में 3 एक्सपोजर विजिट कराई जाती हैं बच्चों की। रिसोर्स रूम की स्थापना भी हुई है कि जहाँ पे हमारे यहाँ अब तो कैंप जो लग चुके हैं उसमें जो बच्चे मिल गए हैं उनको और अच्छे से ट्रेनिंग देने के लिए रिसोर्स रूम की व्यवस्था की गई है। जो शीघ्र पहचान मतलब जो आंगनवाड़ी के अंडर में मतलब बच्चे आते हैं उनके उनको भी कि वो बच्चों की शीघ्र पहचान कर सकें उसके लिए हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का प्रशिक्षण भी कराते हैं। इसके अलावा हम जो सहायक अध्यापक हैं उनको उनका भी प्रशिक्षण कराते हैं जिससे वो समझ सकें कि बच्चों की नीड क्या है और बच्चों को कैसे हमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ट्रीट करना है। और बाकी तो स्पेशल एजुकेटर ही हैं जो शैक्षिक सपोर्ट समय समय पर देते रहते हैं।
1: क्या कहना चाहेंगी सभी से?
0: यही कहना चाहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि स्कूल बच्चे आएंगे जो आने लायक हैं तभी वो और आत्मनिर्भर बन के आगे किसी क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू।

डालते एक नजर आज के समाचारों पर। फिर से सचखंड व श्रीधाम एक्सप्रेस मूल मार्ग पर दौड़ेंगी। झांसी रेल मंडल के ललितपुर स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग के कार्य के पूरा होने के बाद मथुरा जंक्शन होकर परिवर्तित मार्ग से संचालित की जा रही ट्रेनों का संचालन अब पुनः अपने नियमित मार्ग पर शुरू कर दिया गया है। स्क्रीन बनी बड़ा सहारा, 60 लाख से ज्यादा ने बिहारी जी को निहारा। अपने आराध्या की एक झलक पाने के लिए जो वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर तक नहीं आ सके, उनके लिए लाइव स्ट्रीमिंग बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ठाकुर जी के दर्शन किए हैं। 5 लाख से ज्यादा संख्या उन श्रद्धालुओं की जिन्होंने मंदिर परिसर के बाहर चबूतरे पर खड़े होकर बड़ी स्क्रीन पर ही बिहारी जी के दर्शन की आरती में शामिल हुए। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का स्वरूप बदल गया है। अब श्रद्धालु मंदिर में शुरू हुई लाइव स्क्रीनिंग के जरिए अपने राधे के दर्शन कर रहे हैं। चबूतरे और बैरिकेटिंग ठाकुर जी का श्रृंगार, राजभोग और शनारती का सीधा प्रसारण भी देख रहे हैं। लाखों श्रद्धालु मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी पर घर बैठे अपने राधे के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। नई व्यवस्था का असर साफ दिखाई देने लगा है। जिन श्रद्धालुओं को पहले भीड़ के कारण गर्भगृह तक पहुंचने में परेशानी होती थी, वह बाहर लगी स्क्रीन के सामने खड़े होकर आराम से दर्शन कर रहे हैं। आरती के समय स्क्रीन के सामने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि भले ही वे बाहर खड़े हों, लेकिन लाइव प्रसारण कर उन्हें ऐसा ही अनुभव होता है वे मंदिर के भीतर मौजूद हैं। मंदिर प्रबंधन के अनुसार प्रतिदिन 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इस दौरान श्रृंगार दर्शन, राजभोग, शयन आरती सहित प्रमुख सेवाओं का सीधा प्रसारण होता है। इससे श्रद्धालु भी नियमित दर्शन कर पा रहे हैं, जो उम्र, स्वास्थ्य, दूरी व अन्य कारणों से वृंदावन नहीं जा सकते। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद मंदिर के आधिकारिक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग ऑनलाइन दर्शन कर चुके हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगातार फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में रहने वाले श्रद्धालु नियमित रूप से लाइव दर्शन से जुड़ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध मुनिया पूर्णिमा मेला अब महज 2 दिन बाद यानी 23 जुलाई से गोवर्धन में शुरू होने जा रहा है। गिरिराज महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा के लिए देश विदेश

से करोड़ों श्रद्धालु गोवर्धन पहुंचने वाले हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश ने मेले की तैयारियों की रफ्तार को बाधित कर दिया है। कई पार्किंग स्थलों में पानी भर गया है, व्यवस्थाएं पूरी प्रभावित हुई हैं। अब प्रशासन इस मुश्किल से निपटने में लगा हुआ है। प्रशासन ने मेले को भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए करीब 1 महीने पहले से अधिक तैयारियां शुरू कर दी थी। पार्किंग स्थल, वॉच टावर, पुलिस बूथ, टेंट हाउस, बैरिकेडिंग

0: पुलिस बूथ, टेंट हाउस, बैरिकेडिंग, विद्युत, प्रकाश व्यवस्था, अन्य जरूरी इंतजाम लगभग पूरे कर लिए गए थे, लेकिन मौसम की मार से अंतिम चरण की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है। प्रशासन ने दावा किया है कि स्थिति का जायजा अधिकारियों ने ले लिया है। प्रशासन का कहना है कि जल भराव वाले सभी पार्किंग स्थलों को पानी निकासी के लिए पंपिंग सिस्टम, ड्रेनेज की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। वॉच टावरों की सुरक्षा, बैरिकेडिंग को मजबूत किया जा रहा है। आस्था श्रद्धा भक्ति के महापर्व मुड़िया पूर्णिमा को लेकर गिरिराज नगर गोवर्धन में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस समय परीक्षार्थियों को कंकड़े चुभने से बचाने के लिए परिक्रमा मार्ग की कच्चे सुमिट्टी डालने का कार्य चल रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम, सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। मुनिया पूर्णिमा के अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गिरिराज महाराज के दर्शन और परिक्रमा के लिए गोवर्धन पहुंचते हैं। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा परिक्रमा मार्ग को सुगम, सुरक्षित बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब डालते एक नजर आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से, क्योंकि हर दिन अपने आप में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं समेटे रहता है। आज ही के दिन 1947 में संविधान सभा की बैठक में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अंगीकार किया गया। इसे डिजाइन करने का श्रेय स्वतंत्रता सेनानी पिंगले वेंकैया को जाता है। 1923 हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक कभी कभी मेरे दिल में डम डम डिगा जैसे सदाबहार गीतों को गाने वाले मुकेश का आज जन्म हुआ। वहीं 1933 में अमेरिकी एविएटर पिली पोस्ट ने 7 दिन 18 घंटे 39 मिनट में दुनिया का पहला अकेले विमान से चक्कर लगाने का कारनामा पूरा किया। 1992 में फ्रांस में फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट ने राजा फारूक प्रथम का तख्ता पलट कर दिया, जिससे देश में राजशाही की का समाप्त हो गई। आकाशवाणी ने अपने 90 वर्षों के सफर में नित नए आयाम स्थापित किए हैं। 2013 में प्रसार भारती ने न्यूज ऑन एयर ऐप लॉन्च किया, जिससे आकाशवाणी दूरदर्शन का कार्यक्रम सीधे लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचा। क्या करे क्या ना करे के अंतर्गत बातचीत करते हैं, इन विषयों के बारे में जो होते हैं आम बन जाते हैं खास, क्योंकि हमारी जागरूकता की कमी परेशानियां खड़ी कर देती है। बारिश शुरू हो चुकी है, बरसात के मौसम का आगमन हो चुका है, ऐसे में जगह जगह जल भराव की समस्या का हम सामना करते हैं। इस जल भराव की वजह से कई जगह मक्खी मच्छर भी पनपते हैं। अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें, पानी ना भरने दें और शासन प्रशासन की सहायता करें। सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति थी सुरभि शर्मा की, कार्यक्रम संयोजन था ओपी सिंह का। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 10 बजे लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और समीरा कोपीकर की आवाज़ों में। फिल्म है हिट स्टोरी 2, गीत लिखा है आर्क ने और संगीत भी इन्हीं का है।

अरिजीत सिंह और समीरा कोबेकर को अभी आपने सुना फिल्म हिट स्टोरी 2 में, और लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का ये अगला गीत उदित नारायण की आवाज़ में। बेवफा फिल्म से इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

उदित नारायण की आवाज़ में अभी आपने सुना बेवफा फिल्म का गीत, और लीजिए अब सुनिए निखिल डिसूजा को फिल्म बॉस में। गीत लिखा है मनोज यादव ने और संगीत दिया है चिरंतन भट्ट ने।

निखिल डिसूजा को अभी आपने सुना फिल्म बॉस में, और जब सुनिए फिल्म संगीत का ये अगला गीत। फिल्म है क्रिएचर, इस गीत को गाया है फरहाद सईद ने और तुलसी कुमार ने, गीत लिखा है मिथुन ने और संगीत भी इन्हीं का है।

फरहाद सईद और तुलसी कुमार को अभी आपने सुना फिल्म क्रिएचर में। और लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत के अंतर्गत सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ों में गाया दबंग 2 फिल्म का ये अगला गीत, जिसे लिखा है इरफान कमाल ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे एक विलन फिल्म का गीत। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। फिल्म संगीत में लीजिए आप सुनिए अलका याग्निक और विनोद राठौर को फिल्म बाजीगर में। इस गीत को लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज़ों में अभी आपने सुना बाजीगर फिल्म का गीत। और लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म आरजू में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म आरजू में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में गाया आशिकी 2 फिल्म का ये गीत। इसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे आशिकी टू फिल्म का गीत। और लीजिए आप सुनिए जावेद अली को फिल्म राज 3 में। इस गीत को लिखा है राशिद खान ने और संगीत भी इन्हीं का है।

जावेद अली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे राज 3 फिल्म का गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का ये अगला और अंतिम गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। फिल्म है धूम 3।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय सवेरे के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित।
1: हेलो हेलो हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी।
3: करमाणी महोदय, सादर सप्रेम, प्यार से नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में आपका।
3: जी हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ आरुणी दीक्षित साहब से। आप कैसे हैं?
2: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं प्रजापति जी?
3: आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद से हैं और हमारे मथुरा वृंदावन में इस वक्त आकाश में बादल छाए हुए हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, फुहारें पड़ रही है, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मौसम है।
2: जी मौसम सुहाना हो गया है, गर्मी से राहत मिल गई है।
3: जी जी बिल्कुल।
2: बताइए ऐसे सुंदर मौसम में क्या सुनना चाहेंगे?
3: मानवर 22 जुलाई का दिन महान गायक मुकेश चंद्र माथुर साहब की जन्म जयंती है।
2: जी।
3: और उनके जन्म जयंती के अवसर पर सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ, गीत है बरखा रानी जरा जम के बरसो।
2: सुनवाते हैं प्रजापति जी आपकी फरमाइश पर ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: हेलो सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत।
0: जी, ग्राम सनोतिया जिला गुना से मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ सर जी।
1: मांगेलाल जी, कैसे हैं, हाल चाल हैं आपके?
0: सर जी बढ़िया है, आपकी दुआ से हालचाल।
1: काफी दिनों के बाद फोन लग पाया आपका।
0: हाँ, एक दिन और लगा था सर जी, जब से आज ही लगाया।
1: व्यस्त थे खेती के कामों में?
0: हाँ, खेती के कामों में व्यस्त रहते हैं सर जी ज्यादा।
1: जी, क्या चल रहा है खेतों में?
0: अभी तो बारिश का इंतजार चल रहा है,
1: अभी बारिश
0: और
1: नहीं हुई है आपके यहाँ?
0: अभी बारिश वो तो मुझे मान लीजिए 15 रोज ही हो गए बारिश नहीं भाई,
1: अच्छा,
0: और फसल बिल्कुल पानी बगैर सूख रही है ये मान लो।
1: चलिए, उम्मीद है भविष्य में अच्छी बारिश हो जाए।
0: जी,
1: बताइए, आज आपकी क्या फरमाइश रहेगी?
0: फिल्म का नाम है पलकों की छांव में।
1: बोल क्या है गाने के,
0: अल्लाह मेगा दे।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सर जी, दो मित्रों को याद कर सकता हूँ,
1: बिल्कुल
0: दो मित्र हैं,
1: जी,
0: ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र महेंद्र सिंह चौधरी जी और शारदा प्रसाद प्रजापति जी मद्रास।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर जी।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: सर नमस्कार। टेकचंद
0: नमस्कार
1: अग्रवाल बोल रहा हूँ सर, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: टेकचंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: जी धन्यवाद सर जी, कैसे हैं आप?
0: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं
1: सर बहुत बढ़िया है।
0: और मौसम कैसा है?
1: मौसम सर अभी आ रहे घंटे पहले रिमझिम बारिश हो रही थी,
0: जी
1: लेकिन अभी बंद होकर के धूप निकल गई है।
0: अच्छा,
1: जी
0: ये तो मानसून का ऐसा ही क्रम रहता है,
1: जी जी
0: कभी बारिश, कभी हल्की फुहारें, कभी धूप निकल आती है।
1: हाँ, लेकिन सर मौसम को ठंडा कर दिया है, अब उतनी
0: जी
1: उमस नहीं हो रही है। जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: बताइए क्या सुनवाएं आपको, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर, अदालत फिल्म का सुनवा दीजिए। तुमसे दूर रहकर हमने ये जाना प्यार क्या है।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: शुक्रिया सर।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कैसे हैं सर?
0: एकदम अच्छे हैं। कौन साहब हैं फोन लाइन पर?
1: नियमित श्रोता चौधरी ब्रह्मी सिंह मंगला भूखला की सर, नागा से सर।
0: चौधरी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: क्या काम चल रहा है आपका?
1: जो है मेरी ड्यूटी है, अब आपसे आज बात करने का मौका भी मिल गया, फोन भी लग गया। मैं
0: चलिए, अच्छी
1: कई
0: बात है।
1: महीने 15-20 दिन बाद ही करता हूँ, लग जाता है सर मेरा।
0: सिंह साहब, फरमाइश क्या रहेगी आज के कार्यक्रम में?
1: झूला तो पड़ गए मुआ की दारू पे, ये
0: ब्रजभूमि फिल्म से
1: धन्यवाद
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर। मौसम की मांग भी यही है आज तो।
0: जी, आनंद लीजिए मौसम का और गीत का भी।
1: धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी। नमस्ते सर जी,
0: नमस्ते
1: छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर। जी
0: सतीश जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल सर जी, और बहुत दिनों बाद हमारा कॉल लगा सर जी, बहुत अच्छा लग रहा हमको आज।
0: हमें भी अच्छा लग रहा है सतीश जी से हमारी बात हो रही है, और काफी दिनों के बाद बात हो रही है।
1: जी सर, ऐसा लग रहा मेरे को सर कि 3 महीने से ज्यादा हो गए होंगे सर, मेरा आकाशवाणी मथुरा में कॉल नहीं लगा।
0: चलिए, खुशी की बात है आज फोन लगा है। परिवार
1: जी
0: में कैसे हैं सब?
1: सब बढ़िया है सर जी, और बस आपके कार्यक्रम से जुड़ते रहते हैं, और आकाशवाणी मथुरा में बहुत ही अच्छा लगता है, कार्यक्रम भी अच्छे लगते हैं, और जिसमें आपका प्रस्तुतिकरण सर बहुत ही अच्छा लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। और मौसम कैसा है आपके यहाँ?
1: सर हमारे यहाँ तो मौसम सर अभी तो ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है 1-2 घंटे में
0: बताइए, आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: सर जी। आप मुझे सुनो दीजिए सर जी, फिल्म का नाम है करण अर्जुन, और गीत के बोल रहेंगे सर जी, ये बंधन तो प्यार का बंधन है।
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी थैंक यू सर।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम लेके आए आपके बीच देवराज कृष्ण दीक्षित। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरी पसंद। कार्यक्रम मेरी पसंद का

ये पहला गीत लेते हैं फिल्म नमक हलाल से। आवाज़ इस गीत में किशोर कुमार और आशा भोसले की, शब्द अनजान के संगीत पप्पी लहरी का।

जी हाँ, इस गीत को आवाज दे रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले, फिल्म नमक हलाल के लिए। गीत अनजान का, संगीत था बप्पी लहरी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी पसंद, और क्योंकि मौसम कुछ खुशनुमा सा है, वर्षा ऋतु में जल फुहार अमृत रस से तन भिगा रही, जल से थल नव में घन से हर्षा कर्मन मग मिला रही, प्रगति रचित घन युक्त घटा आरोहित ऊंचे पाषाणी पर, नये निभिराम दृश्यता भड़ी सम्मोहित मन आभासी कर। ऐसा है हृदय और ऐसा है इसका भाव कि मौसम जब अपने एक नए अंदाज में होता है और जब गर्मी से निजात देती हैं वर्षा की चंद बूंदें, तो मन को शीतलता मिलती है और इसी शीतलता का अनुभव, इसी आनंद का अनुभव करते हैं इस अगले गीत के साथ। इस गीत को लिया हमने फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से, आवाज़ें अनवर और सुलक्षणा पंडित की, गीत गुलजार का, संगीत खयाम का।

0: इस गीत को लिया फिल्म थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म से ये गीत आवाज़ दे रहे थे। गीत को अनवर सुलक्षणा पंडित, गीत गुलजार का, संयंगत और संगीत था खय्याम का। सच है मौसम में मादकता रहती, रुचिर प्रकृति रूप सी बनी, मन में उमंग का भाव भरे, अंबर में बदली बहुरंग घनी। जी हाँ, ऐसा ही आनंद है, ऐसा ही रस है मौसम का। और आइए ले आनंद इस गीत का जिसे लिया फिल्म हम आपके हैं कौन से। आवाज़ें लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की, गीत रविंद्र रावल का, संगीत राम लक्ष्मण का।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

मौसम के इस जादू को बिखेर रहे थे लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम अपने आवाज़ के, अपने स्वर के जादू से। गीत रविंद्र रावल का, संगीत राम लक्ष्मण का, फिल्म हम आपके हैं कौन। जी हाँ, इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत मेरी पसंद। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी पसंद। और अगला गीत इस कार्यक्रम का लेते हैं जिसे आवाज दी उदित नारायण और दीपा नारायण ने फिल्म दिल दीवाना के लिए।

अभी आप सुन रहे थे दीपा नारायण उदित नारायण को फिल्म दिल दीवाना में, और लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम में सोनू निगम को फिल्म छुप छुप के में। इस फिल्म से ये गीत कार्यक्रम मेरी पसंद के क्रम में FM 102.2 MHz पर।

सोनू निगम को अभी आपने सुना फिल्म चुप चुप के में, गीत समीर का, संगीत हिमेश रेशमिया का था, और इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है मेरी पसंद FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत बात और SMS। श्रोता सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा, करेंगे व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94-122-25-575। जी हाँ, 9-412-222-5575। शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम गीत बात और SMS।

करें व्हाट्सएप, सुने अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। हमसे जुड़े हैं सुधी श्रोता कार्यक्रम के माध्यम से, आप हैं संदेश के साथ। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल निवृत्ति क्षीर सागर संजय कुमार चौहान का ये मैसेज, और आप मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला सुरलकर ओम कुमार और विद्या सुरलकर का मैसेज मिला, और आप जुड़े कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी शकील अंसारी हिना अंसारी आफ्ताब गुलस्ता रानी नंदिनी और अंजलि का ये मैसेज मिला। मथुरा की सुधी श्रोता आप भी जुड़े, पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया आदर्श सार्थक अलौकिक और चंसौलिया। एक और संदेश के साथ में पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत अरुणा भगत चेतन और सुलोचना जुड़े हैं कार्यक्रम से। टेर पाटन गुजरात से हैं धीरज बी रवारी, और आप जुड़े सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से गुनी राम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज और सूरज राजपूत का ये मैसेज। अमली डी कवर्धा छत्तीसगढ़ से संतोष राजपूत हेमप्रभा पूर्वी गौरव राजपूत भी जुड़े, और एक मैसेज के साथ में गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा जुड़े हैं। गांव पंचायत कालीगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से हैं श्री सुधाकर राजे जाधव प्रशांत राजे जाधव देशमुख सवर्द देशमुख सानवी और हर्षता देशमुखा ये संदेश मिला। एक और मैसेज में आप हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद हाशमी नाज सलमा नाज असद अरहाम समस्त हाशमी परिवार का मैसेज। सब्जी मंडी झज्जर से जुड़ चुके हैं बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत भाटिया मंजू मयंक भाटिया, और आपका मैसेज भी मिला। बांडी वाला फजिल का पंजाब से क्रियांश पगड़िया योगेश पगड़िया ओम और बेबी गर्मा बगड़िया और ये सभी परिवार के सदस्य रजत। एवर ग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन वीना मस्किन आशीष चैतन्य मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना रचिता केशु और रिधान खुराना। आप जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से गजानन येले नवदीप विश्वदीप और अशोक येले शेरी बडनेर अकोला से हैं अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर मैसेज के साथ में है। जिला नांदेड़ कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर विजया लक्ष्मी सावनकर का भी मैसेज मिला। गांव फरांसी जिला हिसार से है राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी।

मैचेस के साथ में है सुधीर श्रोता धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से, चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत और कृष्टि पटवा, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, अश्विनी शाह, मंगलाबेन, ये सभी पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश के सुधीर श्रोता हैं। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया जुड़ चुके हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष का संदेश मिला। कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम जुड़े। सरोज चौक अमरावती से कमरोला ठेकेदार नसीम बेगम भी जुड़ चुके हैं और आप भी जुड़े। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक और कुमारी पूजा खटक एक संदेश के साथ में। कोका भिलाई से उत्तम कुमार जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल। दमदा गांव सुखरी कला से है अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, आदित्य और अंजलि। एक मैसेज में आप भी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू। मैसेज के साथ रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति, मेघा, अनुराग मोहन, जिला किशनगंज बिहार के सुधीर श्रोता। चंडीगढ़ से शेफाली शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा का भी संदेश मिल चुका है और आप भी जुड़ चुके हैं। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे, बेबी किट्टू। और अगले संदेश के साथ में है कलन और हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। आइए सुनते हैं सुधीर श्रोताओं की पसंद पर फिल्म का ये गीत। इस गीत को आवाज दे रहे हैं मोहम्मद रफी, फिल्म काला बाजार से ये गीत, गीत शैलेंद्र का, संगीत सचिन देव वर्मन का।

जी हाँ, सुधी श्रोता जुड़े हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आपने संदेश भेजा, आप जुड़े कार्यक्रम में अपने संदेश के साथ में। लेते हैं कुछ और सुधी श्रोताओं के संदेश। बिहार रेडियो लिसनर क्लब से सुधा शर्मा, काजल मीरा और अनामिका शर्मा जुड़े कार्यक्रम में। नसीमुल इस्लाम कुनौरी और दानिश कुनौरी, कबीर नगर लोनी से ये मैसेज भेजा हम तक। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव और लोखंडे, कल्पताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल रक्षिता और पूरा लोखंडे परिवार जुड़ा कार्यक्रम में। आप भी जुड़े। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया, साईराज विशाल सपकाल एक मैसेज के साथ में। कुमार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा अभिषेक, सार्थक प्रथमेश, संतोष और पांडु रंग कुमार परिवार जुड़ा पूरा। आप भी शनि चौक खंडवा से हैं उमा राज, कुलदीप, जगदीश और प्रभा रानी राज अगले संदेश के साथ में। काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से वाट मास्टर विठ्ठल सुरेश, सुषमा परिधि मायरा का भी संदेश मिला। और आप भी जुड़े। गंज डोडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी भी कार्यक्रम में ले रहे हैं आनंद। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी भी संदेश भेजते हैं। लक्ष्मणपुरा छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति और कुंती साहू का संदेश मिला। कोयल बोली, जी हाँ, ये पूरे के पूरे संदेश के साथ में है। नैना सत्यनारायण, कपिल, शोभा फुंदी बाई बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के सुधी श्रोता। हर्षता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी का ये संदेश। और एक संदेश के साथ में आप हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव, डाबकी रोड अकोला से ये मैसेज हम तक। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, रंजन सिंह ओबेराय भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में।

संदेश के साथ में है सुधीर श्रोता अपने शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। मैसेज में सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया राहुल और विनीत कुमार वर्मा। ये अगले मोहाली पंजाब से बबन मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का संदेश मिला। एक और संदेश के साथ में आप हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर पीएम थांदी, बेबी भूमिका वाणी, ये सभी टोरोवाल नवा शहर पंजाब के सुधीर श्रोता हैं। आप भी जुड़े। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु का संदेश मिला। एक संदेश के साथ में बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे सुधीर श्रोता विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक बैंक मूणत, चेतन नाहटा का संदेश मिला। आप भी जुड़े। परी महल कासगंज से आबाद खान, नवीन खान, आरफा

खान, एमएल असलम सैफी, इल्मा खान और मास्टर जाहिद अली। संदेश के साथ में आप रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वडलकर, वीणा वडलकर और विविधा वडलकर का संदेश है। एमएलबी रोड ग्वालियर से है सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव और एसके पप्पी। गणेशपुर गंडोवारा से है एम फारूक शेख, शेम, शमा परवीन, सायमा फारूक, सरफराज, गुलफराज और बेबी मुस्कान। अगले संदेश के साथ में सुनील कोंडे निबोरा महाराष्ट्र से ये सुदीश होता है। मैसेज के साथ में मुताला से है विजय सुरलकर। एक संदेश के साथ में फुटानी चौक नरहन एस्टेट से ललन मिश्रा, नूतन, अमन और बेबी आराध्या लल्लू पंडित का संदेश मिल चुका है। विठल यादव, अनुसुईया यादव, पवन राजे ये नागपुर महाराष्ट्र से और छत्रपति संभाजीनगर से मंगेश इंगले, संध्या और स्वराज इंगले। अगले संदेश के साथ में आप टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमन और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का संदेश मिला। लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय, साई किरण ये सब करीम नगर के सुदीश होता है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से है मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, नितिन, पलक, करण, निहारिका का संदेश। कृष्णा कॉलोनी हंसी से सुभाष योगी, सुशील, डब्बू बब्बू, राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, राजस भाई। चंडीगढ़ से शैफाली शैफी और संदेश के साथ में अनूप सिंह थनाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानुप्रिया समस्त परिवार है इनका। गायकवाड़ दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा बागमण, शशांक बागमणे ये सभी संभाजी चौक सेंट्रल न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र के सुदीश होता। और मैसेज के साथ में उमा शर्मा, नितिन, सचिन, राधिका, धौली प्याऊ मथुरा से मैसेज भेजते हैं। सरदना मेरठ से आदि जैन, अंश भव्य जैन। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक शर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना। निबोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख, शरद देशमुख, सुनील कोंडे। नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर। सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण श्रीनिका और श्री निजा जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ के सुदीश होता। बरवट बगाल बुलढाणा से है सुदीश होता, नारायण हागे, कमल, दिव्या और जया हागे। बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारायणंजू, मोहित, लकी, तानिया का मैसेज। और आप भी जुड़े कार्यक्रम में। निम्नवा जिला जिन हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र दुर्गी, रवीत करमजीत मैसेज के साथ में। मामलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, विजय ताइड़े। जिनागा विदर्भ से वसंत राव भोजने और पीएस नवानकर। आइए सुने सुदी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म अंदाज से ये गीत। आवाज इस गीत में राजेश खन्ना, किशोर कुमार की, गीत हजरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का, फिल्म अंदाज से।

और लेते हैं सुधी श्रोताओं के कुछ और संदेश कार्यक्रम में, गीत बात और एसएमएस में।

संदेश के साथ में है सुधीर श्रोता कार्यक्रम में। आप जुड़े नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती राजेंद्र चड्ढा जुड़े हैं कार्यक्रम में और आप भी जुड़े। आपने नाम नहीं लिखा है और प्रणाम लिखा है। एक और संदेश के साथ में है कर्मा चौक लोहारी डी से भाई यशवंत साहू रमेशिया हर्ष और अंश साहू का संदेश मिला। आप अगले संदेश के साथ जलालाबाद से हैं। सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का संदेश अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। रिजवान खान आयशा सबिया अनस और रेहान खान अगले संदेश के साथ जिगांव विदर्भ से वसंत राव भोजने अमोल तायड़े और मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े और विजया तायड़े भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। आपने संदेश भेजा संदेश के साथ में धरोरी विटाली से तहसील नांदुरा से जिला बुलडाणा से हैं भगवान पाटिल मंगेश और सचिन पाटिल। वैष्णव कॉलोनी सराफत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर अलकमा खत्री अलतमश खत्री और रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री जुड़े हैं अगले संदेश के साथ में। जिला दुर्ग भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गर्मा शर्मा हर्ष आहूजा ये सभी जुड़े हैं संदेश के साथ में हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति और ओजस्वी यादव मोहम्मद कलीम भुवन प्रकाश गौतम डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम शबनम अनवार नजमा बेगम नाज भाभी का संदेश मिला।

मौलाना सल्तना मेरठ से है, अनिल जैन, संयम जैन मुस्काम और मास्टर जीवीएम जैन का संदेश मिला है। आप भी जुड़े खेल बाजार पानीपत से कार्यक्रम में नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडो कोयल, आप नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल और डुग्गू भाविक सिक्का का ये मैसेज है। नाज पैलेस अजमेर से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा नाज और हाशमी परिवार। बेरेडी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक करमकर, प्राची और तनिया करमकर का संदेश मिला। इसी संदेश के साथ में है दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। मगनपुरा झारखंड से अब्बास आलम, अमजद, लाडली, बेबी निशा समस्त इनके मित्रगण। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, ये अब्बासी परिवार संदेश के साथ में है। सुधीर श्रोता, आपने भी मैसेज भेजा कार्यक्रम में। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साईं गायकवाड़। सतीश अनेजा, विमला अनेजा चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अभी आपने सुनी इनकी फरमाइश और सोंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन का संदेश। आई सुने इनकी पसंद पर फिल्म कटी पतंग से ये गीत, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देव वर्मन का, आवाज दे रहे हैं गीत को मुकेश।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कटी पतंग में मुकेश को, आनंद बख्शी का गीत, संगीत राहुल देव वर्मन का। इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज के कलाकार हैं गिरीश कुमार। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये पहली प्रस्तुति।

जय जय जय जगतारण मैया, बैठी बिकट पहाड़न में। अभी आपने सुना ये लोकगीत गिरीश कुमार के स्वर में, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं गिरीश कुमार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते।
2: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
3: दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
3: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
2: पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
4: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
5: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
6: आराम से मैडम।
5: क्या
6: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
7: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
8: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। हर बिजनेस

भोले बाबा गौरा तेरे कैसे मन बसिया। इस ब्रज लोकगीत के साथ आप थे गिरीश कुमार, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं ब्रज लोकगीत का कार्यक्रम। कलाकार आज के गिरीश कुमार

अभी आप सुन रहे थे गिरीश कुमार से कुछ ब्रज लोकगीत। इसी के साथ कार्यक्रम ब्रज लोकगीत का अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्धि, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में।

अब से थोड़ी ही देर में मैंने सुनेगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक, जिसमें आज चर्चा का विषय है एनीमिया कारण बचाव और उपचार। साथ ही चर्चा रहेगी महिलाओं के कानूनी अधिकार और सहायता सेवाएं। इस विषय पर ये चर्चा लेकर आ रही है आपके बीच मीनू अग्रवाल इस कार्यक्रम में। साथ ही सुनेंगे आप खड़क सिंह छोकर से कानूनी वार्ताक्रम में ये वार्ता। आज का विषय कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से बचाव के कानून। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में फिल्म संगीत का आनंद एक बार फिर से लेंगे आप दिन में 1:45 पर। दिन में 2 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और हिंदी समाचार दिन में 2:15 पर। NCERT द्वारा आयोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर, जिसमें आज की बात रहेगी पुस्तकों से मित्रता कैसे करें, प्राणी हिंसा से दूर रहें, इस विषय पर आज की बात। साथ ही लेंगे आप आनंद कार्यक्रम में फिल्म संगीत का।

किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। चर्चा का विषय बागवानी फसलों की बरसात में देखभाल और खरीफ फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन विषय पर आज की ये चर्चा लेकर आ रही है कार्यक्रम में मृणाली दीक्षित। साथ ही आप सुनेंगे डॉक्टर रुचि तिवारी से वार्ता, दुधारू पशु से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर लेंगे आनंद कार्यक्रम में आप ब्रज लोकगीतों का।

संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 7:05 पर सुना जा सकेगा कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे दुर्गा प्रसाद पोद्दार से ब्रज साहित्य क्रम में काव्य पाठ। संध्या 7:18 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार शाम सुहानी। जी हाँ, आप सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे, करेंगे व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9412225575। सुनेंगे अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा शाम सुहानी में संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत का आनंद एक बार फिर से लेंगे आप रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने क्रम में।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। चर्चा का विषय है, जी हाँ, ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा रात्रि 9:30 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो ये था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम लेके आ रही है आपके बीच मीनू अग्रवाल।

मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। FM 102.2 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मीनू अग्रवाल।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम समय समय पर आपको सभी तरह की जानकारी देते रहते हैं, चाहे वो दिवस हो या कोई भी योजना या अधिकार। ऐसे ही बात करें महिलाओं के कानूनी अधिकारों की, जो महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और समानता के लिए बहुत सी कानून और अधिकार कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। इनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव या अपराध से बचाना है। बात करें समानता के अधिकार की, तो भारतीय संविधान के अनुसार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के अंतर्गत विवाहित या लिव इन में रहने वाली महिला को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक प्रताड़ना के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत महिलाओं को सुरक्षित वातावरण का अधिकार प्राप्त है। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के और प्रसव के दौरान सवेतन अवकाश का अधिकार है। इसी प्रकार उनको पैतृक संपत्ति में बेटों के समानी अधिकार प्राप्त हैं। अब बात आती है महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं, जिसमें महिला हेल्पलाइन, संकट में फंसी महिलाओं के लिए तत्काल सहायता हेल्पलाइन 181 उपलब्ध है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और उनके जन्म अनुपात को बेहतर बनाने के लिए ये प्रमुख अभियान है। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य की शिक्षा और विवाह के लिए एक छोटी सी बचत योजना, जिसमें शानदार ब्याज और कर छूट मिलती है। मुफ्त कानूनी सहायता साइबर अपराध से सुरक्षा, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, नारी शक्ति वंदन आदि उपलब्ध हैं। तो ये कुछ योजनाएं और सेवाएं हैं जिससे महिलाएं लाभ ले सकती हैं। और इन्हीं सभी बातों को देखते हुए तथा जानते हुए समझते हुए हम आपको सुनवाते हैं एक कानूनी वार्ता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से बचाव के कानून। जानकारी दे रहे हैं खड़क सिंह छोकर।
1: प्राचीन काल की मध्यवर्गीय व उससे नीचे की सामाजिक संरचना का अध्ययन करें तो आभास होता है कि अधिकांशतः पुरुष वर्ग घर परिवार चलाने के लिए काम करते थे और महिलाएं अपनी घरेलू व्यवस्थाएं देखती चली आ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे देश की प्रगति की ओर बढ़ा और विकास की ओर अग्रसर हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ, संसाधन बढ़ते गए, सरकारों ने प्रयास किए, जागरूकता से लोगों की सोच में बदलाव आया, तो समाज में ये धारणा भी बनी कि बेटा या बेटी में अथवा महिला या पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा सभी के लिए समान रूप से दी जाए, सभी विभागों में, सभी स्थानों पर, चाहे सार्वजनिक यानी कि सरकारी हो या निजी, सभी को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो इन प्रयासों का परिणाम भी देखने को सामने आए हैं। हमारी बेटियां शिक्षा के स्तर पर शिखर तक पहुंची नजर आई हैं और प्रतियोगिता के युग में अच्छे स्तर पर अच्छा स्थान प्राप्त करने लगी हैं। ये संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और आज इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि छोटी छोटी नौकरियों से लेकर सेना और वायुसेना में भी अच्छे स्तर के कमीशन में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति देश ही नहीं विश्व भर के लिए प्रेरणादायक है। हमारे देश में मातृशक्ति को बहुत ऊंचा और सम्मान का स्थान दिया गया है। जैसा कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यं।

रमते रमनते तत्र देवता। देश की नदियों के नाम, देवियों के नाम, देश की वीरांगनाएं इसका साक्षात उदाहरण है। इसके साथ ही साथ कोई भी सार्वजनिक विभाग ऐसा नहीं है जहां महिलाएं कामकाज नहीं कर रही हों, और कोई भी प्राइवेट सेक्टर यानी एक निजी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाएं काम नहीं कर रही हों। महिला पुरुष साथ साथ काम कर रहे हैं तथा देश की प्रगति और विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो संस्कृति के साथ साथ चाहे या अनचाहे विकृति भी जन्म ले लेती है, और उस विकृति के दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं जिनका निवारण करना भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 लाया गया है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से बचाव के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना है। इस अधिनियम का प्रभाव सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में, यानी के सभी जगह कार्यरत सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी आयु और रोजगार की स्थिति कैसी भी हो। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले स्थलों पर आंतरिक समितियां गठित करने का प्रावधान रखा गया है, जिसको इस अधिनियम 2013 की धारा 4 में परिभाषित किया गया है, तथा इसी तरह धारा 5 में स्थानीय समिति गठित करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा जारी सो बॉक्स पोर्टल भी महिलाओं को ऑनलाइन शिकायत करने के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करता है। यदि हम किसी समुदाय या देश का विकास चाहते हैं तो महिला सशक्तिकरण अति महत्वपूर्ण है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत सारी पहल की जा रही है जिसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उच्च शिक्षित होने के साथ साथ खेल, थिएटर, नाटक, मॉडल आदि अन्य क्षेत्रों में महिलाएं भाग ले रही हैं तथा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करती चली आ रही हैं। बिना किसी भेदभाव के महिलाओं को समान अवसर मिले और उन्हें कार्यस्थल पर एक सुरक्षित वातावरण का अनुभव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 लाया गया। इस अधिनियम के आने से एक प्रश्न उठता है कि इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई तथा इस अधिनियम के आने से पहले इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था थी। तो जानकारी में आता है कि 1990 के दशक में राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला के साथ कुछ पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से घृणित कार्य को अंजाम दिया गया था, तो उसमें कानूनी कार्रवाई के दौरान अनेक तरह की बाधाओं, धमकियों और अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ा था। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य दिशा निर्देश सन 1997 में लाया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें उच्चतम न्यायालय में कहा गया कि इस घटना ने उन खतरों को उजागर किया है जिनका कामकाजी महिलाओं को सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप होने वाली अनैतिकता और सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना है। उस समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई घरेलू कानून नहीं है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को कवर करता हो, लेकिन समानता की गारंटी के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 में मानवीय गरिमा के साथ काम करने का अधिकार और लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मापदंड तैयार करना महत्वपूर्ण है। इसलिए अनुच्छेद 253 के आधार पर, जो कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बनाने में सक्षम बनाता है, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है जो राष्ट्रों से सभी प्रकार

के भेदभाव समाप्त करने का आह्वान करता है तथा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव और उनके समान अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए विशाखा दिशा निर्देशों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। इन दिशा निर्देशों से पहले अपराधियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के माध्यम से दंडित किया जाता रहा है, जिनके स्थान पर अब नई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 से लेकर 79 तक रखी गई है। विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं में लैंगिक उत्पीड़न को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसीलिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का मामला सामना करने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम से पहले कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को विशाखा दिशा निर्देशों के माध्यम से संबोधित किया जाता है। इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए अब हमारे पास कानून है, विशेषकर इसके लिए जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। व्यक्ति विशेष के साथ साथ संगठनों को भी इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा दिशा निर्देशों के माध्यम से परिभाषित किया है कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किसे माना जा सकता है। इसके अनुसार शारीरिक संपर्क और प्रगति, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक रंगीनी टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना या लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक अथवा मौखिक आचरण करना है। इससे स्पष्ट होता है कि जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी महिला को छूता है, गले लगाता है, चुटकी लेता है, उसके शरीर पर दबाव बनाता है या ऐसा कोई भी शारीरिक संपर्क जो अनचाहा है उसको अवांछनीय शारीरिक संपर्क और प्रगति माना जा सकता है। इसी तरह जब किसी आधिकारिक पद पर कोई व्यक्ति कुछ लाभों के लिए जैसे कि पदोन्नति, वेतन वृद्धि, नौकरी की गारंटी या अन्य अन्य फायदों के बदले लैंगिक संबंधों की मांग या अनुरोध करता है, या कोई व्यक्ति आपत्तिजनक और उत्तेजक टिप्पणियां करता है या चुटकुले या अश्लील व्यंग करता है, लैंगिक प्रकृति की बयानबाजी करता है या अन्य चिढ़ाने वाली रंगीनी टिप्पणियां करता है, तो वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। आगे ये भी है कि अश्लील चित्र, अश्लील फिल्म या वीडियो, पोस्टर, अश्लील सामग्री का प्रदर्शन करना या व्हाट्सएप, SMS, ईमेल के माध्यम से संदेश देना है, तो वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। जहां तक कार्यस्थल की बात है तो ऐसा कोई भी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित हो और उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन, पूर्णतः या सारतः उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पोषित की जाती है, ये सभी कार्यस्थल माने जाएंगे। इसी तरह कोई प्राइवेट सेक्टर, संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, संस्था, सोसाइटी, न्यास, गैर सरकारी, ये संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी शामिल है। इसी तरह अस्पताल या परिचर्चा गृह तथा प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद का क्षेत्र, क्रीड़ा का स्थान, कोई निवास या अन्य स्थान भी हो सकते हैं। किसी कार्यस्थल के संबंध में असंगठित क्षेत्र से ऐसा कोई उद्यम समझा जाता है जो नियोजित कर्मकारों के स्वामित्व में हो और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है, और जहां उद्यमी कर्मकारों को नियोजित किया जाता है वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या 10 से कम न हो। इस तरह के मामलों में कोई पीड़ित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का बाद घटना की तारीख से 3 महीने के अंदर लिखित में

0: आंतरिक समिति को अथवा स्थानीय समिति को प्रस्तुत कर सकेंगी। विशेष व समुचित परिस्थितियों में समिति 3 मास की अवधि को विस्तारित भी कर सकती हैं। यदि यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं जिसके कारण महिला नियत अवधि के अंदर बात प्रस्तुत न कर सकी हो, इसका विवरण महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 की धारा 9 में परिभाषित किया गया है। इस तरह से इन अपराधों से बचाव के संबंध में प्रचार प्रसार व अन्य माध्यमों से जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता रहती है।
1: अभी आपने कानूनी वार्ता में खड़क सिंह छोकर से कितनी अच्छी जानकारी ली कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से कैसे और क्या बचाव हो सकता है। और इस समय आप सुन रही हैं FM 102.2 MHz पर अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक। दिल की बातें बता जाती हैं आंखें, धड़कनों को जगा जाती हैं आंखें, दिल पर चलता नहीं जादू चेहरे का कभी, दिल को तो दीवाना बना जाती हैं ये झील सी तुम्हारी आंखें।

कहते हैं सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीद का भी होना जरूरी है। जी, उम्मीद अपने आप को खुश रखने की और सबसे बड़ी उम्मीद अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की। कहते हैं ना, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह क्यों हों? वैसे भी आज के समय में कब कौन सी बीमारी हो जाए ये पता ही नहीं चलता। क्या करें, सभी की जीवन शैली और खान पान का तरीका जो बिगड़ा हुआ है। कब कौन सी कमी हमारे शरीर में हो जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे ही आज हम बात करेंगे एनीमिया की, यानी खून की कमी। जी, एनीमिया एक बहुत ही सामान्य रक्त विकार है जिसमें आपके रक्त में लाल कोशिकाओं की संख्या सामान्य से कम हो जाती है, जिससे अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं जैसे अधिक थकान होना, कमजोरी महसूस होना, त्वचा का पीला पड़ जाना, हाथ पैर ठंडे होना, सांस लेने में परेशानी तथा चक्कर आना आदि हो सकते हैं। इसके मुख्य कारण हैं शरीर में आयरन, विटामिन B12 या फॉलेट की कमी के कारण, RBC का निर्माण कम हो जाना या अन्य कारण से शरीर में रक्त का बहना, रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा में नष्ट हो जाना या अनुवांशिक कारण होना। अब बात आती है इसके उपचार और बचाव की। तो आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, दालें, अनार और खट्टे फल आदि शामिल करने होंगे। डॉक्टर की सलाह से आयरन, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आपको इनमें से कुछ भी महसूस हो तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं तथा अपने खान पान का उचित ख्याल रखें। कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो बस इस धन को पूरी तरह से सुरक्षित रहें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो अब सुन लेते हैं एक और गीत कुछ इस तरह। पल की याद बन जाओ तुम, हर पल की याद बन जाओ तुम, हर धड़कन की श्वास बन जाओ तुम। ये सफर आसानी से कट जाएगा अगर जिंदगी भर साथ निभाओ तुम।

मैनू वैसे तो जाने का समय हो रहा है, लेकिन एक दो टिप्स आपको मैं बताना चाहूंगी। यदि आप कोई भी भरवा सब्जी बनाने जा रही हो तो मसाले में थोड़ी सी भुनी मूंगफली को पीस कर डाल दें, सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा। पिसे हुए मसालों को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ साबुत नमक की डेली ज़रूर रख दें, इससे मसाले आपके ख़राब नहीं होंगे। तो ये टिप्स आप ज़रूर आज़माएं। तो हमारी घड़ी ने इशारा कर दिया है, जाने का समय हो गया है। जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि माना कि ज़िंदगी की राहें आसान नहीं हैं, मगर मुस्कुराकर चलने में भी कोई नुकसान नहीं है। इसी के साथ मीनू अग्रवाल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मैंने सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम वनिता लोक, कार्यक्रम लेके आई थी आपके बीच मीनू अग्रवाल FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये गीत फिल्म गोल से। आवाज दे रहे हैं गीत को ऋचा शर्मा।
1: शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो,
2: अरे बिल्लो बोला बिल्लो,
1: जो भी देखे यही पूछे है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

गीत जावेद अख्तर का, संगीत प्रीतम का, और फिल्म गुल से इस गीत को आवाज़ दे रहे थे ऋचा शर्मा और आनंद राज आनंद। और आई सुने कार्यक्रम में कुमार सानू के स्वर में ही अगला गीत फिल्म उफ ये मोहब्बत से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म यंगस्तान में अरिजीत सिंह को। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और हिंदी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी

0: किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से

0: सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और

0: आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं। इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
1: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुरमुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
2: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
1: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फूं फूं जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
1: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
2: जी,
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
2: जी,
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
2: जी
1: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है।
2: जी,
1: जिसे मोरुंग कहते हैं।
2: जी,
1: ये मोरुंग होता क्या है?
2: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
1: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
2: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
2: जी,
1: यहाँ आकर लोग असली

0: नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
1: जी।
0: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
1: जी।
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
1: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहाँ की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा,
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
3: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
4: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों

0: से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास, तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
2: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
2: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
0: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
2: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है, गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
2: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
0: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
1: सुंदरिया, तुम? मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
1: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
1: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
1: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
0: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
1: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
0: हीरा सिंह ने गाय को फुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं,

0: पर तुमसे यहां मुफ्त में काम करवा कर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
1: जी सेठ जी।
0: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
1: धन्यवाद सेठ जी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
3: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
4: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
3: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
4: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
3: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
4: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
5: यहीं कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान, उसके बाद हाँ वो रही।
4: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
3: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
4: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
3: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
5: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है, और ले प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
4: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
3: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
4: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
5: नमस्ते मैडम।
6: नमस्ते बेटा।
5: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ।

0: क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
1: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
0: ओह।
1: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
0: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
1: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
0: नहीं,
1: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
0: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
1: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2,000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3,000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
0: अच्छा,
1: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
0: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1,500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
1: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
0: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1,500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
1: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
2: हाँ जी बताइए।
1: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
2: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
3: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
4: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
1: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
2: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापस चलो।
0: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
1: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
0: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
1: हैं? अब अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है, महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
0: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वो वाला कितने का है?
1: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
0: क्या?
1: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
0: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
1: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
0: मुझे यही चाहिए।
1: देखो बेटा,

0: मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो। शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
1: नहीं।
0: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
1: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
0: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
1: यूं ही?
0: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत।
1: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
0: अच्छा, समझी। स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे। अच्छी बात है, तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो। खुश?
1: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
0: पर बेटा ये तो
1: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
0: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
1: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए।
0: अब
1: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त तू, यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
1: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
0: अरे बेटा, ये
1: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
0: अरे नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
1: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
0: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
1: आजा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज

0: करता है।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूँ अजीत, नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
0: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
0: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना
3: जाता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारी दूसरी पहली सभा यहीं संपन्न होती है। हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। युवा साथियों, आज का युग मोबाइल का युग है, या कहें कि सोशल मीडिया का युग है। इस युग में लोगों ने पढ़न पाठन अपना सब डिजिटल कर लिया है। अधिकतर लोग अपनी पढ़ाई लिखाई, नोट्स सभी ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर मोबाइल या लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है किताबों से मित्रता करना। इसका अर्थ है अपने जीवन में इसको एक अभिन्न अंग बना लेना। किताबें न केवल ज्ञान का भंडार हैं, बल्कि वे आपकी सबसे अच्छी मार्गदर्शक, सलाहकार और साथी भी हैं। एक बार दोस्ती होने पर ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ती।

और हमेशा आपका मार्गदर्शन करती हैं। पुस्तकें पढ़ने से बहुत सारे लाभ हैं, जैसे ज्ञान का विस्तार। किताबें आपको दुनिया भर की जानकारी, नए विचार और विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराती हैं। यह आपको सही और गलत के बीच का अंतर समझाती हैं और आपके व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाती हैं। अच्छी किताबें पढ़ने से मानसिक शांति मिलती है और आपका तनाव कम होता है। नियमित पढ़ने की आदत से आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और कल्पनाशीलता बढ़ती है। कोशिश करें कि आप किताबों से दोस्ती करें, रुचि के अनुसार शुरुआत करें, जैसे अपनी पसंद के उपन्यास, प्रेरणादायक किताबें, विज्ञान या इतिहास के अनुसार ही अपनी किताबें चुनें। दिन में कम से कम 15-20 मिनट पढ़ने का समय तय करें, जैसे सोने से पहले या सुबह के समय। अपने आसपास के पुस्तकालयों की सदस्यता लें या डिजिटल किताबें, ई बुक और ऑडियो बुक के माध्यम से भी आप अपने को जानकार बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ते समय महत्वपूर्ण विचारों या पंक्तियों को डायरी में अवश्य नोट करें। किताबें कभी आपसे शिकायत नहीं करती, बल्कि वे हमेशा आपको कुछ नया सिखाने के लिए तैयार रहती हैं। इन्हें अपना सच्चा दोस्त बनाएं और जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ाएं।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार. देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार. अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है.
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं. अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें.

0: और साथियों, अब आपको सुनवाते हैं युवा कलाकार से बातचीत क्रम में। आज आपकी हम भेंट करा रहे हैं रक्षिता चौधरी से और इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: साथियों, आज हमारे साथ है एक युवा कलाकार रक्षिता चौधरी। आप यूँ तो 8वीं की विद्यार्थी हैं, पढ़ने जाती हैं, लेकिन गाना और कुछ भजन बना के गाना ये इनका अपना शौक है जो इनको बचपन से मिला है। कुछ भजन ये ब्रज के संदर्भ में बनाती हैं, गाती हैं। तो रक्षिता, जैसा मैंने कहा, आप 8वीं में पढ़ने जाती हो?
2: यस।
1: हैं, तो आपके स्कूल का नाम क्या है?
2: लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेद आर्य कन्या इंटर कॉलेज।
1: तो वहाँ पढ़ने जाती हो आप, तो पढ़ाई अच्छी लगती है आपको?
2: यस, अच्छी।
1: उसमें क्या मतलब साइंस आर्ट्स कई सारी फैकल्टी रहती है ना?
2: म्यूजिक सबसे बेस्ट लगता है।
1: म्यूजिक सबसे अच्छा लगता है। तो जो मैं कह रहा था अपने साथियों से कि आप गाना बजाना आपको अच्छा लगता है, उसमें तो कोई प्रिय भजन जो आप गाती हो, जिसको हर समय गुनगुनाती रहती हो, हमारे गा के हमारे युवा साथियों को सुनाओ।
2: इसी को गाती हूँ जो मैंने बनाया है।
1: हाँ, तो सुनाओ।
2: कोई ऐसी सजा दीजिए श्री राधे, कोई

0: रक्षिता, ये जो भजन है ये आपने खुद लिखा है?
1: यस, ये एक अपने आप से मतलब होता है ना कि करना
0: मतलब
1: चाहिए।
0: आपके मतलब ये मन की पुकार है उसमें। तो आपको जो ब्रज के भजन है, राधा कृष्ण है, ये आपके प्रिय विषय हैं जिनके संदर्भ में आप भजन गाती हो?
1: यस।
0: तो समय कैसे मिल जाता है? आप तो स्कूल भी जाती हो, जैसे आपने कहा आठवीं की विद्यार्थी है, घर है, स्कूल है, पढ़ाई है, तो इसके लिए समय कहाँ से निकाल पाती हो?
1: 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल की, उसके बाद 4 बजे घर पहुँच पाते हैं, तो उसके बाद लग पाते हैं 4:30 बजे से।
0: मतलब फिर आप कुछ समय आप स्कूल और पढ़ाई को देते हैं, कुछ समय आप अपने इस गीत संगीत को देते हैं।
1: yes.
0: इसमें तो इसमें रियाज तो करनी पड़ती होगी?
1: बिल्कुल करनी पड़ती है, शाम को 6 बजे से
0: रियाज कर लेते हैं उसमें कुछ भजन। तो कोई और प्रिय भजन हो जो हमारे युवा साथियों को गा के सुनाओ उसमें, क्योंकि भजन तो बहुत सारे होंगे, तो कोई और जो आपने लिखा हो या कोई और जो पहले से गाती हो उसमें?
1: फोन में से सुना था, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
0: सुनाओ आपके उसमें कैसा लगता है सुन के, हमारे श्रोता सुनेंगे हमारे साथी?

0: शिक्षा हम करें तो इसके लिए तो जैसा कहा कि रियाज की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन उस्ताद की भी जरूरत पड़ती है संगीत में तो, है ना, कोई सिखाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, चीजों को बताने वाला चाहिए ना उसमें। तो ये सब तुम्हें मिल पाता है क्या?
1: ऐसा नहीं है,
0: कोई सिखाने और बताने वाला भी तुम्हारे कोई पास नहीं है ना?
1: कोई नहीं।
0: तो इस बात को घर वालों को आपने बताया कि भाई जरूरत तो हम भी समझते हैं, घर वाले भी समझते होंगे। तो इसको अगर आपको एक शौक के रूप में रखना है तो एक अलग बात है, लेकिन इसको अगर कैरियर के तौर पे हम गीत संगीत को लेंगे तो फिर हमें कोई सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो इस बात को घर परिवार वालों के साथ रखा आपने?
1: रखा, वो बोलते हैं कि सीखो।
0: नहीं तो कहाँ से सीखें, यही तो वाली बात है ना। तो इस बात को तो उनको रखना चाहिए उसमें, क्योंकि ये सब भी ठीक है लेकिन आगे जब जीवन चलेगा तो बहुत सारे जीवन जीने के लिए हमें साधन चाहिए, जीविका चाहिए। तो एक तो ये है कि पढ़ लिख के हम नौकरी कर लें, बहुत सारी नौकरियां हैं, और चौधरी जो बच्चे हैं वो तो काफी आगे जाते हैं, फौज वौज में भी जाते हैं और सारी पुलिस है उसमें
1: हमारे
0: जाते
1: गांव से
0: हैं,
1: कोई गया ही नहीं है।
0: कोई नहीं गया। तो तुम्हें ये वाला काम अच्छा लगता है कि पढ़ाई ज्यादा अच्छी लगती है
1: दोनों
0: तुम्हें?
1: काम अच्छे लगते हैं।
0: दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक को चुनना पड़े तो फिर क्या चुनोगी? उसमें
1: पढ़ाई
0: पढ़ाई चुनोगी ना। तो इसको मतलब पढ़ाई के साथ साथ इसको लेकिन अपने जीवन में एक शौक के तौर पे रखना चाहोगे उसमें
1: आगे बढ़ना चाहते, शौक के तौर पर नहीं है।
0: इसमें भी है। तो मतलब यहाँ भी अगर संभावना मिली जीवन जीने के लिए तो यहाँ भी, और उधर मिली तो वो भी है,
1: वहां
0: नौकरी भी कर सकते हैं और म्यूजिक को भी अपना कैरियर बना सकते हैं, ये आप कहना चाह रही हो।
1: यस
0: तो कुछ चलते चलते और हमारे युवा साथियों को सुनाना चाहो, क्योंकि आपकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन गाती बहुत अच्छा हो, आपने भजन अच्छा गाया जो, तो कोई और कोई भजन जो चलते चलते सुनाना
1: जो
0: चाहो।
1: मैंने बनाया है भोलेनाथ का, उसको सुनाऊं।

0: बहुत बढ़िया। और इस तरह के भजन आप गाती रहें, सुनाती रहें, निश्चित तौर पे अच्छा लगा, हमारे युवा साथियों को भी अच्छा लगा होगा। तो साथियों, ये थी रक्षिता चौधरी, कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, पढ़ती भी हैं और उसके साथ साथ गाना बजाना इनका शौक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद भी भजन लिखती हैं और इतनी छोटी उम्र में, 14-15 साल की उम्र में, अगर कोई अगम निगम की बात कर रहा है तो ये बड़ी बात है। जीवन में हम चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ शौक हमको जरूर पालने चाहिए। और वो शौक अगर गाना हो सकता है, लिखना हो सकता है, साहित्य हो सकता है, तो एक कलाकार का जो जीवन होता है निश्चित तौर पर एक प्रेरणादायक होता है। तो रक्षिता, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपका ये शौक आगे चल करके फलित हो, आप एक अच्छी कलाकार, बड़ी कलाकार बने। और
1: युवा कलाकार से बातचीत क्रम में अभी आप सुन रहे थे रक्षिता चौधरी से ओपी सिंह की बातचीत। और साथियों, कार्यक्रम में अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है।

और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई

मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है। इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती खबरों के अनुसार सुरंग में 25 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज महिला सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा और 9:30 पर होगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से थोड़ी देर बाद संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी बागवानी फसलों की बरसात में देखभाल। इसी कार्यक्रम में एक और चर्चा होगी खरीफ फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन। साथ ही हमारे श्रोता सुनेंगे इस कार्यक्रम में वार्ता जिसका विषय होगा दुधारू पशुओं से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें। वार्ताकार होंगी डॉक्टर रुचि तिवारी। साथ ही हमारे श्रोतानंद ले सकते हैं इस कार्यक्रम में ब्रज लोकगीतों का

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा संध्या 7:05 पर। इसमें आज ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत ब्रज भाषा काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे दुर्गा प्रसाद पोद्दार।

देशगान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:15 पर। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम सुना जा सकता है रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी गरम मसाला।

रात 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहानी तराने। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे वायलिन पर राग बिहाग, वादा कलाकार होंगी विदुषी दुर्गा शर्मा। तबले पर उनके साथ संगत करेंगे भोगी राम रतोनिया। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में, 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम।

मृगजामीन कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को मृणालिनी बहन की राम राम। भैया देखो, बरसात का मौसम तो चल ही रहा है और बरसात के मौसम में बागवानी वाली जो फसलें हैं उनकी विशेष देखभाल करनी पड़े हैं। फल है, फूल हैं, सब्जियां हैं, उनके काजे जल निकासी की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण हुए। खेत हुए चाहे गमलन में पानी का जमाव है वो मिट्टी की नियमित गुड़ाई करें। फंगस से बचावे के काजे नीम खली का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे छोटी छोटी बातों को भैया हम ध्यान रखेंगे तो जो बागवानी वाली फसलें हैं उनको हम लाभ ले सकेंगे। जैसे भैया खेतन में मेड़ बनाकर फसलें लगाएं ताकि जो ज़्यादा पानी है, अतिरिक्त पानी है, वो बह जाए। गमलन में 2-3 छेद अवश्य रखना चाहिए और उन्हें ईंटन के ऊपर रखना चाहिए ताकि आसानी से पानी निकल सके। भारी बारिश आवे पे हवा से बचवे के काजे टमाटर, मिर्च, बेल वाली जो फसलें हैं, लौकी, तोरई को बांस या प्लास्टिक की खूटियन के सहारे चिपका देना चाहिए। फफूंदी नाशक का प्रयोग करना चाहिए। नमी बढ़वे से पौधन में फंगस लग जावे, जड़ गलन हैवे लगे तो बा को खतरा बढ़ जावे। जैसे बचवे के काजे पौधन की जड़न में ट्राइकोडर्मा या मैंकोजीव का छिड़काव कर देना चाहिए। खरपतवार बहुत बारिश में निकल आवे। बारिश के मौसम में तेजी से उगे वाले जो खरपतवार हुए हैं, घास फूस हुए, उन्हें तुरंत उकाड़ फेंकना चाहिए क्योंकि ये पौधन के पोषक तत्वों को सौंख ले में कीड़न को आकर्षित करें। भारी बारिश के दौरान तुरंत बाद खाद ना डालना चाहिए क्योंकि पानी पोषक तत्वों को बाहर लेके चला जावे। बारिश रुकवे पर, मिट्टी सूखवे पर ही जैविक खाद का या वर्मी कंपोस्ट को प्रयोग करना चाहिए और जैसे हम बागवानी वाली फसल को अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। तो भैया विशेष तौर से चौमासे आ रहे हैं, बारिश का टाइम चल रहा है, तो जा समय बागवानी वाली फसलें पर विशेष ध्यान रखें। ये तो रही भैया आज की चर्चा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जानकारी दे पाएंगे डॉक्टर रुचि तिवारी जी से। दुधारू पशु से अधिकतम लाभ कैसे

0: भैया अभी आप आनंद ले रहे हैं बनवारी लाल शर्मा के सुर में जा लोकगीत को, ना जाओ कन्हैया नजरिया से हटके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जानकारी दे पाएंगे दुधारू पशु से अधिकतम लाभ कैसे लें, जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रुचि तिवारी, इनसे बातचीत कर रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: भैया खेती बाड़ी और पशुपालन के धंधा किसान भैया संग संग करें, ये धंधे दो ऐसे हैं कि जो आपस में जुड़े हुए हैं। खेती को धंधों में जो आमदनी आवे किसान पे वो कार्तिक में के बैसाख में आवे, जब फसल कटे वाके बाद जो है वो वाय बेच के और वाके बाद वो आते पैसा मिले। लेकिन पशुपालन को धंधा ऐसा है कि रोज की रोज आमदनी दे, तो हर एक हमारा जो किसान भैया है वो एक द्वय या तीन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने पशु रखे और उनते दूध उत्पादन करे। समस्या जब आत की आ जावे कि किसान भैया दुधारू पशु ते ज्यादा लाभ कैसे लें, किन चीजों को ध्यान रखें जाते कि दुधारू पशु है वह को उत्पादन बने रहे और वाते बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति आवे। तो यही बात की चर्चा काजे आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित करे हुए डॉक्टर रुचि तिवारी है, जो कि भैया वेटनरी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं और जिनको काफी लंबा अनुभव है। तो आज बातचीत करते हैं कि दुधारू पशु ते कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले जाए। तो डॉक्टर साहब आपको स्वागत है, राम राम सा।
2: धन्यवाद, राम राम, राधे राधे।
1: हाँ, तो डॉक्टर साहब सबसे पहली बात जो विचार की बात है कि भैया किसान भैया दुधारू पशु तो खरीद लें,
2: बिल्कुल,
1: लेकिन वाते पूरा लाभ जितनी वाकी क्षमता है पशु की
2: बिल्कुल
1: दूध उत्पादन वाते प्राप्त ना कर पाए।
2: कई बार
1: तो कहाँ कहाँ ऐसे कारण है सके, कौन कौन सी ऐसी बात है सके जो अधिक उत्पादन में बाधा उत्पन्न करें।
2: बिल्कुल बिल्कुल, कई चुनौतियां भी होती हैं, जैसे कि अगर आप अपना पशु रखते हैं, अगर आप पशु को सही से खाना नहीं खिला रहे हैं, अगर आपका पशु बीच में बीमार हो जा रहा है, सही समय पर गाभिन नहीं हो रहा है, तो बीच में जो समय रहता है, कई बार ऐसा होता है कि आप पशु को खिला रहे हैं लेकिन आप उससे उतना दूध नहीं ले पा रहे हैं। कई बार वातावरण की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब आपने अपने पशु को रखा, फिर आपने कौन सा पशु रखा है, गाय भैंस बकरी, उसकी नस्लों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम आज चर्चा विस्तार से करेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब देखो तीन चार ऐसे कारण बताए जो किसान भाई जो पशुपालन को धंधा करे का है, उन वैसे तो ज्यादातर जानकारी है, तो हम अपनी तरफ से जो एक विशेषज्ञ द्वारा जानकारी जो सटीक जानकारी दी जाए वह हिसाब से अगर मूल्यांकन करें तो सबसे पहली बात निकल के आवे कि भैया हम पशु तो खरीद लें लेकिन पशु का है साल में एक बार कम से कम ब्यानो चाहिए, जाइए बारे वा तो उत्पादन वा को जो है पूरे साल तक 7-8-9-10 महीना तक आप ले सको। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं साहब के जाते पशु जो है सही समय पे गाभिन ना हो पावे, तो ये जो प्रजनन संबंधी जो व्याधियां हैं ऐसी जो पशु है रोके, तो उनकी थोड़ी सी चर्चा कर दें कि किसान भैया कहाँ करना चाहिए साहब।
2: बिल्कुल बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्रजनन संबंधी कोई समस्या हो रही है, आपका पशु बाहर घूम रहा है और लेकिन वो गाभिन नहीं हो पा रहा है, तो हमारे किसान भाइयों को तो पता नहीं चल पाता कि कारण क्या है या समस्या क्या है। कई बार जांच नहीं करते हैं तो उन्हें लगता है कि हो सकता है या 2-3 महीने का गाभिन हो गया है पशु, लेकिन उसकी उचित तरीके से जो जांच है वो कोई पशु चिकित्सक जांच करने के बाद देखने के बाद ही बता सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें, अगर आपका पशु गाभिन नहीं हो रहा है कोशिश करें अपने पास के अस्पताल में लेकर जाएं या चिकित्सक को बुलाकर पशु की जांच करवाएं। अगर पशु गाभिन है, पशु गर्मी में आ रहा है, उसके कुछ लक्षण होते हैं, इसीलिए पशु के गर्मी में आने वाले लक्षणों की पहचान करने के लिए कई बार हमारे महाविद्यालय में गोष्ठी का आयोजित किया जाता है जहां हम अपने किसान भाइयों को तथा कई बार गांव में हम खुद भी आते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी देते हैं। तो उसके कुछ कुछ लक्षण होते हैं अगर पशु गर्मी में आ रहा है, फिर आपके पास गाय है या भैंस है, दोनों के लक्षण, पशु का रंभाना, पशु पीछे से पेशाब कर रहा है, तेज आवाज कर रहा है, बेचैनी कर रहा है, तो इस तरह के जब लक्षण दिखते हैं तो आपको उस गर्मी को छोड़ना नहीं है, उस समय पर कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर किसी सांड का इस्तेमाल करके या फिर कोई हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं प्राकृतिक ना होकर, जो कि आप कृत्रिम तरीके से भी गर्भधारण करवा सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए उस समय पर या तो आपके गांव में, नहीं तो उस समय पर अस्पताल में लेकर आइए अपने पशु को, उसके अंदर सीमन जिसको हम कहते हैं उसके अंदर आप डलवाइए वीर्य ताकि आपका पशु गाभिन हो सके। और आपको एक बहुत अच्छा फायदा होगा अगर आप अस्पताल में पशु को लेकर आएंगे,

0: कि वहां कई बार उच्च क्वालिटी के, जैसे हम कहते हैं उच्च गुणवत्ता वाले सांड के वीर्य रखे होते हैं, तो यदि आप उससे अपनी गाय को या भैंस को ग्याभन करवाएंगे तो जो आपको दूध मिलेगा, जो आपका बछड़ा या पड़िया पैदा होगी, एक तो वो बहुत अच्छे गुणों वाली होगी, ये एक फायदा। दूसरा फायदा, उससे जो दूध आएगा, दूध की मात्रा ज्यादा होगी, और जो पड़िया पैदा होगी, चूंकि उसकी तबीयत या उसकी हेल्थ स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही हष्ट पुष्ट होगी, तो आगे चलकर जब उसे बच्चा देना होगा तो आपको अगली बार जो दूध मिलेगा वो और बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से आपको दोगुना फायदा होगा। इसीलिए आपको एक कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप गर्मी के लक्षणों को पहचानें ताकि आप उसे मिस ना करें या छोड़ ना दें। दूसरी समस्या।
1: हाँ, तो देखो डॉक्टर साहब, ये बात तो बहुत अच्छी बताई आपने। अक्सर ये बात आवे हमारे जो किसान भैया हैं, कहें वो हमें कहें कि पशु में फिरावट की समस्या है, गई भैया गाभिन है गई है, या कभी कभी ऐसा करें कि गर्मी के लक्षण दिखें और किसान भैया नजदीक के काऊ केंद्र पे ले जाएं, चाहे कृत्रिम गर्भाधान कराएं, चाहे सांड ते मिलान करवाएं, लेकिन बच्चा ठहरे ना है, तो या चीज की जानकारी एक डॉक्टर ही दे सके तो वह ये चाहिए कि भैया कम से कम ऐसा इंतजाम कर ले कि मेरी गैया या कि मेरी भैंस जो है साल में एक बार गाभिन है जाए, जाते कि लंबे समय तक दूध देते। अगर ऐसा ना है पैरो या फिरावट की समस्या आ रही है या कोई प्रजनन संबंधी और कोई व्याधि है, तो तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें और जा काजे वो वेटनरी विश्वविद्यालय में हूँ अपने पशु ले जा सके, या जो सरकारी डॉक्टर हमारे हल्के में वो आते संपर्क,
0: क्योंकि कई तरह की जांच होती है जो वहां की जा सकती है। जांच करने के बाद ये पता किया जा सकता है कि हो सकता है उसके खून में कोई संक्रमण हो सकता है पशु के शरीर में किसी हार्मोन की कमी हो या फिर हार्मोन की अधिकता हो, अर्थात उसका लेवल जब बदलता है किसी तरीके से, तो इसका भी प्रभाव पशु के प्रजनन धारण करने या गर्भ धारण करने की क्षमता पर पड़ता है, और ये चीजें बाहर से दिखाई नहीं देती, इसीलिए इनकी जानकारी आपको किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही मिल सकती है।
1: हाँ, तो भैया समस्या अगर है और आप देख रहे हो तो जाको सबसे पहले निदान जाइए कि भाई काऊ डॉक्टरी सलाह ले ली जाए,
0: बिल्कुल
1: आपको समुचित इलाज करवा लो, क्योंकि आपको पशु तभी तक आपको फायदेमंद है जब वो ज्यादा दूध दे और ज्यादा देर तक दूध दे और हर साल ग्याभिन है जाए, तो वादे का है 4-5-6-7 साल तक आप तुम अच्छा दूध ले सको
0: आराम से। आप एक पशु से 8-10 बार भी ब्याज से दूध ले सकते हैं, हालांकि हम 4-5 बार तो पशु का दूध 2 या 3 बात के ब्याज बढ़ता है, जैसा कि हम कहते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब देखो, ये समस्या बहुत ज्यादा आवे, चूंकि आजकल भैंस की जो कीमत है, जो दाम पड़े हैं, वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो अच्छी नस्ल की भैंस पालवो बहुत मुश्किल काम है। साथ ही साथ ये है कि भैया अगर पशु ठल निकल जाए और दूध ना दे या गाभिन ना होए, तो किसान भैया है आर्थिक नुकसान यो है कि भाई खिलानो पिलानो तो पड़े पर वाते उत्पादन ना मिले,
0: उतना नहीं मिल पाता। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी होगी कि हमारा भारत देश, जिसमें कि इतने सारे किसान रहते हैं, हमारा भारत देश विश्व में जितना भी दूध का उत्पादन होता है सबसे अग्रणी है, सबसे आगे, सबसे ज्यादा दूध हमारे देश में ही होता है। मतलब पूरे विश्व का 16% अगर आप मानिए दूध का उत्पादन हमारे देश में होता है, जिसका श्रेय भी हम अपने किसान भाइयों और माताओं व बहनों को ही देते हैं, अपने पशुपालक भाइयों को, क्योंकि वही इस बात पे ध्यान देते हैं कि पशु को कब ग्याभन कराना है, पशु के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहनी चाहिए, आपको पशु को क्या आहार देना है, कब पशु का इलाज कराना है, आपका पशु बीमार नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका भी प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और धीरे धीरे उसका दूध कम पड़ने लगेगा, और उसके बाद आपको खर्चा तो करना पड़ेगा दवाइयों पर, लेकिन आप जितनी लागत लगा रहे हैं उससे आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा।
1: हाँ, तो भैया देखो, एक मोटी समस्या जो हमारे ज्यादातर किसान भैया की समस्या है वहां पे हमने बात करी, दूसरों के भैया ज्यादा उत्पादन कैसे ले सकें, वहां में पशुओं की जैसे सब भैया जाने कि भैया खान पान अगर बढ़िया रखोगे तो पैदावार भी बढ़िया बनेगी, खेत में खाद अच्छी तरह डालोगे, सही वक्त पे डालोगे तो उत्पादन ज्यादा होगा, जै हिसाब से पशु की अगर खिलाई पिलाई तुम अच्छी तरह से करोगे, समय पे करोगे और अच्छा पौष्टिक और संतुलित आहार खिलाओगे तो वाते पशु ज्यादा अच्छी उत्पादन देगो। तो खिलाई पिलाई करते समय खान पान की स्थिति में पशु को का बात को ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर साहब, जाते कि उत्पादन अच्छा हो। कौन कौन सी मोटी बात है
0: ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये सबसे मुख्य बात है जिस पर कई बार हम ध्यान नहीं देते। आपने घरों में भी देखा होगा जब बच्चे बड़े होते हैं हम कहते हैं उन्हें अच्छा खिलाओ पिलाओ, इसी तरह से यदि हमारे पशु गाय है भैंस है या अगर बकरी भी किसी ने पाल रखी है, कुछ लोग बकरी भी पालते हैं चाहे भले वो कम दूध देती है, तो जब आपका पशु बड़ा हो रहा होता है उस समय आपको संतुलित आहार, जिसे हम कहते हैं आपको उसे संतुलित आहार देने की जरूरत है। अगर आपका पशु दूध देने वाला है, आप ये समझिए कि जो आपका दूध देने वाला पशु है उसके शरीर की जरूरतें जो होती हैं दूध नहीं देने वाले पशु से अलग होती हैं, इसलिए आपको उसे खाने में ना केवल हरा चारा, सूखा चारा, खली

0: नमक ये देने की जरूरत है, बल्कि इसके साथ साथ आपको दाना देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप मानकर चलिए, जो पशु, अगर हम गाय की बात करें, अगर कोई गाय 2.5 किलो दूध देती है, तो उसे उसके खाने में, उसके भोजन में, उसके आहार में आप कम से कम 1 किलो दाना हरे चारे के साथ जरूर दीजिए। अगर कोई
1: प्रतिदिन के हिसाब से,
0: प्रतिदिन के हिसाब से बिल्कुल, अगर कोई भैंस आपकी 2 लीटर दूध दे रही है, उसी हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। अगर 2 लीटर दूध दे रही है तो आप 1 किलो दाना उसे जरूर दीजिए। तो इस तरह से अब क्या होता है कि हर मौसम में हरा चारा भी उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन तो आप एक अनुमान लगाइए, अनुमान के हिसाब से पशु को आप सबसे ज्यादा भरपेट, जिसे हम कहते हैं, हरा चारा खिलाइए, जो अलग अलग मौसम में हो सकता है, अलग अलग तरह का उत्पन्न होता है। जैसे कि हम कहते हैं, किसी मौसम में बरसीम ज्यादा है, किसी मौसम में आपका ज्वार या बाजरा है, इस तरह से आप इनसे हरे चारे की जो सप्लाई है या जो प्रदान करना है आपको, कोशिश कीजिए ये मिले। उसके बाद लेकिन अगर आप दलहनी और दाल वाली फसलें, इनका चारा इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पशु के दूध देने की क्षमता बढ़ेगी। पर इसके साथ एक बात यह है कि अगर आप अकेले केवल हरा चारा देंगे तो हो सकता है पशु में गैस बनने या जिसे हम अफरा कहते हैं, वैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हरे चारे के साथ आप सूखा चारा दीजिए, सूखे चारे के साथ आप खली मिलाइए। अगर आप दूध बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिलौले की खली दे सकते हैं, मूंगफली की खली दे सकते हैं, उसके साथ आप दाना मिलाइए जिसमें कि आप गेहूं, आटे का चोकर, बाजरा, ये सारी चीजें मिला सकते हैं। साथ में पशु को नमक की जरूरत होती है शरीर में, और ना केवल खाने के लिए बल्कि साथ में आपको दूध में, दूध बनाने के लिए और शरीर को चलाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप पशु के आहार में इन चीजों को मिलाकर, खाने के साथ साथ संतुलित आहार के साथ साथ सही मात्रा में पानी भी दीजिए, जो हम जानते हैं गर्मी के ऋतु में ज्यादा देनी चाहिए और ठंड ऋतु में कम, लेकिन कम से कम 30 से 40 लीटर एक बार में आपको पशु को पानी देना चाहिए।
1: हाँ, और डॉक्टर साहब, एक हमारे जय इलाके के किसान जो भैया है, का है
0: जी जी।
1: वो जो है अपने पशु है खिलाई पिलाई तो ठीक कर दें, पर साथ में जो मिनरल मिक्सचर हुए का है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वहाँ को ध्यान ना रखें। और हम अपने कार्यक्रमों में बार बार जी बताए में जावे कि भैया जो मिनरल मिक्सचर है, पशु ऐसे तत्व है जो जो पशु के लिए बहुत जरूरी हो, तो एक बार मिनरल मिक्सचर कैसे दें, कहाँ?
0: ये आपने बहुत अच्छी बात बीच में उठाई, जहाँ हम खाने की बात कर रहे थे, जहाँ हम हरा चारा, सूखा चारा, खली मिलाते हैं, साथ में इन्हीं के साथ आपको पशु को मिनरल मिक्सचर भी मिलाकर देना चाहिए। क्योंकि मिनरल मिक्सचर क्या होता है, हम कहते हैं ये खनिज लवणों का मिक्सचर होता है। पशु के खाने में हमें दिखाई नहीं देता किस चीज की कमी हो जाएगी, लेकिन इस मिनरल मिक्सचर को देकर आप उसके शरीर के लिए, दूध में हम कहते हैं कैल्शियम बहुत होता है, ये कैल्शियम कहाँ से आता है? मिनरल मिक्सचर से। इसलिए मिनरल मिक्सचर जिसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे बहुत सारे जरूरी ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो उपस्थित होते हैं, तो यदि पशु को कोई चीज हरे चारे से या दाने से नहीं मिल पा रही है, तो उन विटामिन और खनिज लवण की पूर्ति जो होती है वो इस मिनरल मिक्सचर से हो जाती है। इसलिए मिनरल मिक्सचर आपको जरूर से पशु के खाने में मिलाकर देना चाहिए।
1: भैया जी, मिनरल मिक्सचर जो है बनो बनाओ भी मिले, और वह तुम घर पे हो बनाए सको, और बहुत ज्यादा महंगो ना है, लेकिन वाते क्या है, दुग्ध उत्पादन में और पशु की सेहत में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा को। तो जामारे हमें मिनरल मिक्सचर जो है वो हर राशन के संग, हर जो खान पान के संग जो है वह मिलाना चाहिए, और प्रतिदिन जाको ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, प्रतिदिन आपको हरे चारे के साथ, अगर आप दाना किसी कारण से कम कर रहे हैं, अगर हरा चारा ज्यादा है तो आप दाना थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन मिनरल मिक्सचर आपको दोनों समय, आप पशु को 2 टाइम चारा दीजिए, सुबह और शाम खली के साथ मिलाकर, और दोनों टाइम आप पशु को मिनरल मिक्सचर भी दीजिए।
1: तो भैया, दो बिंदुओं पे विचार भयो के जाते के जो हमारे जो दुधारू पशु हैं वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दें। पहली बात तो जो है वाकई प्रजनन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वाकई खाने पीने में जो मोटी बात है उनको ध्यान पशुपालक के रखना चाहिए, जाते कि उत्पादन अधिक मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार बात हुए करे कि जब दूध निकाले का है तो हम जो अपना हमारा दूध को प्रकार है, हम कहें कि भाई स्वच्छ दुग्ध उत्पादन होना चाहिए, ऐसा दूध जो दूसरे जो हम जो पीवे का है वाकई सेहत पे वाको प्रभाव न पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े, और साथ ही साथ दूध जो जल्दी खराब न हो, तो स्वच्छ दूध उत्पादन या दूध दुहने की विधि पे या दूध धोते समय किन किन बातों को ध्यान रखे, वो उत्ते पशु की जो प्रोडक्शन है या वाको उत्पादन है वो निर्भर करे, तो जामे क्या क्या ऐसी मोटी बात है जो पशुपालक है ध्यान रखनी चाहिए।
0: हाँ जी, हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि क्या होता है हमारे पशुपालक भाइयों के पास हो सकता है किसी के पास 30 से 40 लीटर दूध देने वाला पशु हो सकता है, किसी के पास केवल 4 से 5 लीटर देने वाला पशु, तो आपको दोनों तरीके के पशुओं से दूध लेना है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप जितना दूध ले पा रहे हैं उसका इस्तेमाल आप सही तरीके से कर सकें, अर्थात जो दूध आप ले रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। तो इसके लिए

0: हमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि जब भी आप पशु को दूध निकालने की कोशिश करें, आप कोशिश करें जहां भी दूध दुहा जा रहा है वो स्थान साफ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, धूल नहीं होनी चाहिए, ताकि जब आप दूध निकालें उस वक्त आपका दूध साफ सुथरा निकले। आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जहां पर आप थन से दूध निकालना शुरू करें उसके पहले थन को आप लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं हम, लाल दवा का पानी बनाएं, उस पानी से थन को थोड़ी देर के लिए धो लें या फिर गुनगुने पानी से थन को शुरू में धो लें, पोंछ लें, उसके बाद फिर आप दूध निकालना शुरू करें। और हम ये कोशिश करते हैं कि शुरू की एक दो धार, आप चारों थनों से शुरू की एक दो धार जो है वो आप अलग बर्तन में निकालिए, उसके बाद का जो दूध आता है वो दूध जो होगा उसमें ना तो कहीं से धूल के आने की संभावना है ना किसी संक्रमण के आने की संभावना है, इसलिए उसके बाद आप पूरा दूध निकालिए और कोशिश कीजिए कि एक बार में 5 से 7 मिनट के अंदर आपको सारा दूध निकाल लेना चाहिए। नहीं तो कई बार हम ये कहते हैं अगर आपने बीच में रोक दिया हमारा पशु जो है वो दूध ऊपर चढ़ा लेता है, ये समस्या कई बार सुनने में आती है, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि एक बार में आराम से दूध निकाल लीजिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब आप दूध निकालते हैं दोनों हाथों से दूध निकालते वक्त चारों उंगलियों और अंगूठे की मदद से थन को बीच में पकड़कर ऊपर से नीचे की ओर दबाव डालते हुए आपको दूध निकालना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि अंगूठा दबाने की कोशिश करते हैं, एक तरफ चार उंगलियों और अंगूठे से दबाव देते हैं, उससे क्या होता है उससे दूध बढ़ता नहीं है। अगर दूध थोड़ा कम हुआ लोग सोचते हैं यूं दबा कर आखिरी की बूंदे भी निकाली जा सकती है, इससे दूध तो नहीं बढ़ता लेकिन साथ में थन में चोट या जख्म या घाव लगने की संभावना जरूर बढ़ जाती है और कई बार पशु भिदक भी जाता है दर्द के कारण। तो इसलिए इस तरह की प्रक्रिया को हमें मना करना चाहिए बिल्कुल भी, यदि हम खुद दूध निकाल रहे हैं या कोई ग्वाला दूध निकाल रहा है। बल्कि जो ग्वाला आपका दूध निकाल रहा है उसके नाखूनों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, उसके नाखून कभी भी बढ़े हुए नहीं होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि सर ढका हुआ होना चाहिए ताकि दूध में कुछ बाल वगैरह या धूल वगैरह गिरने की संभावना ना हो। इसी प्रकार जब आप दूध निकाल लें पूरी तरीके से उसके बाद थन को आप अच्छे से पोंछ कर दोबारा से किसी गीले कपड़े से या तौलिए से अच्छे से पोंछ दीजिए और कोशिश कीजिए आपका पशु कम से कम आधे घंटे तक ना बैठे। ये बहुत ही छोटी बात है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यदि आपका पशु उसके बाद आधे घंटे तक खड़ा रहेगा तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके पशु के थन में कोई संक्रमण नहीं जाएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पशु थोड़ी देर तक खड़ा रहे, वहां पर कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए ताकि पशु आराम से दूध निकाल सके। और जो आपने दूध एकत्रित कर लिया उस दूध को बिना समय गवाए या तो आप तुरंत उबाल लीजिए, और तुरंत इस्तेमाल यदि नहीं होना है तो उसके लिए आप उसे फ्रिज पर ठंडे टेम्परेचर पर ठंडे तापमान पर रख दीजिए, क्योंकि दूध जैसा कि हम जानते हैं बहुत अधिक पोषक तत्वों से युक्त होता है। इसलिए जिस प्रकार हमें दूध बहुत प्रिय होता है उसी तरह ऐसे संक्रमणकारी जो जीवाणु होते हैं हमारे विषाणु है रोगाणु उनके लिए भी बहुत प्रिय होता है, तो बहुत जल्दी दूध खराब भी हो जाता है, दूध में खट्टापन आ जाता है जिसके गर्मी के दिनों में ये समस्या ज्यादा होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आपने दूध निकाल लिया उसके बाद फिर आप दूध को कम तापमान पर या फिर उबाल कर रखिए।
1: हाँ तो देखो ये बात अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और जो ज्यादा बाधित करती है उत्पादन को वो है कि भैया जो हमारे जो पशु हैं वो अक्सर बीमारी रोगों से बचाव की स्थिति में नहीं रहते, कई कई बीमारियां हो जाती हैं। जाके अलावा भी एक और जो जो जरूरी बात रह गई डॉक्टर साहब के समय समय पर हमें टीकाकरण करवाना चाहिए, तो जाके बारे में और थोड़ी सी और जानकारी दो।
0: बिल्कुल, टीकाकरण आपको कोशिश करनी चाहिए मानसून से पहले, मानसून जब भी आपका शुरू होता है उसके पहले आप पशुओं को पहले तो किलनी या पेट में कीड़े होते हैं मारने की दवाएं दिलवाएं और उसके बाद फिर आप पशु का टीकाकरण करवाएं। तो पशु का टीकाकरण कराने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारियां जैसे कि गलघोटू है, आपके पशु का खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है, इस कारण से पशु को इन सारी बीमारियों से बचाना चाहिए ताकि पशु बीमार नहीं होगा तो लगातार दूध देता रहेगा। इसके अलावा टीकाकरण के अलावा कई बार पशु में थनैला रोग भी हो जाता है, तो उस रोग के कारण पशु का थन सूज जाता है, पशु के दूध में चीचड़े इस तरह की चीजें आने लगती हैं, दूध लाल हो जाता है, पानी जैसा हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हमें अपने पशु को रोगों से बचा कर रखना चाहिए, पशु को संक्रमण से बचाएं, सही समय पर पशु का टीकाकरण करवाएं ताकि पशु को कोई रोग ना हो। और यदि फिर भी किसी पशु को रोग हो गया तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अस्वस्थ पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए ताकि संक्रमण आपस में ना फैल सके, और आप जिस पशु से दूध ले रहे हैं कम से कम आपका वो पशु आपको लगातार दूध देता रहे और आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके।
1: जाके अलावा भैया साल में कम से कम 2 बार डॉक्टर साहब
0: टीकाकरण,
1: टीकाकरण के अलावा भी जो है जो कृमिनाशक औषधियों का प्रयोग करें, या केहू शरीर के बाहर और केहू शरीर के भीतर ऐसे परजीवी है जाए जिनसे छुटकारा पाना जरूरी है, तो वह केहू प्रयोग करें। तो डॉक्टर साहब आज आप हमारे जो स्टूडियो में आए, और भैया दुधारू पशु थे कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले जाए, जहाँ बारे में आपने जरूरी जानकारी दी, आकाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: भैया। अभी आप जानकारी ले रहे हैं डॉक्टर रुचि तिवारी थे, दुधारू पशु से अधिकतम लाभ हम कैसे लें, इनसे बातचीत कर रहे विजय सिंह लौलक्का। हमें उम्मीद है कि इनकी दई भई जानकारी को लाभ हमारे पशुपालन भैया बहन जरूर लेंगे। चलते चलते भैया थोड़ी सी चर्चा करें, खरीफ फसलन में कीट एवं रोग प्रबंधन के ऊपर। कीट और रोग ये पौधन के जो है उत्पादन की क्षमता को खत्म कर दे में, अन्य अगर इन्हें ठीक से नियंत्रित ना किया जाए तो ये फसलन की पैदावार को भी कम कर दे में और मिट्टी की सेहत को भी बहुत ही नुकसान पहुँचावे। खेती की लागत अगर हम इन पर ध्यान देंगे तो जो खेती की लागत हमने लगाई है वह हम लाभ ले सकेंगे। कीटनाशकों का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए, लेकिन निगरानी जरूर करनी चाहिए। अगर हमें हल्के भी कीट दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत निगरानी करके उनको दूर करने के उपाय देखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जैविक खेती हम अधिक से अधिक करें और कीट और रोग का प्रबंधन भी उन्हीं माध्यम से, नीम है, चिराता है, मिर्च है, इनका प्रयोग करके देसी तरीके से यानी जैविक खेती के तरीके से हम इनको नियंत्रित करें और अधिक से अधिक उत्पादन लें। इन्हीं जानकारी के साथ अब हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम संपन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

0: काला धंधा गोरे लोग, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें मोहम्मद अजीज और साथियों की थीं।
1: भटकते देखे हैं लाखों मुल्ला

ये थे आशा भोसले, उदित नारायण और साथी, फिल्म थी लगान। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 23 जुलाई में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है स्त्री रोग कारण और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर अंजू गुप्ता, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। अब हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2255-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में स्त्री रोग कारण और समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है स्त्री रोग कारण और समाधान। श्रोता, यदि आप स्त्री संबंधी रोग जैसे मासिक धर्म की गड़बड़ी, पैल्विक दर्द, यूरिनरी समस्याएं यानी UTI, PCOS, PCOD, बांझपन, एनीमिया, ल्यूकोरिया, नियमित स्नान व वस्त्रों का चयन, मासिक धर्म की स्वच्छता, हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक विकास आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछे सवाल डॉक्टर अंजू गुप्ता, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 23 जुलाई 2026 को दिन में 12 बजे से। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: ब्रज साहित्य कार्यक्रम, यह कार्यक्रम में आज ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवा में दुर्गा प्रसाद पोद्दार पैथी ब्रज भाषा काव्य पाठ।
5: मेरी पहली रचना को शीर्षक है मह कुठो मकरंद है।

अभी आपने दुर्गा प्रसाद पोद्दार पे थे, उनको स्वरचित ब्रज भाषा का भी पाठ सुनो और यही के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया एक महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा, बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व, ग्लासगो में कल होगा आयोजन का शुभारंभ। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्री मणिरामदास छावनी में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, सीईओ की नियुक्ति, ट्रस्ट के रिक्त पदों और धार्मिक समिति के पुनर्गठन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ट्रस्ट के महासचिव कृष्णमोहन ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए गठित समिति ने आवेदनों की अधिक संख्या और प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। तब तक प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
2: एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलम्ब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है।
1: ट्रस्ट ने साफ किया कि राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है और मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बनी हुई है। बैठक में चढ़ावा गणना व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मीडिया के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया है। ट्रस्ट ने धार्मिक समिति के पुनर्गठन का भी फैसला लिया है। इस समिति की अध्यक्षता स्वामी गोविंद देवगिरी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विद्यार्थियों की आकांक्षाएं पूरी करने और युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक

0: राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी।
1: रक्षा मंत्री ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर कहा कि सरकार ने प्रत्येक मुद्दे पर सार्थक बहस करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन विपक्ष सड़कों पर उतरकर मुद्दों को उलझाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कल नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष छात्रों के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहा है।
2: जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जल निकासी के तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जल निकासी के प्रबंध पर जोर देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए ताकि इसे नाले चौक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ चौकियां सक्रिय रहें और बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में सुशासन और लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।
2: भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया के अंदर एकमात्र एक राजनीतिक दल के रूप में, सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में, मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करते हुए सुशासन लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में अपनी एक मजबूत उपस्थिति प्रस्तुत की है। दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों में सही सोच और राष्ट्रहित की भावना विकसित करना भी है। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ का आज बागपत के बड़ौत में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। श्री अरुण ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बधाया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री धनखड़ का शव 20 जुलाई को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मिला था। ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का कल से शुभारंभ होगा। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के 10 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें 2 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट और जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। वहीं प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक 400 मीटर की रिले दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यूपी

0: की अस्मिता डे जूडो और आगरा के आदित्य प्रताप सिंह बॉक्सिंग में दम दिखाएंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग लेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रदेश में बीते 3-4 दिनों से हो रही बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है, वहीं कई जनपदों में नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी भी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गौतमबुद्ध नगर में हिंडन और यमुना नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 18 बाढ़ चौकियां और 18 बाढ़ शरणार्थी स्थल बनाए गए हैं। प्रशासन की टीमें सतर्क हैं और जल भराव वाले इलाकों में सहायता पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से 25 जुलाई के बीच प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया 1 महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा। बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। ग्लासगो में कल होगा आयोजन का शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षर रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका और उनके परिवार के सभी सदस्य, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शोमन्या और अन्नू गोस्वामी, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर और जियाउलक डाबर, भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफरा शेख, गुलफरा शेख और बेबी मुस्कान, मेन बाजार कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश और परमला बंछोर, पद्मा टागज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके, आप हैं बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, कुमार गली श्रीरामपुर से रोहिणी दले, अशोक दले, सविता अनिकेत, ऋषिकेश जीविका, सानिका दले, पुनावली पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा अभिका, विशाखा और उनके परिवार के सभी सदस्य, राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता, शारदा गुप्ता,

माला गुप्ता, आफरीन, दीप्ति रानी, रुखसाना, नेहा और कंचन माला मिश्रा। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, इंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता। पिहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सतनानी, शुभानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जूही टूसी और उनके परिवार के सभी सदस्य। नाज मंजिल महसूल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल और निशा। शेगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले और लोकेश एस काले। करताला हैदराबाद तेलंगाना से कानू गोलगोपाल, माहेश्वरी, प्रभालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश और उनके परिवारीजन। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम और अक्षय। फुलचिंचोली तालुका पंडरपुर से जाकिर मोलानी, सुमैया, सुबहान, समीर, सलमा, मुमताज मोलानी, दिलशाद मोलानी, नसीर, बानू बी मोलानी और बादशाह मोलानी। कोखा भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंगेल। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया यादव और उनके मित्रगण। ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योग्यता, प्रियाली, पार्थ और उनके परिवारीजन। सोंगामाकर रोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देवी करानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। आइए सुनते हैं आप सबके लिए मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत परेलाल। फिल्म का नाम दो रास्ते।

ये थे मोहम्मद रफ़ी फिल्म थी दो रास्ते, और अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह और साथियों को। फिल्म है ओम शांति ओम, गीत जावेद अख्तर का, संगीत निर्देशक विशाल और शेखर, जो हमें संदेश मिले उनके नाम हैं। लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी काना, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मन भावन नैना सत्यनारायण, कपिल शोभा और पुनदी भाई बागरी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू निशांत, कौशिकी दीपाली, युवान और आर के राजा, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, आप हैं नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नास, सलमा नास, असद, अरहाम और हाशमी परिवार के सभी सदस्य, ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया और उनके परिवारीजन, जेलरो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण श्रीनिका और श्रीनिजा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और नियमित आहूजा, मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सूरज जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, अनीता, ज्योति, संजना, रेखा और भारती नामदेव, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। आइए सुनते हैं आप सबके लिए ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत।

ये थे सुखविंदर सिंह और साथी, फिल्म थी ओम शांति ओम। और अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म है प्रतिज्ञा। गीतानंद बख्शी का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पसंद भेजने वाले श्रोता गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, दादरीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल मेहरा, महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, साबिया मुजावर, मिखाइल और जैनब मुजावर, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुमार और अनुश्री श्याम कुमार, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार और उनके परिवारीजन, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता और उनके परिवारीजन, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहाबुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, साई मीरा, अजमीन गुड़िया, राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, रानी मेनका, श्वेता स्वाति।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें आशा भोसले और अभिजीत की थी, शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक थे जतिन ललित। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं, ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री। मजनू कट्टला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक। श्रीरामपुर से डी कुम अशोक कुम्भार, अविका जीविका सानू कुम्भार और अर्चना कुम्भार। बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े उषा विशाल वानखेड़े और उनके परिवारीजन। कन्वीन हाउस

लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए।

अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही एक मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छ

स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवीके एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क), भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी।
हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री

0: हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें, अपनी बात का असर ना होते देख श्री हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है। बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बना हुआ है और अभी तक कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है गरम मसाला। पहले सुनिए इस फिल्म में हेमा सरदेसाई और सुखविंदर सिंह को।

ये थे अदनान सामी। इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, फिल्म है गरम मसाला। अब आइए सुनते हैं इसी फिल्म में केके और सुनिधि चौहान को।

केके और सुनिधि चौहान के गए इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी गरम मसाला। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे प्रीतम।

0: खाली है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के

0: बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
3: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा

0: पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। NSE मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की।

फिर हेरा फेरी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, गीत समीर का था, गायक और संगीतकार थे हिमेश रेशमिया। और आइए सुनते हैं हिमेश रेशमिया के ही संगीत निर्देशन में यह गीत। फिल्म का नाम है खिलाड़ी 786, गीत शब्बीर अहमद का है, आवाज़ें जावेद अली और श्रेया घोषाल की हैं।

ये थे उदित नारायण और अलका याग्निक, फिल्म थी सुहाग, गीत समीर का, संगीत निर्देशक थे आनंद मिलिंद। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटा सा गांव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहां कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
2: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांव पर आधारित है या Tier 2 cities पर आधारित है या Tier 3 cities पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाएं, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा आप नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड, लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ ही नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में, और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और Tier 2, Tier 3 cities में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से

0: अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा। क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
1: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अभी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में, और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा, जो बड़े ब्रांड, बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे, छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है, और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो, और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है, ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई, ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है, जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो लोग एक तरीके से अपनी उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरह की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरह की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है, उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा, और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटा एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की, जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं, फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेड करने तक, मार्केटिंग के तक, वो इस स्कीम की खास जो खूबी है, और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शंस इसमें हुए हैं, तो ये अपने आप में, या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है
0: जी।
1: और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों के थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है, तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है, इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं, और बड़े हुए हैं लोग इस तरीके के। उदाहरण जैसे 2 उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया, जिन इस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं और उसी रास्ते चल के देश में

0: कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनकी जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में। जिस तरह से लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं,
1: जी
0: और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें हमारी जो जीडीपी का करीब 7%, 7% ये सेक्टर बन गया है, और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि PMFME योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार, और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया, और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमुना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
2: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2 से 3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में। जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है, और हम जो है मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा अरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। और इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह है जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फल और उसके जो प्रोसेस्ड हैं पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए, आपको भारत के हजारों छोटे

0: प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं, वो आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहां मिलेट्स होते हैं, तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है, लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है।
1: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा है जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाए, क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वही कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले। तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है और इसको, क्योंकि बात ही इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये अभी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में और बहुत सारी, या जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनके विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं

0: उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं। साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही हैं। आपको क्या लगता है, जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
1: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती। हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती, फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाएं, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मानकर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है, तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती है आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मान, ये ऐसे नहीं ऐसे बन पाए। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी में उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पर फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है, तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था अपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मेरा जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही है, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव-गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसमें आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEMA के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है, और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 के लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क और जो ये बड़ी पीएम किसान संपदा योजना के तहत बन रहे

0: कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग का क्लस्टर बन रहे हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस है, उनको गांव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सकें उसको। जब आप इस FMEI से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बना देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए, एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात ये है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़ी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे जो बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासनी जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया, उनको एक मेंबर बना करके किया गया काम। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। PM FME योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं, जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं, तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: कॉमनवेल्थ 2026 पर एक रिपोर्ट।
1: नमस्कार। लंबी अनिश्चितता और आयोजन पर मटराते बादल के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया है जब खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में अदद एक पदक के लिए अपने शरीर के खून का कतरा कतरा झोंक देंगे और फिर टप टप टपकते पसीने से सींच कर एक मेडल पैदा करेंगे। इस पदक की चमक विजेताओं को जीवन में कभी नहीं भुलाने वाली खुशी देगी। बर्मिंघम से 4 साल बाद खेलों का कारवां स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचा है। हालांकि इस बार 4 साल का ये अंतराल कुछ ज्यादा ही मुश्किलों से भरा रहा है। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को करनी थी, लेकिन 2 साल पहले विक्टोरिया ने लागत बढ़ने और फंड की कमी का तर्क देकर आयोजन से अपना हाथ खींच लिया। इससे कॉमनवेल्थ फेडरेशन मुश्किल में पड़ गया। आयोजन से 2 साल पहले नए मेजबान की तलाश का काम आसान नहीं था। काफी प्रयास के बाद आखिरकार ग्लासगो को मेजबानी सौंपी गई, लेकिन यहां भी एक अड़चन आ गई। ग्लासगो ने भी कम बजट की बात कहकर ये शर्त रख दी कि वह सिर्फ उन खेलों का ही आयोजन कर सकता है जिनके लिए वेन्यू उनके पास पहले से ही मौजूद है। ऐसे में खेलों की संख्या में कटौती की गई। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 19 खेलों के मुकाबले ग्लासगो में यह संख्या सिर्फ 10 रह गई है। जो खेल स्पर्धाएं ग्लासगो में होने जा रही हैं, उनमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, 3x3 बास्केटबॉल, लॉन बॉल्स, नेटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जूडो और बॉक्सिंग शामिल हैं। दूसरी तरफ जिन 9 खेलों को हटाया गया है उनमें रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वाश, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और रग्बी 7 शामिल हैं। इस फैसले का बड़ा असर भारत की पदक की संभावनाओं पर भी पड़ा है। हम आपको बता दें कि बर्मिंघम में भारत ने बीच वॉलीबॉल और रग्बी 7 को छोड़कर बाकी सभी खेलों में हिस्सा लिया और 61 मेडल्स भी जीते थे। भारतीय दल को बैडमिंटन में 2, क्रिकेट में 1, स्क्वाश में 2, टेबल टेनिस में 7 और रेसलिंग में 12 मेडल मिले थे। ऐसे हालात में पदकों की संख्या का कम होना तय है। अब उन खेलों की बात करें जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा हैं और जहां भारत के लिए पदक की बेहतर संभावना है। भारत को बर्मिंघम में वेटलिफ्टिंग में 10, एथलेटिक्स में 8, लॉन बॉल में 2 और पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल मिला था और कुल 31 मेडल भारत ने जीते थे। इस बार भी पदकों की संख्या इसी के आसपास रहने की उम्मीद है, क्योंकि स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, 3x3 बास्केटबॉल, नेटबॉल और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में हमारी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इस बार के 125 खिलाड़ियों का भारतीय दल मेडल के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देगा। इस दल में 77 पुरुष और 48 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे बड़ा 32 सदस्यों का दल इस बार एथलेटिक्स में पदक की दावेदारी के साथ उतरेगा। इसके बाद मुक्केबाजी और जूडो में 14-14 और वेटलिफ्टिंग में 12 खिलाड़ियों का दल हिस्सा लेगा। हम आपको ये भी बता दें कि ओलंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन और भारत की संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की प्रतिनिधि और वरिष्ठ खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, आपका स्वागत।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हिमिका, आखिर तमाम हाना के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने जा रहा है, लेकिन पिछले आयोजन के मुकाबले इस बार 19 की जगह सिर्फ 10 खेल होंगे। इसका क्या असर इन खेलों के आयोजन पर पड़ सकता है?
2: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स, 33 मेडल्स हम लेके आए। जैसा कि सबको पता है अब, और आपने भी इसका जिक्र किया, कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन्स हैं, जैसे बैडमिंटन है, जैसे बॉक्सिंग है, जिसमें हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है, तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ, ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा मेडल टैली में।
1: जी, और भारत के खिलाड़ियों के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये गेम्स न सिर्फ पदक जीतकर मनोबल बढ़ाने के लिए, बल्कि उसी साल होने वाले एशियन गेम्स और एक साल बाद होने वाले ओलंपिक की तैयारियों के लिए भी अच्छा मंच प्रदान करता रहा है। इस बार कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, बैडमिंटन, आर्चरी का न होना क्या एशियाई खेलों और ओलंपिक्स में भी भारत की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है?
2: आपने बिल्कुल सही कहा। तो उस हिसाब से तो जो एथलीट जाते हैं, और ये हम सबको पता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना ही इनफ नहीं होता, एक एथलीट के लिए सबसे जरूरी होता है कंपटीशन। एक क्लासिक एग्जांपल है नीरज चोपड़ा का कि वो जिस एंगल में भाला पहले फेंकते

थे, फिर उनको पता चला कि उस एंगल में वो अचीव नहीं कर पा रहे उनका वो जो 90 जो द ड्रीम मार्क है, तो उन्होंने उस चीज को चेंज किया. तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन हम कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी नहीं जा पा रहे हैं CWG पर एशियन गेम्स में जाएंगे और आगे ओलंपिक में जाएंगे LA में, उनके लिए इट्स डेफिनेटली अ लॉस्ट चांस. और ये जैसा आपने कहा, खिलाड़ी का मनोबल और साथ में खिलाड़ी का एक एक्सपीरियंस रहता है.

0: में खिलाड़ी का एक एक्सपीरियंस रहता है वो उनको इस बार नहीं मिलेगा। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि अभी इंडिया में हम लोग इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर। आप अगर देखें तो सिर्फ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हम जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, जितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आज की तारीख में हम इंडिया में होस्ट कर रहे हैं कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2025-26 में हमने 36 कॉम्पिटिशन्स जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हमने इंडिया में होस्ट किया। अभी 26 पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, हम और 11 जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स इंडिया में हम होस्ट करेंगे। अगले साल 19 ऑलरेडी पाइपलाइन में है। ये सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल के कॉम्पिटिशन्स है, अच्छे स्तर के कॉम्पिटिशन्स है, तो खिलाड़ियों को कॉम्पिटिशन्स मिलते रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। पर वो जो CWG से एशियन गेम्स जाने का एक जो वो आप कह सकते हैं चार्म होता है वो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, और कुछ कुछ खेलों में ये लॉस जरूर रहेगा।
1: हिमिका, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है, जिसमें हम ढेर सारे पदक भी जीतते रहे हैं, लेकिन जो खेल इस बार शामिल किए गए हैं उसके लिए हमारे खिलाड़ियों ने तैयारियां कैसी की हैं, पदक की कितनी बेहतर संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं?
0: देखिए, हमेशा कोशिश यही होता है, वो चाहे खिलाड़ियों का हो, वो चाहे सरकार का हो, जो एक सपोर्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम स्पोर्ट्स का तैयार किया है, ग्रास रूट से लेके एलीट एथलीट तक सपोर्ट देने का, हमेशा एफर्ट यही रहता है कि कंपटीशन जिस स्तर का भी हो, जैसे कि इस बार ट्रंकेटेड है, पर एफर्ट में कोई कमी नहीं है, ना एथलीट के तरफ से ना सपोर्ट के तरफ से। तो मुझे लगता है कि हम लोग डेफिनेटली पिछले बार के मुकाबले वो हर डिसिप्लिन जिसमें हम इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं कम मेडल तो नहीं लाएंगे, क्योंकि पिछले पूरी CWG साइकिल में, और व्हेन आई से CWG साइकिल, चार साल का साइकिल होता है, उन चार सालों में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जब हमारे एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, मुझे कहते हुए खुशी है कि एटलीस्ट हर एक इन डिसिप्लिन्स में, एथलेटिक्स खास करके, क्योंकि उसमें हम लोगों की संभावनाएं काफी ज्यादा है, हम सब जानते हैं कि सारी नजरें टिकी हुई है नीरज चोपड़ा पे, तो नीरज चोपड़ा तो चलिए मैंने वो एक्सपेक्टेड है, वो होने ही वाला है, पर बाकी भी जैसे आप मुरली श्रीशंकर ले लीजिए, तेजस्विन ले लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो पिछले कई महीनों में ये सब इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे हैं, इंडिया में तो ट्रेनिंग लेते ही है, साई बेंगलुरु में भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, NSNIS पटियाला में भी ट्रेनिंग करते हैं, बट ये नजर में रखते हुए कि वो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनके स्तर पे उनके जैसा उनको ट्रेनिंग का मौका मिले, फॉरेन कोचेस का सपोर्ट मिले, तो ऑलरेडी जैसे एथलेटिक्स वाले पोलैंड में है, स्पाला में, साइकिलिंग के बच्चे हैं फ्रांस में, ऑलरेडी वो लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, जिम्नास्टिक्स के बच्चे हैं वो ऑलरेडी UK पहुंच चुके हैं और वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसे और बाकी डिसिप्लिन का भी वही है, 20 से ज्यादा फॉरेन कोचेस इंडियन कोचेस के साथ लगे हुए हैं। इंटरनेशनल जो कोचेस है उनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ओलंपिक चैंपियन तैयार कर चुके हैं, बहुत सारे कोचेस खुद ऑलरेडी ओलंपियंस रह चुके हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो जिस तरह की टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं उससे हमारे एथलीट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और सब कुछ मिला के, मतलब वेदर इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, फॉरेन कोचेस हो, या हमारे देश में जो साई सेंटर्स और एकेडमीज में वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब मिला के तैयारी एकदम 100% से ज्यादा है, और इसीलिए उम्मीद ये है कि पिछली बार जितना मेडल इन सब डिसिप्लिन्स में हमने जीता था एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा ही मेडल इस बार हम लेके आएंगे।
1: जैसा कि हमने बताया कि इस बार एथलेटिक्स में भारत का सबसे बड़ा दल भाग लेने जा रहा है। ट्रैक इवेंट में पुरुष वर्ग में पदक की एक बड़ी उम्मीद राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर में हिस्सा लेंगे। हम आपको बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर के बीच 100 मीटर स्प्रिंट में हाल के दिनों में कमाल की प्रतिस्पर्धा रही है। हालांकि गुरिंदर वीर सिंह वर्तमान में 10.09 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ देश के सबसे तेज धावक हैं। उधर अनिमेश कुजूर ने जर्मनी में 10.14 सेकंड का समय निकालकर विदेशी धरती पर सबसे तेज भारतीय होने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि ग्लासगो में भारत की तरफ से 100 मीटर दौड़ में भाग लेने का मौका गुरिंदर वीर सिंह को मिलने वाला है। उधर 200 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व सबसे तेज 20.32 सेकंड का समय रखने वाले अनिमेश कुजूर करेंगे। विशाल टीके की दावेदारी 400 मीटर दौड़ मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले और रमेश का दावा 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में होगी। गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर, तेजस शिर से 110 मीटर हर्डल, यशस पलाक्ष 400 मीटर हर्डल और संतोष कुमार तमिल रासन 400 मीटर हर्डल में भाग लेंगे। ट्रैक विमेंस कैटेगरी में रशदीप कौर 400 मीटर मिक्स्ड 4

0: इंटू 400 मीटर रिले, नीरू पाठक 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, अंसा बाबू 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज 5000 मीटर, प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर वॉक, रवीना गायकवाड़ 10000 मीटर वॉक में शामिल हैं। उधर फील्ड मेंस कैटेगरी की बात करें तो दे मीणा और कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट में सबसे बड़ी उम्मीद होंगे। सर्वेश अनिल कुशारे और आदर्श राम जे हाई जंप, तेजस्विन शंकर हाई जंप, डेकाथलान मुरली शिशंकर और लोकेश सत्यनाथन लॉन्ग जंप, प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ट्रिपल जंप, समरदीप सिंह गिल और तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट, नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह जैवलिन थ्रो में भारत की बड़ी उम्मीद होंगे। फील्ड वीमेंस कैटेगरी में पूजा सिंह हाई जंप, मनप्रीत कौर शॉटपुट, सीमा कालीरमन और निधि रानी डिस्कस थ्रो में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी। वैसे अगर दोहा डायमंड लीग में चौथे नंबर पर रहे नीरज की बात करें तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी संभावनाओं को लेकर काफी उम्मीद रखते हैं।
1: नहीं, मैं काफी खुश हूँ अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी।
0: भारत का सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में ग्लासगो जा रहा है, ऐसे में भारत के लिए पदकों की वास्तविक तौर पर कितनी बेहतर संभावना है?
2: देखिए, एक्सपेक्टेशन पिछली बार से कुछ कम नहीं है। एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा इस बार एथलेटिक्स से ही है, और जैसा कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में कंटिंजेंट जा रही है, पर हम ये भी याद रखें कि एथलेटिक्स में भी सारी डिसिप्लिन्स नहीं है, पर जो डिसिप्लिन्स में भारत स्ट्रांग है, जैसे जैवलिन हो गया, ट्रैक एंड फील्ड, ये सारे हमारे जो जंप्स है, क्योंकि वो सब है इस बार के CWG में, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि पिछली बार का जो नंबर था उसको शायद हम कुछ एक या दो मेडल से क्रॉस कर जाए इस बार। एथलेटिक्स के लिए पिछले सीजन में ही, और कुछ लास्ट एक डेढ़ महीने की बात होगी, टोटल 26 नेशनल रिकॉर्ड टूटा है सिर्फ एथलेटिक्स में। तो अभी एथलेटिक्स में हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत ही, ये हम कह सकते हैं कि परहैप्स द बेस्ट इन द लास्ट फ्यू कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। अभी इस टाइम पे हमारा जिस तरह का बेन स्ट्रेंथ है, हमारा जिस तरह का प्रेपरेशन है, क्योंकि बेन स्ट्रेंथ बहुत क्रिटिकल होता है, ये हम सबको पता है, तो इस बार क्योंकि ये यंग एथलीट्स है जो बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत ड्रिवन है, एक भूख है उनमें, एक हंगर है, क्योंकि उनको भी प्रूव करना है बहुत कुछ।
0: एथलेटिक्स के बाद जिस खेल से भारत को सबसे अधिक उम्मीद है उसमें बॉक्सिंग सबसे ऊपर है। इसमें पुरुष वर्ग में 55 किलोग्राम में जादूमणि सिंह, 60 किलोग्राम में सचिन सिवाच, 65 किलोग्राम में आदित्य प्रताप सिंह, 70 किलोग्राम में सुमित कुंडू, 80 किलोग्राम में अंकुश, 90 किलोग्राम में कपिल पोखरिया और 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बीरवाल की चुनौती होगी। महिला वर्ग के 51 किलोग्राम में साक्षी चौधरी, 54 किलोग्राम में प्रीति पवार, 57 किलोग्राम में जैस्मिन लांबोरिया, 60 किलोग्राम में प्रिया घंगास, 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा, 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी और 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन की दमदार चुनौती होगी। साक्षी चौधरी इन खेलों में अपनी संभावनाओं के बारे में क्या कह रही हैं, वो सुनते हैं।
3: जी, हम अभी कॉमनवेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हम 9 जुलाई को आयरलैंड जाएंगे जहां हमारा मल्टीनेशनल ट्रेनिंग कैंप होगा, वहां से हम डायरेक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जाएंगे, तो अभी हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है।
0: पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम में भारत की पदक की बड़ी उम्मीद है सचिन सिवाच।
4: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, अपने अपोनेंट्स के सारे उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है, सभी के गोल लिए आने हैं।
0: बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह को भी बॉक्सर्स से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।
5: देखिए, 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे, उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
0: बॉक्सिंग की बात करें तो सिर्फ राष्ट्रमंडल खेलों में ही नहीं, एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी हम इस खेल में पदक जीतते रहे हैं। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और जादूमणि सिंह जैसे उभरते हुए नाम हैं, वहीं महिला वर्ग में टोक्यो 2020 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन के साथ साथ प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, प्रिया गंगा जैसे बॉक्सर्स की भी अपने अपने वर्ग में तगड़ी चुनौती होगी। पदक की कितनी उम्मीद कर सकते हैं ऐसे बॉक्सर्स के रहते हुए?
2: देखिए, बॉक्सिंग हमेशा से हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट रहा है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, बॉक्सिंग में हम अच्छा करते आ रहे हैं। इस बार बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग

0: हैं। और ये जो प्रेपरेटरी जो फेज था, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हमारी टीम ने पार्ट लिया, जैसे कि इंडिया एशियन चैंपियनशिप्स में थर्ड नंबर पे उन्होंने फिनिश किया और इंटायर वुमेन्स स्क्वाड ने मेडल्स लेके आए। तो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ एथलीट्स है वो इस टाइम पे बहुत अच्छा है, और आई वुड गो एज फार एज टू से कि महिलाओं का अभी इस बार CWG में मुझे लगता है चांसेस पुरुषों से भी ज्यादा है। तो हम अपने जो नजरें हैं वो महिला बॉक्सर्स पे टिकाए रखें, उनको उनके गेम्स को देखें, और मुझे लगता है कि वाकई में मजा आने वाला है, और आगे जाके इनमें से बहुत सारी लड़कियां LA तक तो जरूर खेलेंगी। मुझे ये लगता है कि ये सब लंबे टाइम, हालांकि बॉक्सिंग रेसलिंग ये थोड़े इंजरी प्रोन भी होते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब लंबे टाइम के लिए है और खेलेंगे और CWG में अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे।
1: वेटलिफ्टिंग भी ऐसा खेल है जिसमें भारत कुछ पदकों की उम्मीद कर सकता है। इसकी टीम की बात करें तो पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह, 65 किलोग्राम में एम राजा, 79 किलोग्राम में अजय बाबू, 94 किलोग्राम में दिलबाग सिंह और 110 किलो से अधिक भार वर्ग में लवप्रीत सिंह अपनी ताकत दिखाएंगे। महिला वर्ग में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू 48 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव 53 किलोग्राम, बिंदिया रानी देवी 58 किलोग्राम, हरजिंदर कौर 69 किलोग्राम, संजना 77 किलोग्राम, सेराम निरुपमा देवी 86 किलोग्राम और मार्टिना देवी 86 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में भारत की उम्मीदों का केंद्र होंगी। फिट होने के बाद वापस लौट रही मीराबाई चानू पदक को लेकर कितनी आशावान है ये सुनते हैं।
2: बहुत लकी हूँ कि हम पहले ही बर्मिंघम में आके हम ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। हम सबका होप कर रहे हैं कि हम सब मेडल लाए इंडिया के लिए, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रही है।
1: जी हिमिका, कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में भी हमारे अच्छे खासे पदक आते रहे हैं। पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू फिट होकर वापसी कर रही हैं। इस बार दोनों वर्गों को मिलाकर हम क्या उम्मीद कर सकते?
0: देखिए, मीरा का तो ये है कि उसको मैजिक मीरा कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक्चुअली एक मैजिशियन है। जब हम मीराबाई को देखते हैं और जैसा उनका कद है, और छोटी सी लड़की है मणिपुर से, जैसा कि आपने कहा इंजर्ड थी, पर वो उसने काफी दिनों तक USA में रह के ट्रेनिंग भी किया, रिहैबिलिटेशन भी किया, तो मीरा का तो डेफिनेटली एक मिडिल चांस हम कह ही सकते हैं। जैसा आपने कहा कि एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा है, तो वेटलिफ्टिंग में मीरा का चांस हम इक्वली उसी तरह से सोच सकते हैं। भारत को गोल्ड मिलने वाले हैं, उसमें से एक तो मीराबाई चानू के नाम होना ही चाहिए और होगा भी शायद।
1: तो दोस्तों, ये थी भारतीय खेल प्राधिकरण साई की वरिष्ठ खेल पत्रकार और प्रतिनिधि हिमिका चौधरी। आकाशवाणी के स्टूडियो आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और जैसा मैंने कहा, लेट्स चीयर फॉर भारत।
1: जूडो में पिछली बार भारतीय दल ने 3 पदक जीते थे। इस बार न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ने बल्कि पहले गोल्ड मेडल की भी उम्मीद की जा रही है। चुस्ती, स्फूर्ति और ताकत के इस खेल में भारत की तरफ से मेंस कैटेगरी में हर्ष सिंह की चुनौती 60 किलोग्राम, रोहित बसीर माजगुल की 66 किलोग्राम, अरुण कुमार की 73 किलोग्राम, हर्ष टोकस की 81 किलोग्राम, करणजीत सिंह मान की 90 किलोग्राम, अवतार सिंह की 100 किलोग्राम और यश घंगास की 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में चुनौती है। महिला वर्ग में अस्मिता डे 48 किलोग्राम, श्रद्धा कदाबुल चोपड़े 52 किलोग्राम, यामिनी मौर्य 57 किलोग्राम, उन्नति शर्मा 63 किलोग्राम, इनुन गनबी ताखिल्लाम्बम 70 किलोग्राम, इशरूप नारंग 78 किलोग्राम और तुलिका मान 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अपना अपना दावा पेश करेंगी। पिछली बार सिल्वर मेडल जीतने वाली तुलिका मान ने इस बार गोल्ड के लिए ढेर सारी तैयारी की है। सुनते हैं क्या है उनकी तैयारी।
3: बीइंग एन एथलीट, एलीट एथलीट, और ऑलरेडी आई प्लेड द कॉमनवेल्थ 22nd, तो मेरा अभी एम अलग है। मैं उन चीजों को, प्रेशर को नहीं लेके चल रही हूँ। मेरा मेन ये है कि मतलब 22 में जो मेरा सिल्वर आया था उसे मुझे अभी कन्वर्ट करना है गोल्ड।
1: तैराकी में भारत का प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। इतिहास की भी बात करें तो सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल आया है, और वो भी पैरा स्विमिंग के जरिए। फिर भी ग्लासगो में स्विमर्स की अच्छी खासी भागीदारी होगी। भारत ने स्विमिंग में भले ही कोई पदक अब तक न जीता हो, लेकिन तैराक अनीश घोड़ा को इस बार खूब सारी उम्मीदें हैं।
4: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बड़ा इवेंट है, हमारी बहुत हार्डवर्क हो रही है, हम भी चाहते हैं कि वहाँ जाके हमारे देश को प्राउड करें और एक मेडल

0: जीत के वापस आए।
1: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भी भारत की दावेदारी है। मेंस कैटेगरी में तपन मोहंती, तपेश्वर नाथ दास, स्वातिश केपी, सत्यजीत मंडल, जबकि विमेंस कैटेगरी में प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, इशिता रेवाले, प्रतिष्ठा सामंता पदक के लिए जोर लगाएंगी। तपन मोहंती जिम्नास्टिक्स में भारत के नेशनल चैंपियन हैं। ट्रैक साइकिलिंग में भी भारत का दावा होगा। रोनाल्डो सिंह लेटोंजाम 1000 मीटर टाइम ट्रायल, डेविड बेकहम एलकाटो चुंगो और जेम्स सिंह किथेल्ला क्रम एलिट किरिन, दिनेश कुमार और रोजित सिंह यांगलेम पुरुष एंड्योरेंस और परस्यूट स्पर्धाएं, जबकि सेंखों हर्षवीर सिंह 4000 मीटर टीम परस्यूट में साइकिलिंग ट्रैक पर होंगे। 3x3 बास्केटबॉल के विमेंस व्हीलचेयर कैटेगरी में भारत की चुनौती होगी, जिसमें रीना, रमेश चंद्र गुप्ता, इरेंगबंग रितु चानू, जाधव मीनाक्षी हरिश्चंद्र, रायन्नावर लक्ष्मी रायप्पा शामिल होंगी। लॉन बॉल्स में भी भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। पिछली बार भी इस खेल में हमें 2 मेडल मिले थे। इस बार मेंस कैटेगरी में सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल, डबल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार शामिल हैं। विमेंस कैटेगरी में नयन मोनी सैकिया सिंगल्स में, जबकि रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की डबल्स में सहभागिता होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा खिलाड़ियों से भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। क्या कुछ हो सकता है पैरा एथलीटों द्वारा, पैरा खिलाड़ियों द्वारा? संपूर्ण रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी शाहिद आजमी।
2: जब इरादे बुलंद हों तो कोई भी बाधा मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती। भारत के पैरा खिलाड़ी इसी जज्बे के साथ अब ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि खिलाड़ियों में इस बार अलग ही जोश है।
3: ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, आज पैरा खिलाड़ियों की सेंड ऑफ सेरेमनी, और मैं हर एथलीट को जानता हूं, अब की बार खिलाड़ियों में एक अलग ही जुनून है। कहीं नहीं कि हम पहले खेलने जाते थे, अब खिलाड़ी मेडल जीतने जा रहे हैं। अब की बार जो परफॉर्मेंस होगी वो एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगी। आप देखिए कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी विशेष तौर पे, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी और कम से कम हम 5 से 6 मेडल जीतेंगे।
2: ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 28 सदस्यीय पैरा दल 5 खेलों में चुनौती पेश करेगा। दल में 11 पैरा एथलीट, 7 पैरा पावर लिफ्टर, 5 पैरा तैराक, 1 पैरा ट्रैक साइक्लिस्ट और 4 महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी 3x3 टीम में शामिल हैं। बात पैरा एथलेटिक्स टीम की करें तो इनमें देवेंद्र कुमार, दिलीप महादू, राकेश भाई भट्ट, रमेश सनमुगम, शुभमन जुयाल, मोहम्मद बासिल, सोमन राणा, सागर थायत, श्रेयांश द्विवेदी, शर्मिला और शिल्पा भारती चुनौती की अगुवाई करेंगे। हमने भारतीय पैरा दल में से कुछ खिलाड़ियों से उनकी तैयारियों और संभावनाओं के बारे में बात की। ये है डिस्कस थ्रोअर देवेंद्र कुमार।
4: अभी ये मेरा सेकंड कॉमनवेल्थ गेम है, फुल तैयारी के साथ अभी जा रहे हैं और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करेंगे।
2: पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला का कहना है कि पहले से बेहतर होगा इस बार।
5: 2022 में भी कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट किया था और अब भी कर रही हूँ। पीछे से अब बेटर है, अब से आगे बेटर होगा, आगे आगे बेटर होता ही जा रहा है। अच्छी सपोर्ट मिल रही है बीसीआई और साई की, और हमारी सरकार खिलाड़ियों को बहुत ध्यान दे रही है और अच्छी मेहनत करके हम भी पीछे नहीं हटने वाले, देश के लिए मेडल लेके देंगे।
2: तैयारियाँ आपकी कैसी हैं?
5: हमारी बेस्ट तैयारियाँ हैं, हम डेली 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सपना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं कॉमनवेल्थ में।
2: यह 100 मीटर T47 में दौड़ लगाने वाले मोहम्मद बासिल।
6: इट इज माय फर्स्ट मेजर कॉम्पिटिशन, लास्ट ईयर आई स्टार्टेड द पैरा स्पोर्ट्स, दिस ईयर आई विल फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू द बिग गेम्स, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट वी गेट इट मेडल रिप्रेजेंट इन इंडिया।
2: देश के पैरा खिलाड़ी कितने मेडल जीतेंगे, यही सवाल हमने पैरा एथलेटिक कोच सत्यनारायण से किया।
7: पैरा ओलंपिक डेफिनेटली हम लोग 7 मेडल जीतने का उम्मीद कर रहा है। 5 मेडल तो कंफर्म है, 100% है। 2 मेडल नीचे ऊपर हो सकता है। मैं एथलीट होके बोलता हूँ एथलेटिक्स पैरा का बहुत अच्छा करेगा।
2: जो एथलेटिक्स टीम जो आपको दी गई है, जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए उनको देखते हुए क्या लग रहा, कितनी मजबूत है, क्या वहाँ पर संभावना उनसे देखते
7: हैं? आप लोग को मालूम है अभी ग्लासगो में बहुत ठंड है, फिर भी मेरा एथलीट पूरा प्रिपेयर है, 100% हम अच्छा मेडल लेके आएगा।
2: अब बात करते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ियों की, जिनमें परमजीत कुमार, अशोक, झंडू कुमार, सुधीर, जसप्रीत कौर, कस्तूरी राजमणि और सुमन देवी से पदक की उम्मीदें रहेंगी। संभावनाओं पर पैरा पावरलिफ्टिंग कोच राजेंद्र सिंह रहेलू कहते हैं,
8: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट हैं। हम कोशिश है हमारी कि इस बार पावरलिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे, और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा। मुझे

0: श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
1: पैरा तैराकी में रवि वीरा वेंकट बुडगिना, अली इमाम, सुयश जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णी और स्वातिक पाटिल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी तरह पैरा ट्रैक साइकिलिंग में लीशा दास अकेली भारतीय खिलाड़ी होंगी, जबकि महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल 3x3 टीम में रितु चानू इरेगबम, रीना रमेश चंद्र गुप्ता, मीनाक्षी हरिचंद जाधव और लक्ष्मी रायप्पा चुनौती पेश करेंगी। इस अवसर पर रियो पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट दीपा मलिक से हमने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों से संभावनाओं पर बात की।
2: संभावनाएं बहुत अच्छी हैं इस टीम में, हमारे कॉमनवेल्थ रैंकिंग 1, वर्ल्ड रैंकिंग 1 ऐसे खिलाड़ी भी जा रहे हैं। तैयारियों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बढ़े हैं। अब 5 विविध स्पोर्ट्स में हमारे पैरा एथलीट जा रहे हैं और लगभग 28 एथलीट जा रहे हैं, इसमें 40% महिलाएं जा रही हैं। मुझे बहुत खुशी है।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा स्पर्धाओं में अब तक 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। इस बार उम्मीद है कि भारतीय पैरा खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।
3: भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से विशेष बात की कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने।
4: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड।
5: एशियन गेम्स का सेमीफाइनल मानती इसे, इसको कैसे देखते हैं? गेम्स कम है, होप्स ज्यादा, लेकिन
4: एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है। एशियन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एनीवे 2 मंथ्स इज देयर दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस भाई, बिकॉज द गवर्नमेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल association is in one line and they are providing all the facilities which players wants. So exposure is the must. They are getting foreign exposure and all those things, and association is working on it, and lot of sponsors also. For IOA is also giving full support to players. So that I hope that players achha karenge.
5: Last question. 2030 में हम host कर रहे हैं Commonwealth Game. तो यहाँ और कुछ सीखने के लिए होगा, देखने के लिए होगा. IOA इसके बारे में क्या कहेगा? कैसे plan कर रहा है?
4: Our team is there. Our IOA team and government team, all team is there to see what are all the things they are doing. हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा competition तो इधर organize किया है, but फिर भी what are all the changes we have to do, all team will be there.
3: भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया को भी दल से ढेर सारे पदक की उम्मीदें हैं।
6: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत हौसले के साथ खेलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत का परचम कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। दोस्तों, मोदी जी ने हमारे एथलीट को अपने परम मित्र कहे। जब हमारे एथलीट कॉमनवेल्थ के लिए जा रहे हैं, तब दोस्तों मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है। देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है।
3: ग्लासगो में भारत के लिए खेलों से इतर भी बहुत कुछ होने वाला है, बता रहे हैं भारत के मिशन प्रमुख, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और भारत की डेविस कप टीम के कप्तान रोहित नागपाल।
7: सिंबॉलिकली अगर आप देखा जाए तो हम लोग नेक्स्ट होस्ट है, तो खेल के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान हो चुकी है। वहाँ पे हम लोगों को बेटन लेना है, हम लोगों को वहाँ से फ्लैग लेना है कॉमनवेल्थ का, हम लोगों को कल्चरल डांस सिखाना है इंडिया का, फिर एक ट्रेड कट ग्रुप भी बन रहा है हम लोगों का, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है एक्सचेंजेस जो की हम लोग प्लान कर रहे हैं सारा वहाँ खेल के अलावा भी। तो सिम्बॉलिकली अगर देखा जाए ऑलराउंडेडली तो एक बहुत जरूरी ये एक ट्रिप है जिसके अंदर हम लोग जाके ये सब चीजें लेके आएंगे इंडिया के लिए और सारा फिर फोकस शिफ्ट करेगा इंडिया पे कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो ये काफी सालों बाद एक नया गेम इंडिया को आएगा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक होलिस्टिक पिक्चर है।
3: कुछ ही घंटे में पदकों की दौड़ शुरू होने वाली है और एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलने की होड़ मचने वाली है। पदकों की इस आपाधापी में किसी का सितारा चमकेगा तो किसी को जीत के लिए नई सीख और जज्बा हासिल होगा। तो कल से रोमांच शुरू होने वाला है, हम भी आपसे जुड़े रहेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की हर हलचल, धड़कन और रोमांच के साथ। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान और सहयोगी शाहिद आजमी के साथ धर्मेंद्र को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।
8: The Commonwealth Games.
9: अभी आप सुन रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पर एक रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग बिहाग में वायलिन वादन। वादक कलाकार हैं विदुषी दुर्गा शर्मा। तबले पर इनके साथ संगत की है भोगी राम रतोनिया ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग बिहाग में वायलन वादन, वादक कलाकार थीं विदुषी दुर्गा शर्मा। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध

0: क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture,